0: स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि नित सवेरे योग पाठशाला में आकर के आप 30 दिवसीय योग शिविर में आसन, योग और प्राणायाम को नित सवेरे करते होंगे। तो आइए आज हम एक नए आसन की ओर चलते हैं, एक नए शब्द की उत्पत्ति के साथ। जैसा कि दोस्तों पिछले दिनों में हमने हर एक दिन हर एक नए शब्द की उत्पत्ति के साथ में एक नए आसन को उसके साथ जोड़ करके आसन करवाए हैं और किए भी हैं। उसका महत्व आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह क्यों हुआ, क्योंकि हर एक आसन हर एक प्राणायाम का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन उस महत्व को और भी विस्तार रूप से बताने के लिए और भी उसको दीर्घ करने के लिए एक शब्द की उत्पत्ति हम करते हैं। हर बार की तरीके से आज भी जो हम एक आसन कराने जा रहे हैं, जो है वाय आसनों में से एक। वाय आसनों में जैसे आता है चक्की चलाना, तो आज चक्की चलाने के आसन के आगे हम शुरू करने जा रहे हैं एक शब्द लगा करके, जो कि है पुंज। दोस्तों पुंज का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि पुष्प के बीच में अंकुरित एक पुष्प होता है, जिसे हम पुंज कहते हैं। खास तौर पर हमने पुंज का नाम जो है वो कई बार हमने अपने बच्चों का रखा है, या फिर हमने कई बार ऐसे शब्दों को कई बार सुना है। पुंज का वास्तविक जो अर्थ होता है वो पुष्प के बीच में पाया जाने वाला एक बहुत ही महीन सा धागा, जो कि पूरी पुष्प की कलियों को जोड़े रहता है, पुष्प की पत्तियों को जोड़े रहता है। पुंज का मतलब ही यही हुआ कि पत्तियों को एकत्रित करके एक साथ उस धागे में पिरो करके रोकना। तो आज जिस आसन को हम कराने जा रहे हैं, वह भी एक ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को एक साथ जोड़े रहता है, जिसका नाम है चक्की चलाना। आमतौर पर चक्की चलाने का अर्थ हम यूं समझ सकते हैं कि पहले के जमाने के घरों में चक्की हुआ करती थी लोहे के दो पार्टों के बीच में, जिसमें महिलाएं गेहूं पीसा करती थी, चावल को पीसती थी, दाल पीसती थी, बेसन बनाती थी। लेकिन आज के युग में कहीं ना कहीं वो पार्ट चक्की कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है। तो आज जो चक्की आसन हम आपको कराने जा रहे हैं, कुछ उसी से मिलती जुलती है। सबसे पहले चक्की चलाएंगे हम किस तरीके से, दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर। तो आइए हम पुंज चक्की आसन आज करने जा रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा आसन हमें एक साथ जोड़े रहता है, जिस तरीके से हमने पुंज का मतलब बताया। पुंज हर एक पुष्प के अंदर पाया जाता है, कोई भी ऐसा पुष्प नहीं है जिसके अंदर पुंज की उत्पत्ति ना हुई हो। तो आइए आज हम पुंज की उत्पत्ति के साथ साथ हम एक नए आसन को भी जोड़ेंगे, जो कि है चक्की चलाना, और वह है वाय आसनों में से एक। वाय आसनों में से एक इसलिए है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसनों में से एक है, जो कि पूरे शरीर को एक साथ जोड़े रहता है। तो सभी मिलकर के तैयार हो जाएं, हम आज करने वाले हैं पुंज चक्की आसन। तो आइए अब हम उस वातावरण में आसन को करेंगे जो कि बहुत ही एक सुंदर और शांतिप्रिय रहने वाला है। वातावरण को थोड़ा सा सुगंधित भी कर सकते हैं अगरबत्ती या धूप जला करके, तो योग की महत्व और भी बढ़ जाती है। योग मैट या हम कोई चद्दर बिछा करके बैठ जाएंगे। उसके बाद पद्मासन की स्थिति में सबसे पहले बैठेंगे और एक से दो बार ओम का उच्चारण करते हुए तत्पश्चात हम शुरू करते हैं अपना पुंज चक्की आसन। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लें, दोनों पैरों को पंजे एक साथ जोड़ लेंगे, यानी पैरों के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अब दोनों हाथों को सामने रख करके हाथों की हथेलियों को मुट्ठी बांध लेंगे। अब मुट्ठी बांधने के बाद हम चक्की की प्रकृति में आएंगे, यानी चक्की को हम करेंगे कुछ इस तरह। जैसे मान लीजिए जब हम चक्की चलाते थे तो दाएं से बाएं की ओर पूरा का पूरा हाथ गोल आकार में घुमाते हुए पीछे की तरफ थोड़ा सा घूमते हुए फिर आगे की तरफ दोनों हाथों को हथेलियों को आपस में जोड़ करके पैर को यानी पैर के जो पंजे हैं उसको भी क्रॉस करते हुए पूरा गोल गोल हाथों को घुमाना है और पीछे होते जाना है। इस प्रक्रिया को हमें कम से कम प्रारंभिक अवस्था में 2 से 2.5 मिनट आपको करना है। यह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है यानी कि उल्टा और सीधा। सबसे पहले हम दाएं तरफ करेंगे 3 से 4 बार या हम 5 बार भी कर सकते हैं। तत्पश्चात हम सीधा इसका उल्टा यानी कि 5 से 6 बार भी हम चक्की आसन को करने वाले हैं। इस आसन को करने की महत्व हम आपको आज बताने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुंज चक्की आसन करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ तो पेट के लिए होता है जो कि पेट से संबंधित सभी चीजें ठीक होती हैं। जिनका बेली फैट निकला होता है उन्हें भी आराम मिलता है। जिनके थाइस में प्रॉब्लम होती है, हिप्स में दिक्कत होती है, उन्हें भी यह आसन करना चाहिए। बहुत ज्यादा इससे लाभप्रद होता है। चक्की आसन करने से आपको काफी हद तक इसका लाभ मिलता रहता है यदि आप इसको अपने रेगुलर रूटीन में इसको अगर आप अपनाएंगे तो। चक्की आसन करने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर सर्च किया हुआ है। लोग सोचते हैं चक्की आसन करने से केवल पेट पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। जी नहीं, आज हम बता रहे हैं आपको कि चक्की आसन करने के लिए पेट पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हिप्स पर, आपकी जांघों पर और कंधे पर, हाथों की हथेलियों पर, पैर के पंजों पर, सब पर इसका महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा असर होता है। वाय आसनों में से महत्वपूर्ण आसन जैसा कि है चक्की चलाना, यह बहुत ही अनुपम स्थिति में पाया गया है। बहुत ही अच्छा आसन है और इस आसन को हमें हमेशा से करते रहना चाहिए। तो हर बार की तरीके से इस बार भी एक नए शब्द के साथ जोड़ करके आज हम लोगों ने किया पुंज चक्की आसन जो कि वाय आसनों में से एक है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए शब्द के साथ में, एक नए आसन के साथ में। लेकिन अभी हम करेंगे ध्यान जो कि है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। 15 मिनट का ध्यान, उसके बाद हम फिर कल मिलेंगे एक नए आसन, एक नए शब्द के साथ में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। हमारा अगला अभ्यास जो है वो है उच्चैः प्राणायाम। हमारे मुख्य प्राणायामों में से एक उच्चैः प्राणायाम। उच्चैः प्राणायाम दोस्तों जो मुख्यतः है वो गले के लिए, कंठ के लिए है और आवाज के लिए है। जिनकी आवाज में जैसे थोड़ी सी क्लिमिंग आती रहती है, थोड़ी सी जो क्रैकिंग आती रहती है आवाज में, और वो लोग बोल नहीं पाते हैं ठीक से, जो तुतलाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो तुतलाते हैं या हकलाते हैं, उनके लिए, और गले के लिए जिनको गले की प्रॉब्लम होती है हमेशा, जैसे कफ जमा रहता है, सूखी खांसी आती रहती है, उनके लिए यह उच्चैः प्राणायाम जो है यह बहुत ही लाभप्रद है। और क्योंकि यह गले से संबंधित है, आवाज से संबंधित है, तो जब हम यह अभ्यास करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि यह अभ्यास हमारा गले और श्वास से और आवाज से ही यह निर्मित है। आइए हम अपना अभ्यास अब शुरू करते हैं। उच्चैः प्राणायाम। उच्चैः प्राणायाम अभ्यास करने से पहले हम पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे दोस्तों, जैसा कि अभ्यास हमारा निरंतर चल ही रहा है। तो अगला अभ्यास जो हमारा है वह उच्चैः प्राणायाम। उच्चैः प्राणायाम, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पद्मासन की स्थिति में प्रथम उंगली और हमारे अंगूठे की मुद्रिका बनाकर, यह मुद्रिका जब हम बनाएंगे तो यह मुद्राएं जो होती हैं, यह जिनको एसिड प्रॉब्लम होती है उससे यह ठीक होगी। पहली प्रथम उंगली और अंगूठे के नीचे दबा करके बिल्कुल सीधे स्थिति में बैठ जाएंगे, मुख मंडल पर वही प्यारी सी मुस्कान, अपने आप को संपूर्ण रूप से अपने ईश्वर को समर्पित करते हुए, और यह विश्वास करेंगे कि हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसका हमें संपूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। यदि हम यह सकारात्मक सोच से शुरू करेंगे, कोई भी प्राणायाम हो, कोई भी सूक्ष्म व्यायाम हो, या कोई भी एक नित प्रतिदिन करने वाली क्रिया हो, तो हमें उसका लाभ जो है वह संपूर्ण रूप से मिलता है। तो आइए हम अभ्यास को अब शुरू करते हैं। गले को सुकोड़ते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, गले से आवाज निकलेगी, कुछ समय के लिए हुड्डी को कंठ से लगाएं, गर्दन सीधी करके दाहिनी नौसिका को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। मैं फिर से आपको उच्चैः प्राणायाम किस तरह किया जाता है पहले मैं आपको बता दूं। उच्चैः प्राणायाम, गले को सुकोड़ते हुए एक लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरेंगे, गले से आवाज निकलेगी कुछ इस तरह, एक से चार सेकंड तक हम ऐसे ही श्वास को रोक के रखेंगे। तत्पश्चात कुछ समय के लिए हुड्डी को अपने कंठ से लगाएं और फिर हम दो तीन सेकंड के लिए वहीं पर ही रुक जाएंगे। फिर गर्दन को सीधी करके दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे कुछ इस तरह। यानी दोस्तों, आपने ध्यान देना है, हमको श्वास लेनी नहीं है, श्वास को केवल बाहर निकाल देना है। जो हमने श्वास गले से, जब हमने श्वास आवाज निकाली, हमने कुछ देर के लिए हुड्डी को कंठ से लगाया, तो श्वास हमारे अभी अंदर रुकी हुई है। वही सांस श्वास को दाहिने हाथ के अंगूठे से दबा करके श्वास को नासिका से बाहर निकाल देना है।
फिर से यह एक बार अभ्यास करेंगे। गले को सुकोड़ते हुए श्वास को फेफड़ों तक भरेंगे। गले से स्वतः ही आवाज

हुड्डी को कंठ से लगाएंगे, गर्दन को सीधी करके दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाकर बाएं नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे कुछ इस तरह। इस तरह हमारा यह प्राणायाम पूर्ण हुआ। उसके बाद हाथों की हथेलियों में घर्षण करेंगे, और इसके बाद यह अपने गले पे, अपनी आंखों पे और चेहरे पे लगाते हुए प्राणायाम पूर्ति करेंगे। यह अभ्यास नित प्रतिदिन करने से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि यह प्राणायाम हम निरंतर करते रहेंगे तो गले से संबंधित, कंठ से संबंधित, आवाज से संबंधित, बच्चों को यदि कोई भी दिक्कत है आवाज को लेकर के, कंठ को लेकर के, गले को लेकर के, तो यह अभ्यास निरंतर करने से सारी परेशानियां दूर होती हैं। बच्चों को 2 से 3 मिनट और बड़ों को 10 से 15 मिनट तक यह अभ्यास करना है। उज्जयी प्राणायाम यानी कि मुख्य प्राणायामों में से एक है, और इसी के साथ हम आपको इसके लाभ बता दें। जिनको थायराइड है दोस्तों, आजकल थायराइड तो एक आम सी बीमारी हो गई है, सभी को कहीं ना कहीं पर किसी न किसी को एक घर में थायराइड की बीमारी हम सुनते ही रहते हैं। ट्रांसिल्स जैसे गले की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, खर्राटे, वह सब ठीक होते हैं। आइए सूक्ष्म व्यायाम साथ में कर लेते हैं। दाहिनी व बाईं भुजा को क्रमशः 5 बार उल्टा सीधा घुमाएं। दाहिनी व बाईं भुजा को 5 बार उल्टा सीधा घुमाना है। 1, 2, 3, 4 एवं 5। इसका विपरीत भी कर लेंगे, 5, 4, 3, 2, 1। आइए दोस्तों, सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत हमारा अगला, यह था पहला, अब अगला करेंगे पैर को फैलाकर नी कप सिकोड़ना व छोड़ना। जैसे नी कप घुटनों के ऊपर हाथ रखेंगे, उसको सिकोड़ना है और छोड़ना है, पकड़ना है। इसी में हमारा तीसरा, जांघ को नीचे से पकड़कर पैर से साइकिल चलाना, यानी हम जमीन पर किसी भी स्थिति में हम कुछ भी बिछा करके, जैसे चद्दर मैट हो गई, चटाई हो गई, हम बिछा करके लेट जाएंगे और दोनों हाथों से अपने जांघ को नीचे पकड़कर पैर से साइकिलिंग करना, यानी पैर को उठा करके ऊपर की ओर साइकिलिंग करना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यह भी हमें 5 बार करना है, 1, 2, 3, 4, 5। पैर को गोल गोल घुमाना, यानी हवा में गोलाकार, 1, 2, 3, 4, 5। चौथा अभ्यास, दाएं व बाएं पैर को घुमाना, 1, 2, 3, 4, 5, दाएं व बाएं घुमाना। यह थे हमारे 4 सूक्ष्म व्यायाम जो कि उज्जयी प्राणायाम के साथ में करने हैं। उज्जयी प्राणायाम हम जब भी करेंगे तो साथ में हमें ये सूक्ष्म व्यायाम भी करना है। तो दोस्तों, आज हमने एक और अभ्यास किया जो कि उज्जयी प्राणायाम के नाम से है, और सूक्ष्म व्यायाम जो कि हमने आज किया।

और आशा करती हूँ कि आप नित सवेरे आकर के योग की उपाशाला में आसन व प्राणायाम करते होंगे। आसन व प्राणायाम की श्रेणी में आज हम आपको कराने वाले हैं आयुर्वेद में वात पित्त व कफ से आराम देने वाले आसन। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे भारतवर्ष की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक आयुर्वेदिक भी है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष ही हमारे शरीर को शांत करने के लिए रोगों की जड़ में रहता है। जब यह दोष सम अवस्था में हो तो शरीर स्वस्थ रहता है, और यदि एक भी दोष विषमता को प्राप्त होता है तो उससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अनुवांशिक तथा जन्मजात रूप से व्यक्ति के शरीर में किसी एक अवस्था दो दोषों की प्रमुखता हो सकती है, जिसके कारण हमारे शरीर की प्रकृति निर्धारित होती है। अतः किस प्रकृति में कौन सा आसन करना चाहिए वह हम आज आपको बताने वाले हैं। वात प्रकृति, पवन मुक्तासन समूह की क्रिया करनी चाहिए, शक्ति बंद के आसन करने चाहिए, वज्रासन, वीरासन एवं धनुरासन, चक्रासन, सर्वांगासन और सूर्य नमस्कार जैसे आसन जो हैं वह हमें नित प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे वात प्रकृति जो है वह धीरे धीरे शांत होती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति में नौकासन, भुजंग आसन, शंभालासन, उद्यान बंद और महाबंद, ये तीनों बंद एक साथ लगाने चाहिए, जिसकी वजह से पित्त प्रकृति जो है वह शांत होती है। दोस्तों मैं बता दूं कि पित्त प्रकृति क्या होती है। आजकल की भागदौड़ की लाइफ में काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहर का खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से पेट से संबंधित कई रोग जो है वो हो जाते हैं। और बाहर का खाना यानी कि ऊटपटांग खाने से जो हमारे पेट में पित्त बनती है, गैस बनती है, जिसकी वजह से यह पित्त प्रकृति कहलाते हैं, जिसमें यह आसन प्रमुख रूप से करना चाहिए। मंडूक आसन करना चाहिए, उद्यान बंद लगाना चाहिए, भुजंग आसन करना चाहिए और सूर्य नमस्कार नित्य प्रतिदिन ये सारे आसन एक साथ करने चाहिए। अगला हम बताने वाले हैं कफ प्रकृति। आजकल कई लोगों को जिस तरीके से अभी पहले कुछ साल पहले कोरोना ने दस्तक दी थी, तो कफ हर किसी के गले में या जैसे कहते हैं कि खांसी कफ बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, उसी दृष्टि से अगर हम देखें तो कफ को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे आसन प्राणायाम आज हम कराने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको काफी आराम मिलेगा। सबसे पहले हम उसमें बता दें जो कि प्रमुख आसन है, प्राणायाम है, उसमें सबसे पहला है कपालभाति, अनुलोम विलोम कपालभाति, अग्निसा। यह प्राणायाम तीन ऐसे हैं जो कि कफ प्रकृति को ठीक करते हैं, और यदि हम इसका उपयोग हमेशा से करते रहेंगे, नित प्रतिदिन हम करते रहेंगे, तो देखेंगे कि यह जड़ से खत्म होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद आसनों की बात अगर की जाए तो ध्यान पंथ, पश्चिमोत्तासन, सर्वांगासन, शीर्षासन और तीन बंद में से उद्यान बंद जो है यह मुख्य रूप से करना चाहिए। आयुर्वेद में तीनों प्रकार की प्रकृति का वर्णन आता है। उपयुक्त तीन प्रकृति एक दोषज है। इसके तीन दोषज है जो कि वात प्रकृति, कफ प्रकृति और पित्त प्रकृति कहलाती है। इनके लिए दोनों प्रकार की प्रकृति के आसन करना चाहिए। चौथी प्रकृति हमारी सनकाधिक कहलाती है। इसके लिए तीनों दोषों के आसन करने चाहिए। इस प्रकार हम अपने शरीर को योगाभ्यास के माध्यम से हमेशा निरोग रख सकते हैं। वात पित्त व कफ को शांत करने वाले आसन आज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम बताएंगे आपको कि यह आसन हमें कब करने हैं, कितनी देर करने हैं और श्वासों की गति क्या होगी। जो भी आसन वात
पित्त और कफ के लिए आज हम कराने जा रहे हैं। पर सारे आसन मुख्य रूप से अगर हम प्रातःकालीन करेंगे तो हमें इसका जो लाभ है वो दुगना मिलता है। समय आपके अनुसार, यदि आप प्रथम अवस्था में कर रहे हैं यानी आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो आप 1-1.5 मिनट लेकर के आप 3-3.5 मिनट तक कर सकते हैं। और यदि आसनों का आपके पास कई दिनों का है तो आप यह जो समय अवधि है वो 5-6 मिनट 10 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। श्वासों की गति मध्यम रहेगी, ना तीव्र ना ही धीरे और ना ही तेज। तो सबसे पहले हम आज कराने वाले हैं वात दोष को शांत करने वाले आसन। सबसे पहले हम कराएंगे उसमें ताड़ासन।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 981 976, 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

हाँ जी, गुड मॉर्निंग गोंडा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। नमस्कार आदाब, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौकी रति, मौजूद हूँ आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और घड़ी में वक्त हो चला है 8:33 बाय स्टूडियो क्लॉक, यानी कि प्रोग्राम का वक्त हो चला है आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल गुड मॉर्निंग गोंडा का। तो भैया आप जरा उठ जाइए कंबल प्रेमियों, और ऑफ कोर्स अपने अपने कमरे से बाहर निकल कर देखिए जनाब, सुबह हो चुकी है, सुबह के बज गए हैं 8:30 और ये टाइम है अब आपके दिन को शुरू करने का। तो आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आज की पोइट्री ऑफ द डे से थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं और देखते हैं भैया आज की पोइट्री ऑफ द डे कहना क्या चाहती है। क्या आपसे कोई काम कराने वाली है या आपको बस कहने वाली है कि जनाब आज सिर्फ एक कप चाय का हो जाए। तो भैया आज की पोइट्री ऑफ द डे अगर आप जानना चाहते हैं तो बताऊं मैं? चलिए बता ही देती हूँ, और वो कुछ इस तरह से है कि छोड़ भी दो अब वो आसमान छूने के महज फसाने, चाय ठंडी हो रही है पहले उसे ठिकाने लगा दो ना। जिंदगी कोई जंग नहीं है जिसे हर रोज जीतना ही है, कभी कभी कुछ बाजियां बस यूं ही हार जाने दो ना। परफेक्ट होने की इस सनक ने बड़ा थका दिया है, चलो आज खुद को थोड़ा बिखरा हुआ रहने दो ना। जो चीज हमारे बस में नहीं है क्यों पकड़कर बैठे हैं उन्हें, जो छूट रहा है हाथ से आज उन्हें जाने दो ना। ये दुनिया चलती रहेगी अपने अंतहीन शोर के साथ, तुम अपने हिस्से की थोड़ी सी खामोशी बचा कर रखना। मंजिल की दौड़ में इतने भी अंधे मत हो जाना कि घर लौटते वक्त मुस्कुराना ही भूल जाना। कोई जादुई सवेरा नहीं आएगा तुम्हारी तकदीर बदलने, बस ये धूप खिड़की से आई है उसे बदन पे लगने दो ना। कोई बड़ा तीर नहीं मारना है आज के इस 24 घंटे में, बस खुद के साथ थोड़ी वफादारी, थोड़ा सा सुकून रहने दो ना। भैया मतलब बहुत ही साफ है, वो ये है कि हर वक्त टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं रखनी है, कभी कभी कुछ चीज़ों को अलविदा कहना ज़रूरी होता है, कभी कभी ठहरना ज़रूरी होता है, कभी कभी हारना ज़रूरी होता है, और कभी कभी बस सुकून से उठकर अपनी एक कप चाय को पीना भी ज़रूरी होता है। हर वक्त ये कहते रहना कि नहीं हम तो सारी जंग जीत जाएंगे, हम ही लड़ाई करेंगे, हम ही पूरा जिम्मा उठाकर रखे हुए हैं, नहीं करना है। हर वक्त खुद को मोटिवेट नहीं करना है, और अगर आपने कोई काम नहीं किया है तो उस पर पछतावा नहीं करना है, खुद को कोसते नहीं रहना है कि यार तुम्हें करना चाहिए था, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे ज़िंदगी में है कुछ भी नहीं होता है। हर जंग को जीतने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें जानबूझ के हार जानी चाहिए, कभी कभी कुछ चीज़ें जानबूझकर छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को, आपकी रूह को, आपके दिमाग को भी शांति की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है। अगर आप हर वक्त अपना तलवार लेके खड़े रहेंगे कि हम तो सारी जंग जीत के ही आने वाले हैं, तो भैया कुछ भी नहीं होने वाला है। कभी कभी बस रुक जाना ज़रूरी होता है। जो चीज़ें जा रही हैं उन्हें हर वक्त पकड़ के रखना कि नहीं मैं अगर सब कुछ ठीक करूँगा,

सबके साथ एफर्ट्स डालेंगे, सबको मनाते रहेंगे तो लोग हमारे पास ठहर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोगों को अलविदा कह देना चाहिए, उन्हें जाने देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें पकड़ने पे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, उन्हें छोड़ देना एक अलग ही सुकून मिलता है। हाँ, लग सकता है कि आपने शायद ये कोई गलत किया है, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही खूबसूरत बात है किसी को जाने देना। हमेशा से हमें कहा जाता है पॉजिटिव रहो, ऑफ कोर्स आप पॉजिटिव रहो, लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिविटी मत रखो, उस पॉजिटिविटी से थोड़ा सा दूर हो जाओ जो आपको लगता है कि आगे जाके रिग्रेट में डालेगा। हर एक जंग नहीं जीतनी है, हर एक वक्त नहीं जीतना है, हर किसी को पलट के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को थामे रखने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी लेट गो करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो भैया आज कुछ भी नहीं करना है, आज खुद के साथ थोड़ी सी वफादारी, थोड़ा सा मोहब्बत और अपने एक कप चाय को सुकून से इत्मीनान से इंजॉय करना है, बैठ करके दुनियादारी की सारी टेंशन निकाल देनी है, ये भी निकाल दीजिए दिमाग से कि आपको क्या हासिल करना है, क्या कुछ करना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्योंकि आज का दिन सिर्फ आपके लिए है। तो ज़रा उसे आराम से इत्मीनान से इंजॉय करते रहिए। बस यही था आज का हमारा पोइट्री ऑफ द डे, जो आपसे बस इतना ही कह रहा है कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी को करो बाय बाय और अपनी जिंदगी को कहो लव यू जिंदगी। भले ही उधर से आपको लव यू टू का जवाब ना मिले, लेकिन अगर आप खुद से मोहब्बत में आते हैं, आप खुद की मोहब्बत में गिरते हैं, तो जिंदगी आपको लव यू टू कह ही देती है। बच्चे फिलहाल इंजॉय करते रहिए, गुड मॉर्निंग होना भी तो राजू रती, मिलते हैं इस गाने के उस पार, और क्यों ना हम भी इंजॉय कर ले लव यू जिंदगी, जिंदगी से लव यू टू हम करके आते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिएगा मेरे वाले शो में, यानी कि गुड मॉर्निंग गुंडा में। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM गोंडा का अपना FM, गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी मॉर्निंग जॉक की उन्नति, मौजूद हूँ आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और ये है आपकी अपने गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली। और दोस्तों एक बात बताइए, अगर आप उठ चुके हैं तो आपने ये कहीं ना कहीं ये कहावत जरूर सुनी होगी, लाइक एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। कितनी दफ़ा सुनी है, बचपन से गाते आए होगे, सुनते आए होगे, और लोगों ने आपको ये चीज़ रटा रखी है कहावत कि अगर एक सेब खाओगे तो डॉक्टर से दूर भाग जाओगे, डॉक्टर की ही नौकरी खराब हो जाएगी है। पर आपने सेब खाना शुरू किया क्या? नहीं ना। चलिए हम बताते हैं कि भैया सेब खाना जरूरी था या ये सिर्फ उल्लू बनाने का तरीका था, क्योंकि हम जो भी कहावतें सुनते हैं जिसमें हमारा हो जाता है कि भैया सुबह सुबह नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, तो हमने पिछली बार बताया था कि नाश्ता करना इतना ज़रूरी क्यों है और ये किस कंपनी की मेहरबानी है। उसी तरह से आइए अब बात करते हैं कि ये जो कहावत है, बहुत लंबी चौड़ी कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, क्या ये सच में डॉक्टर्स को आपसे दूर रखता है या फिर आप भी उतने ही बीमार पड़ते हैं जितने बाकी लोग पड़ रहे हैं जो संतरे खा कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि जो पाइनएप्पल खा रहे हो, जो संतरे खा रहे हो, वो भी सेम बीमार पड़ रहे हो, जो कुछ भी ना खा रहे हो वो भी सेम बीमार पड़ रहे हो। तो एक सेब खाने वाले इतना अलग क्यों, उनके साथ इतना स्पेशल बर्ताव क्यों? दोस्तों कभी जाने की कोशिश की? नहीं ना। आइए हम बताते हैं, क्योंकि भैया मेरे अंदर अगर कोई जानकारी है वो आप तक ना पहुँचे ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल डिस्पॉसिबल हो जाता है। तो फिलहाल के लिए आइए बात करते हैं कि ये कहाँ से आया, कहाँ से शुरू हुआ और अब आप इसको क्यों मानते हैं। जो भी चीज़ें आप करंट में यूज़ करते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, उन पर सवाल करना बहुत ज़्यादा हो जाता है ज़रूरी, क्योंकि अगर आप नहीं सवाल करते हैं कभी इस बात को लेकर के कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस इंसान ने ये दर्ज किया, क्यों किया, किसका फ़ायदा इसमें ज़्यादा हो रहा था, तब तक आपको हकीकत के बारे में पता नहीं चल पाता है और आप हमेशा की तरह बेवकूफ़ बना दिए जाते हैं। आपसे कंपनी वालों ने कह कहकर कि सुबह सुबह नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो दिन की शुरुआत अच्छी नहीं है, कह कहकर अपना सामान तो अच्छा खासा बेच दिया है, लेकिन आपका क्या हुआ? आपका कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ लगी नहीं है जो ये काउंट कर सके कि ये ब्रेकफास्ट ही था, ये लंच नहीं था। अगर आप लंच में भी ब्रेकफास्ट करोगे मेरी तरह तो भी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, बट क्योंकि कंपनीज को अपना काम चलाना होता है और कैलॉग्स को भैया आगे निकलना था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को बना दिया। अब बात करते हैं एप्पल्स की, क्योंकि एप्पल्स तो उग रहे हैं ना, ये तो नेचर का काम है, फिर क्यों हमारे पास एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे वाली कहावत छापी गई थी? क्यों क्यों क्यों क्यों? तो इसके पीछे की कहानी जुड़ी है आपके अपने अमेरिका से, और कोई भी चीज़ अगर शुरुआत होती है ना तो अमेरिका से ही होती है। थैंक्स टू अमेरिका कि आपको ये कहावत मिल चुकी थी, और उस वक्त जब अमेरिका में सेब उगा करते थे तो इतने टेस्टी नहीं होते थे, मतलब वो खट्टे होते थे, कड़वे होते थे, और लोग उन्हें इसीलिए नहीं खा रहे थे, खाना ही पसंद नहीं करते थे। कोई कैसे ही खा सकता है खट्टी कड़वी चीज़ें? अगर आपको करेला कच्चा दे दिया जाए तो खाओगे थोड़ी ना, जूस बना के दूंगी तो भी नहीं पियोगे। उसको एक अलग तरीके से बनाया जाता था, उसको ड्रिंक्स में बनाया जाता था, और तब जाकर कोई सेब कंज्यूम करना पसंद करता था। जब तक वो ड्रिंक्स बनती रहीं, लोग सेबों को इंजॉय करते रहे, यानी कि उसका जूस इंजॉय करते रहे फर्मेंट करने के बाद, अमेरिका वालों का सेब बिकता रहा। बट जैसे जैसे 1990 का दशक आया, 1920 के बाद धीरे धीरे अमेरिका में इस ड्रिंक को बनाने के लिए लग गया था बैन, यानी कि अब ये ड्रिंक नहीं बनानी है, और वहीं से यानी कि शराब पर लग चुका था बैन, और वहीं से सेब जो थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे थे। अब फार्मर्स के सेबों की बिक्री नहीं हो पा रही थी और इसकी वजह से वो थे परेशान कि अमेरिका वाले तो अभी तक शराब में पी रहे थे, ड्रिंक्स में पी रहे थे, लेकिन अब तो ये भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सेब के पेड़ मैंने लगा रखे हैं बाबूजान, अब इसका होगा क्या? ये कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन खाएगा? हम तो खाने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये तो कड़वे होते हैं। और उसी दौरान ये कहावत निकाली गई कि अगर आप सेब खाते हैं तो डॉक्टर का ठिकाना बंद हो जाता है, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, डॉक्टर साहब से फीस नहीं ले पाएंगे। अब क्योंकि उस वक्त इतना साइंस नहीं था, इतना मेडिकल नहीं था, तो लोगों को डॉक्टर के पास जाने से वैसे भी डर लगता था, क्योंकि एक तो बहुत महंगा, दूसरी दवाइयाँ खानी पड़ती थी, और जो भी बीमारी शुरुआती दौर में आई थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती थी, ऑफकोर्स वो जानलेवा भी होती थी। और इसी की वजह से लोगों ने ये मान लिया कि सच में अगर मैं सेब खाने की कोशिश करता हूँ या हर दिन एक सेब खाऊँगा तो लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, स्पेशली डॉक्टर्स के पास, दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। और इसी
इसीलिए उन्होंने ये सेब खाने की शुरुआत कर दी और फार्मर्स की जो बिक्री थी वो बढ़ चुकी थी। नहीं तो कोई सेब खरीदने वाला नहीं था, बट ये लालच था कि अगर तुम सेब खाते हो यानी कि एप्पल्स कंज्यूम करते हो तो मैं दवाई कंज्यूम नहीं करनी पड़ेगी, और अगर तुम एप्पल्स नहीं खाते हो तो मैं दवाइयाँ कंज्यूम करनी पड़ेंगी। और ऐसे करके मार्केटिंग की गई आपकी अपने रेड रेड लाल लाल सेबों की, और आप अब उसे खाते हैं ये बोल करके कि हम सेब खाएंगे डॉक्टर को दूर भगाएंगे, नहीं है कि नहीं, बताइए बताइए, करते हैं ना। तो भैया कोई भी चीज़ जो आप अभी इंजॉय कर रहे हैं उसके पीछे होती है बहुत बड़े रीज़न, और कोई ना कोई इसकी मार्केटिंग ज़रूर कर रहा होता है। जैसे कि आजकल सब्जी और फल खाने वालों को कहा जाता है कि आप तो डाइट कर रहे हैं, और पिज्ज़ा समोसा खाने वाले को कहा जाता है ओ व्हाट अ लाइफ, हमको भी ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है, है ना। फिलहाल आपका ये पिज्ज़ा कहाँ से शुरू हुआ था आप जानते हैं? नहीं, चलिए हम बता दें, ये तो आपको भी पता है कि इटली से आया है, लेकिन क्यों आया है इसके पीछे की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस बाद। अब तक के लिए आप मुझे बताइए कि क्या आपको पता था कि सेब खाने से कुछ भी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि सेब खाने वाले भी एक रिपोर्ट के अनुसार उतने ही बीमार पड़ते हैं जितना एक संतरा खाने वाला पड़ता है या कुछ भी ना खाने वाला पड़ता है। तो भैया ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बट अलग बात ये भी है कि सेब खाना छोड़ना नहीं है, क्योंकि सेब में बहुत सारे विटामिंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, साथ ही साथ फाइबर भी होता है, तो उसे खाते रहिए। बट ये सोच के मत खाइएगा कि अगर आप सेब खाते हैं तो आप अमर हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कभी कभी मेडिसिन की जरूरत आपको भी पड़ सकती है। तो इस पर सेब को ब्लेम मत कीजिएगा, बेचारे सेब ने कुछ भी नहीं किया था, ये तो इंसानों का दिमाग था जो सेब को बेचने के लिए लगाया गया था। तो आप इंजॉय करते रहिए, बढ़िया फ्रूट है, आपकी जिंदगी में इस फ्रूट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप दिन में एक बार फल खाते हैं तो कमाल की बात है, डॉक्टर्स हो सकता है आपसे दूर रहें आपकी इम्यूनिटी की वजह से, अदरवाइज नहीं होते हैं तो डॉक्टर की दवा खाइए, खाने से क्या जाता है, सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए और इंजॉय करते रहिए, क्योंकि अब हम सुनने जा रहे हैं तेरा जरूर से दर्शन रावल की आवाज में बेखुदी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, तब तक के लिए इंजॉय गुड मॉर्निंग गोंडा विद राजीव नदी।

भैया करण की आवाज में अगर आपने एंजॉय कर लिया हो सॉफ्टली तो क्या ख्याल है आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, हेलो, हाय, वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोटा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरशी उन्नति। और अभी तक हम बात कर रहे थे एनापोलिटी कीप्स डॉक्टर अवे, क्योंकि आपके मिथ्स को तोड़ने की जो जिम्मेदारी है वो मैंने अपने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कंधों में उठा रखी है। और मुझे लगता है कि आपकी ये सारे जो मिथ्स हैं जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, इन सबको तोड़ के चकनाचूर कर देना चाहिए ताकि आप हकीकत से रूबरू हो सके। और अगर ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है तो आइए आगे बढ़ते हैं। और जरा ये बताइए, कभी ये सुना है कि हीरे बड़े कीमती होते हैं? सुना तो होगा, खरीदा भी होगा। और अगर कोई डायमंड ले आया है घर के अंदर तो उसकी वाहवाही भी बड़ी हुई होगी कि क्या बात है भैया, डायमंड लेकर आया है लड़का, डायमंड लेकर आई है लड़की, मुझे तो डायमंड की रिंग मिली है, डायमंड का तोहफा। ऐसा किया कभी? हालांकि हम सबको लगता है कि डायमंड बड़े कीमती होते हैं और होते भी हैं, बट क्यों होते हैं? डायमंड इकलौती चीज़ तो है नहीं जो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मौजूद है। इसके अलावा भी बड़ी कीमती कीमती चीज़ें हमारे पास मौजूद है, लेकिन डायमंड के ही इतने भाव का है भैया? अब इसके पीछे भी ना एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो ऑफकोर्स आइए इन्जॉय करते हैं आपके अपने इस डायमंड फॉरएवर की पीछे की एक ऐसी स्टोरी जो शायद आपको भी नहीं पता, जो शायद उनको भी नहीं पता जो डायमंड्स लेकर आ रहे हैं बेवजह अपने 2-3 महीने की सैलरी खर्च करके। जब तक दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था तब तक किसी को मतलब नहीं था कि यार किसी के पास डायमंड है कि नहीं है। डायमंड लोगों के पास तो थे, ऐसा नहीं था कंपनीज के पास डायमंड नहीं था, था पर डायमंड खरीदने वाले नहीं थे। कोई डायमंड खरीद नहीं रहा था, कोई ले नहीं रहा था। और जैसे आज डायमंड की कीमत आपको नजर आती है कि उसको देखते ही लगता है उलाला क्या क्या क्या चीज़ है, क्या चमक रही है ये, उसको कोई खरीदना नहीं चाह रहा था, उसको कोई भी लेना नहीं पसंद करता था। इवन जितनी भी लड़कियां होती थीं जब उनकी इंगेजमेंट होती थी तो उनके पास सोना चांदी इस तरह की रिंग्स हुआ करती थी, कोई भी डायमंड की तरफ फोकस ही नहीं कर रहा था। और जिनके पास डायमंड की खदान हुआ करती थी, जो डायमंड निकालने का काम कर रहे थे, उनका डायमंड तो बिक ही नहीं रहा था। बॉस वो बैठे थे सर पे हाथ रख कर के कि क्या होगा, कोई डायमंड लेगा कि नहीं लेगा, हमने निकाल तो रखे हैं इतने सारे डायमंड्स बट बिक तो रहे नहीं है। पहले भी ये होता था कि जो डायमंड्स थे वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास होते थे जो राजघराने से आते थे, यानी कि जो राजा रानी टाइप से होते थे, सिर्फ आपको उन्हीं के मुकुट के अंदर, उनके क्राउन्स के अंदर, उनके ज्वेलरी के अंदर आपको डायमंड नजर आते थे। अब इंडिया भी अपने कोहिनूर के लिए जाना जाता है, और ये भी आपको पता है कि जो कोहिनूर था वो भी अकबर जैसे शहंशाह के सर पर सजता था, किसी ऐरे गरे के पास तो नहीं होता था। और इसीलिए लोग उसको खरीदना भी पसंद नहीं करते थे कि हम क्या करेंगे, राजा टाइप चीजें हैं, हम खुद भी राजा हैं नहीं तो हम लेकर क्या करेंगे। धीरे धीरे राजाओं का दिन चला गया, यानी कि वो जो एक एरा चल रहा था किंग्स वाला वो खत्म हो चुका था। और अब बारी आ गई थी हमारे आम जनता की, आम लोगों की जो अपने घर में रह रहे थे। भैया अब उनको जब इंगेजमेंट करनी होती थी तो स्पेशली अब सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की रिंग्स खरीदी जा रही थी। अगर आप वर्ल्ड वॉर टू के बाद की रिंग्स कलेक्शन देखोगे तो आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा कि किसी ने डायमंड पहना है, क्योंकि सबके सब ने एक साथ गोल्ड और सिल्वर पहना हुआ था। अब हम आपको बता दें, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा दुख वाली बात है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद लोगों की रिंग्स देखी गई थी तो इतनी सारी थी कि एक बॉक्स में उससे अंदाज़ा लगाया गया था कि कितने लोगों की डेथ वर्ल्ड वॉर टू में हुई है। अब इसके बाद क्योंकि ये एरा भी ख़त्म हो चुका था और डायमंड व्यापारियों के पास पैसे ही नहीं आ रहे थे, वो डायमंड बेच ही नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने अपना दिमाग लगाया और 1938 से 1947 के बीच में डी बियर्स नाम के दो लोगों ने, यानी कि कुछ ऐसी कंपनी जो बना रही थी डायमंड की रिंग्स, डी बियर्स, वो आ चुके थे न्यूयॉर्क में। और उन्होंने एक एड निकाला, एड एजेंसी से मुलाकात की, NWIR पर काम कर रहे थे। उनको लगा कि भैया लोगों का दिमाग जो है वो बदलना पड़ेगा, जब तक लोगों की सोच में ये रहेगा कि गोल्ड की रिंग से काम चल सकता है तब तक डायमंड पर कोई
आएगा ही नहीं, और इसीलिए उन्होंने अपने विज्ञापन को जोड़ा इमोशंस के साथ। भैया ये आज भी होता है, अगर आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट को इमोशन के साथ जोड़ देते हैं तो यकीनन आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। मार्केट में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको कभी भी अपना सामान नहीं बेचते, वो हमेशा इमोशंस बेचते हैं, वो परिवार के साथ बिताए कुछ लम्हे बेचते हैं और आप उनसे अट्रैक्ट होकर ले लेते हैं। और यही बड़ी बात होती है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके दिमाग के साथ खेल जाते हैं। अब क्योंकि न्यूयॉर्क में जब ये एड निकाला गया तो उसको भी प्यार और मोहब्बत से, शादी से जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि भैया लड़का वही है, पुरुष वही है जो अपनी मोहतरमा को 2-3 महीने की सैलरी बचा कर डायमंड गिफ्ट करे। अगर उसने डायमंड गिफ्ट नहीं किया तो वो उसे मोहब्बत ही नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। एक आदर्श मंगेतर वही होता है जो अपनी मंगेतर को डायमंड पहनाए। सोना चांदी ये सब क्या होता है, सोना चांदी हीरे मोती इज नथिंग, जो होता है वो डायमंड है, डायमंड इज फॉर एवर। और ये लाइन आई थी 1947 में। लोगों ने हीरे खरीदने के लिए लगभग 2-3 महीने की सैलरी को उड़ा दिया, ये कह करके कि मार्केट में वैल्यू बनी रहेगी, समाज में लोगों की नज़रों में आदर्श मंगेतर के रूप में नज़र भी तो आना है ना भाई। और ये कंपनी इसके ऊपर आ चुका था, अब फ़ायदा ही फ़ायदा। लेकिन लेकिन लेकिन जैसे ही ये रिंग्स पुरानी हो रही थी लोग बेच रहे थे। अब क्योंकि लोग बेच भी रहे थे तो डायमंड जैसा एक कीमती हीरा जो था, एक जो कीमती ज्वेल था, वो धीरे धीरे इसकी कीमत डाउन होती ही जा रही थी। अब मार्केट में आ चुका था एक और तरीका कि डायमंड अगर आपने एक बार ले लिया तो ये बिकेगा ही नहीं, कभी रीसेल नहीं किया जाएगा। आपके पास डायमंड है बहुत अच्छी बात, अगर आप इसको बेचने की कोशिश करोगे ये नहीं बिकने वाला है। और वहीं से डायमंड की कीमत और बढ़ती चली गई, धीरे धीरे ये सिर्फ अमीरों की जेब के अंदर ही मिलता था। बट अमीरों का हमेशा वाला चीज़, जब तक नीचे ना आए तब तक मज़ा कहाँ आता है। हमेशा कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली, वो लोग जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो कोशिश करते हैं टू बी अ रिच, टू लुक लाइक अ रिच, और इसीलिए उन्होंने डायमंड्स खरीदना शुरू कर दिए कि काहे भैया हमेशा अमीरों के पास ही क्यों ये कीमती चीज़ दिखे, अगर उनके पास है तो इसका मतलब इसमें कुछ है, ख़ास है, और अगर उनके पास है तो हमारे पास होना बहुत बड़ी वजह है। और इसीलिए डायमंड्स की धीरे धीरे बिक्री बढ़ चुकी थी। तो अभी आपको अगर कोई डायमंड रिंग देता है या आप किसी के डायमंड को देख के कहते हैं ओ माय गॉड व्हाट अ रिंग, व्हाट अ नेकलेस, व्हाट अ ज्वेल, मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक सिर्फ मार्केटिंग ही मार्केटिंग थी जो लोगों ने आपको लूटने के लिए की थी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा चश्मा लगाइए, नज़रिया बदलिए और देखिए कि जिन चीज़ों की शुरुआत हुई है वो किसी ना किसी कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए की है, कभी भी उसने आपका फ़ायदा नहीं सोचा था। डायमंड इज नेवर फॉर एवर, क्योंकि वो दोबारा से बिक नहीं सकता, उसे आप रीसेल नहीं कर सकते, उसकी कीमत नहीं कर सकते, इसीलिए उसको फॉरएवर कर दिया गया। आपके इमोशंस के साथ जोड़कर आपके साथ लूटपाट की गई है। दोस्तों फिलहाल के लिए आप डायमंड खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सोच के मत खरीदिएगा कि डायमंड होना ही आपको रिच बनाता है, क्योंकि भैया मुझे लगता है जिसके पास गोल्ड है एक्चुअल में वो भी बहुत रिच है, क्योंकि गोल्ड को हम रीसेल कर सकते हैं। और गोल्ड की एक और ख़ास बात होती है, जितना पुराना सोना उतना महंगा सोना, जितना नया सोना आपको लगता है कि उसकी कीमत है, हाँ है, क्योंकि भैया सोना आजकल सर पे चढ़ के बोल रहा है। तो भाई हमेशा हीरे के पीछे मत भागिए, हो सकता है आप दुकानों पर हीरे की तलाश कर रहे हो और आपके बगल में ही एक हीरा बैठा हो। 2-3 महीने की सैलरी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो, आप उसको ला सकते हो तो ऑफ कोर्स लेकर आओ, लेकिन इस वजह से लेकर मत आना कि ये ट्रेंड में चल रहा है। और डायमंड की रिंग से ही प्रपोज करना एक प्रपोजल माना जाता है, सोने की रिंग से प्रपोजल नहीं है। 1940 में तो लोगों ने अपना काम चला लिया, बट अब आप थोड़ा सा होशियार हो जाइए और इन कंपनी वालों को बताइए कि हम इमोशंस को नहीं बेचने वाले, भले ही तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन हम अब अपना नज़रिया बदल के देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये कैसे लगा आपको ये जानकर कि जो अंगूठियाँ, जो हीरा आपको आपका हीरा लाकर दे रहा है या आप खुद खरीद रहे हैं उसके पीछे डी बियर्स की पूरी कहानी थी, कैसा लगा फिलहाल बताइएगा चैट बॉक्स में। और आइए एंजॉय करते हैं एक बढ़िया सा 90s का गाना, कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली हूँ, जैसे हाँ लोग पहले हीरे से मिल रहे थे बहुत बेचैन होकर के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे गुड मॉर्निंग गोंडा विद राजोन्नति, और आपके मिथ्स को तोड़ने की जिम्मेदारी है मेरे पास। तो मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे गुड मॉर्निंग गोंडा विद राजोन्नति, रेडियो ज्ञानस्थी 89.6 FM पर।

के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स, और बहुत कुछ। जब चाहिए हो

0: मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260-981-976 9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोना में। एंड वक्त है अब आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का, क्योंकि हमारे पास आ चुके हैं कुछ मैसेजेस, कुछ प्यारे प्यारे से मैसेजेस, तो उनको रीड करते हैं और देखते हैं भैया आज के शो में हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। आज के शो में जो सबसे पहला मैसेज आया है वो आया है हमारे अमित जी का, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड इसके बाद जो मैसेज है वो है हमारी जारा खान का, लिखा है हेलो सर, गुड मॉर्निंग टू यू। हालांकि सर नहीं, आज आपको मैम से मुलाकात करनी पड़ रही है। धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास लिख रहे हैं, ओके एवरी वन माई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड सविता दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुप्रभात सभी को, सुप्रभात आपको भी। उन्नति जी आपने बताया था गाजर के बारे में, आज सेब के बारे में भी बताया, अच्छी लगी जानकारी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड उन्नति जी गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र मोहन जी एंड आपको भी गुड मॉर्निंग। सुशील यादव हमारे साथ जुड़े हैं और आपने लिखा है कि हमारे साथ रहते हैं हमें फिर आजमाते हैं वही जो लोग सस्ते हैं सबक महंगे सिखाते हैं। क्या बात है, बहुत ही डीप बातें लिखते हैं आप। एंड इसके बाद लिखा है आपने सुशील यादव अपने कटसर यू रेलवे स्टेशन गोंडा से, आपका स्वागत करते हैं हम रेडियो कैरसली के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। अरीबा शेख हमारे साथ जुड़ी है, हेलो गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं अरीबा जी आप, आपका भी इस्तकबाल करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड लिखा है हेलो नती मैम, मॉर्निंग में आपकी आवाज़ सुनकर मेरा तो दिन ही गुड गुड हो गया, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत शुक्रिया। सविता जी की तरफ से आए हैं बहुत सारे इमोजीज। एंड अनमोल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और तुम्हारी नज़रों में हमने देखा, आई थिंक आपका ये गाना है, और अगर आप अपनी फरमाइश करना चाहते हैं तो आप 3 से 4 हमसे ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि 3 से 4 आपका अपना कॉलिंग प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा चलता है जो आपकी फरमाइशों का ही कार्यक्रम है। फिलहाल के लिए आइए इंजॉय करते हैं सिंगर्स ब्लिंक से, सिंगर्स किंग से माही आ जाओ, और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। मंजीत की आवाज़ में इंजॉय करते रहिए।

बने रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग ओडा। मिलते हैं एक जानकारी के साथ, एक इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि मेरे बिटारे में बहुत कुछ होता है आपको बताने के लिए। चाहिएगा कहीं नहीं, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग ओडा विद राज रति।

आप एंजॉय कर रहे थे कुमार सानू की आवाज में वो बेहतरीन नगमा जिसने न जाने कितने लोगों को सुसाइड करने से बचाया है। जी हाँ, हम जो भी चीज़ें सुनते हैं, जो भी चीज़ें जानते हैं, उस दौरान कुछ ऐसे भी गाने होते हैं जो लोगों की ज़िंदगी बचा लेते हैं, और उनमें से एक गाना ये भी था जो आप एंजॉय कर रहे थे, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। इवन लंदन के रेडियो में ये गाना 10 सालों तक बजाया गया था, क्योंकि एक लिसनर की डिमांड थी कि ठीक शाम को ये गाना ज़रूर से प्ले किया जाए, बिकॉज वो एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा था जहाँ उसको मन कर रहा था कि वो अपनी जान दे दे। तो भैया ये गाना न जाने एक नहीं, दोनों नहीं जाने कितने लोगों की जान बचा चुका है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ भी कोई है और ज़िंदगी में हर लम्हा चलता रहता है। तो भैया इस गाने को भूलिएगा नहीं। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं मॉर्निंग का स्पेशल वाला शो गुड मॉर्निंग ओडिया विद राजोन्नति, और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और आज है हमारे एक बेहद ही खास और अपनी बहुत ही सुरीली आवाज से सबका दिल जीतने वाले जनाब का जन्मदिन। नाम है उनका शान, जिस नाम से वो आते हैं ना, ऐसे उनके काम भी है, बड़े शानदार काम है उनके। और हम आपको बताते हैं उनका पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी। आई होप आपको नहीं पता होगा कि भैया शांतनु जो है वो एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और उनका जन्म मध्य प्रदेश के खांडवा में हुआ था, यानी कि आज ही के दिन 30 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। शान जिन्होंने बहुत ही रोमांटिक गाने दिए हैं, बहुत ही प्यारी आवाज़ है उनकी, और इतनी प्यारी आवाज़ में उन्होंने इतने लाजवाब गीतों को दिया है ना कि सुन के ऐसा लगता है कि सुकून मिल रहा है। शान की आवाज़ में भले ही आपको कुछ भी नज़र ना आए, लेकिन एक सुकून, एक ठहराव, एक मोहब्बत ज़रूर नज़र आती है। इवन आपका पसंदीदा एड जो कि हीरो का था, चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना, वो जो अंकित तिवारी ने दिया था, ऑफकोर्स वो भी इतना प्यारा है ना कि कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही शान की आवाज़ में भी दर्ज है। एक अंकित तिवारी का ऐड और कुछ शान की आवाज़ में सुने गए ऐड, कुछ ऐसे ऐड जो हमेशा आपके दिलो दिमाग में छा चुके हैं। उनमें से आज उनका बर्थडे है जिनको आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, ऑफकोर्स बॉलीवुड के बेहद ही जाने माने आपके दिलों पर राज करने वाले शान। तो आइए उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा तो जानते हैं बॉस, क्योंकि आपको भी पता है किसी की भी स्टार्टिंग यूं ही नहीं होती, कहीं भी कभी भी नहीं होती, उसकी मेहनत, उसका जो काम है वो बहुत सालों पहले शुरू हो जाता है। और आपको बता दें कि शान जिनकी आवाज़ अब आप सुनते हैं, बड़ी शानदार आवाज़ है, बड़े शान से आप इंजॉय करते हैं, उन्होंने गाना गाने की शुरुआत तब की थी जब वो 4 साल के थे। जी हाँ भैया, आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जितने भी हमारे बॉलीवुड के लोग हैं, वो एक्टर्स हों, वो डायरेक्टर्स हों, या वो कोई म्यूजिशियन हो या सिंगर हो, उन सब ने कहीं ना कहीं इसकी प्रिपरेशन जो थी वो बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम उम्र में करना शुरू कर दी थी। अब बात करें अगर AR रहमान की, तो उनकी भी उम्र बहुत कम थी, और उनके भी फादर की डेथ के बाद उन्होंने अपने घर का खर्च उठाया था। वहीं अगर बात करें प्रीतम की, तो प्रीतम को भी संगीत में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी। वो अलग बात है कि फैमिली वाले उन्हें इंजीनियर बनाने की कोशिश में थे, वो ISPCS की तैयारी कर रहे थे, और अगर नहीं होता तो वो बैंक में चले जाते। और ऐसे ही ठीक हमारे शान के साथ भी हुआ, जब वो 13 साल के थे तब उनके पिताजी इस दुनिया से चल बसे थे, बट उनकी शुरुआत जो हुई थी वो 4 साल की उम्र में हो गई थी। उनकी एक बहन है

ऑफ कोर्स उन्हें भी सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी गाना गाना पसंद करती हैं। और शान का पहला एल्बम उनकी बहन के साथ ही आया था और बहुत ज़्यादा हिट भी गया था। वो अलग बात है कि शान को पहचान उनके सोलो एल्बम से ज़्यादा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बहन के साथ गाना गाया है और ऑफ कोर्स वो काफ़ी ज़्यादा हिट भी रहा। शान के पिता जो कि एक म्यूज़िक कंपोज़र थे और इसी के साथ साथ जो शान के दादा हैं वो भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि उनके घर का माहौल ही बहुत संगीत नुमा था, हर जगह बस म्यूज़िक की बात की जाती है। उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में सॉन्ग्स को दिया है, न जाने कितनी बार एडवर्टाइजमेंट को दिया है, हम आपको बता दें बंगाली, मराठी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, नेपाली और या पंजाबी, मलयालम सहित न जाने कितनी भाषाओं के अंदर उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। और कभी कभी तो मुझे हैरानी होती है कि इतनी सारी भाषाओं में गाना गाना कैसा फील देता होगा। इवन जो भाषाएं हमें कई बार आती भी नहीं है, हमारे सिंगर्स उन भाषाओं में भी अपनी आवाज़ देते हैं, बट हाउ, क्या सीखते हैं या फिर सिर्फ म्यूज़िक जो आपके दिल को छू जाती है, जो कभी बॉर्डर नहीं देखती, जो कभी भाषा नहीं देखती, बस आपको पसंद आ जाता है। कई बार इंग्लिश के सॉन्ग आपको पसंद आ जाते हैं, कई बार चाइनीज़ गाने पसंद आ जाते हैं, समझ में भले ही कुछ ना आए लेकिन बखूबी बहुत लगती है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ऑफकोर्स शान ने भी डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में अपने गाने को दिया है, अपनी आवाज़ को दिया है और साथ ही साथ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने अपनी आवाज़ को दिया है। सिंगिंग में तो आप जानते ही हैं, आपकी कुछ बेहद ही पसंदीदा फिल्म लाइक अशोका, कल हो ना हो, फना, जबी में, तारे ज़मीं पर, थ्री इडियट, ओम शांति ओम, हाय बेबी, हमको दीवाना कर गए, सिंग इज ब्लिंक, तेरा नाम और टोटल धमाल जैसी सुपर सुपर हिट फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। और फना फिल्म का वो गाना तो आपको याद ही होगा, चांद सिफारिश, उस गाने के लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया था। तो भैया मेहनत जो होती है ना वो बहुत कम उम्र में शुरू कर दी जाती है और उसका जो नतीजा होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, वो भले ही आपको लेट मिले लेकिन बहुत खूबसूरत मिलता है। क्योंकि कहते हैं जो सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिल जाए, यानी कि जो बहुत अर्ली सक्सेस होती है ना, सिर्फ एक छलावा होती है, एक दिखावा होती है। जो कामयाबी आपको बहुत जल्दी मिल जाती है वो कामयाबी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, और जो कामयाबी थोड़ा सा वक्त लेकर मिलती है वो टिकती है और बहुत आगे तक जाती है। फिलहाल तो शान को रेडियो ज्ञानस्टी की तरफ से हैप्पी बर्थडे, हालांकि मुझे पता है वो मुझे सुन नहीं रहे हैं, लेकिन आपके पसंदीदा सिंगर हैं, मेरे पसंदीदा सिंगर हैं। और उनकी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एल्बम थी जब वो नए नए आए थे और उन्होंने सोलो गाना गाया था, वो था तन्हा दिल, और उसमें मेरा पसंदीदा गाना है भूल जा। तो आइए इन्जॉय करते हैं, मिलते हैं इस गाने के उस पार, बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्टी 89.6 FM। वक्त होता जा रहा है आपके अपने इंस्पायरिंग सेगमेंट का, यानी कि वो कहानियाँ को हम लेकर आते हैं आपके रूबरू, जिससे आपने कभी भी मुलाकात नहीं की है, आपको नहीं पता है कि ऐसी भी शख्सियत हमारे भारत में है, हमारे आसपास मौजूद है, जिनकी कहानियां आपने अखबारों में नहीं पढ़ी, आपने न्यूज़ चैनल्स में नहीं देखी, उनकी कहानियां आपकी आचुनति आपके लिए ज़रूर लेकर आती हैं। तो इंस्पायरिंग सेगमेंट का इंतजार कीजिए, लेकिन उससे पहले इन्जॉय कीजिए शान की आवाज़ में दो बैक टू बैक गाने। हम मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार, स्टे ट्यून्ड।

हां जी, और इसी के साथ वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आशुनति, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्ली गोंडा शहर की धड़कन पर। वक्त हो चला है आपकी अपने इंस्पायरिंग सेगमेंट का, यानी कि उन कहानियों का जिनको शायद आपने कहीं भी ना सुना हो। कुछ ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत काम को करते हैं, बट अफसोस उनके बारे में हमें बताने वाला कोई भी नहीं। तो भैया, उनके बारे में कहानियां ले करके आपकी आरजू नदी आती है, और आज इसी सेगमेंट में हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिन्होंने ब्रिजेस बना रखी हैं। अब आपको भी पता होगा कि जब भी हम ब्रिज बनाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाते हैं, तो कितने सारे पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं। बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं, बहुत सारे पौधों को जड़ से उखाड़ दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा भी इंसान है आपके बीच में जो पेड़ों से ही ब्रिज बनाते हैं, और उनके ब्रिज बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और उनकी इसी काम के लिए उन्हें भारत सरकार ने ऑफकोर्स पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। 69 ईयर का एक ऐसा इंसान, एक ऐसा महान पुरुष जो ऑफकोर्स अपनी माँ बाप को बचपन से देखता था कि नदियाँ पार करने में बड़ी दिक्कत आती है। उसके माँ बाप ठीक तरीके से नदियाँ पार नहीं कर पाते थे, और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने पुल बनाने में लगा दिया। यही चीज देख देख कर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने माँ पिता के लिए, अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए एक पुल बनाया जाए। और वो पुल बनाने का खर्चा कहाँ से आएगा, क्योंकि सरकार देती है, सरकार की तरफ से पुल बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, बट वो अकेला इंसान जो जंगल के बीच में रह रहा है, अगर वहाँ पे पुल बनाने की बात आएगी तो न जाने कितने पेड़ काटे जाएंगे, कितने पौधे काटे जाएंगे, कितनों का घर ख़त्म हो जाएगा, कितनी चिड़ियाँ बेघर हो जाएंगी। और यही सोचते हुए उन्होंने सरकार से मदद नहीं ली, उन्होंने खुद ही ब्रिज बनाने की ठान ली थी। हम आपको बता दें, नदी के इस पार से लेकर उस पार तक उन्होंने जो ब्रिज बनाई वो जिंदा है, यानी कि वो पेड़ों से बने हुए हैं, पेड़ों की जड़ों से, उनसे निकलती हुई लताओं को जोड़ जोड़ कर, उन्हें गूथ गूथ कर उन्होंने एक ब्रिज तैयार किया जिसको पार करना होता है। जी हाँ, और मैं आपको बता दें, वो इतना सुरक्षित है कि उस पर चलने के बाद आपको लगेगा नहीं कि ये जीवित है, ये जिंदा है। ना किसी पेड़ को नुकसान पहुँचाया, ना कोई पेड़ काटा, ना किसी पत्ते को तोड़ा, बस उसी पेड़ से निकल रही जड़ों से, उनसे निकल रही लताओं से, उन्हीं को जोड़ जोड़ कर, एक दूसरे में गूंथ गूंथ कर 4 साल की उम्र से उस ब्रिज को बनाना तैयार किया था। धीरे धीरे करके उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्रिज बनाए, और सबसे फेमस ब्रिज जो है उनका वो है उमरा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजबूत, और वो आम जिंदगी में आम किसानों की तरह मसाले उगाने का काम करते हैं, काले मिर्च, लौंग उगाने का काम करते हैं, और अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों को ब्रिज बनाना सिखाते भी हैं। वो बताते हैं कि कैसे तुम पेड़ों से ब्रिज बना सकते हो बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए, बिना प्रकृति को ठेस पहुंचाए, क्योंकि आपको भी पता है प्रकृति कोई भी चीज़ अपने पास रखती नहीं है, सोच समेत वापस करने का भी अंदाज़ वो जानती है, इसीलिए वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो एक रुपये भी खर्च नहीं करते हैं, बस अपने दिमाग का हुनर, अपने अंदर के जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके नदी को पार करने वाला ब्रिज तैयार करते हैं। क्या आप इनका नाम जानना चाहते हैं? चलिए आपको बता दें कि भैया, ये जो इंसान है जो महज 10 साल की उम्र से ये काम कर रहे हैं, उनका नाम क्या है? मेघालय के रहने वाले हेलीवार, हेलीवार ये उनका नाम है, और उन्होंने लिविंग रूट ब्रिज यानी कि जीवित जड़ों के पुल को बनाया है, और इसी वजह से इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। मैंने कहा था ना, मेरे पास कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो मैं बहुत दूर से लेकर आती हूँ, जिनकी कहानी आप तक नहीं पहुँच पाती हैं, जो आपको कहीं न्यूज़पेपर में नज़र नहीं आती हैं, किसी बड़े न्यूज़ चैनल पर नज़र नहीं आती हैं, वो कहानियाँ आप मेरी ज़ुबानी ज़रूर सुनते हैं। तो ये तो थी कहानी हेलीवार की, एक ऐसा इंसान जो 10 साल की उम्र से लेकर अभी तक पेड़ों से ही ब्रिज बनाते आ रहे हैं नदियों को पार करने के लिए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, एक भी रुपए का खर्च नहीं करवाते, और अपने साथ साथ दूसरों को भी सिखाते हैं कि किस तरह से आप बिना पेड़ों को काटे पेड़ों से ही एक मजबूत सा ब्रिज तैयार कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको इनकी कहानी? आई होप पसंद आई होगी। आर्ट और आर्टिस्ट दोनों ही कमाल के हैं।
प्लस इनका जो सोच है, इनका जो तरीका है, इनका जो अंदाज है, वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो बहुत पसंद आया इनका तरीका, आपको पसंद आया है तो चैट बॉक्स में बताइएगा। और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तो आइए इंजॉय करते हैं तारे जमीन से। खोलो खोलो दरवाजे, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इस बेहतरीन से आर्टिस्ट को सल्यूट करने के लिए इससे बेहतरीन नगमा कोई भी नहीं हो सकता।

0: ये बच्चे बहुत दिन का भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो।
1: बाबा कल की रोटी चल जाएगी?
0: हाँ हाँ हाँ बहनी, कल की रोटी बिल्कुल चल जाएगी।
1: तो फिर कल आना।
2: और एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले शो मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कुंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आज चुनती, और चल रहा है आपका इंस्पायरिंग सेगमेंट, यानी कि वो कहानियाँ जो आपको बहुत इंस्पायर करती है, ऐसा मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली, और अभी आपने जाना था हेलीफार के बारे में। लेकिन लेकिन दोस्तों ज़रा सब्र रखिए और मुझे ये बताइए कि कभी आप फेल हुए हैं ना? अच्छा, फेल से डर बहुत लगता है ना, ये सोचकर कि यार फेल हो गए चार लोग क्या कहेंगे। देखो, चार लोगों की टेंशन हमारी ज़िंदगी से कभी जाती नहीं है, हमेशा एक चार लोगों का जो एक बाउंड्री है, एक जो दीवार है वो हम खड़ा करके रखते हैं। वो अलग बात है कि ये चार लोग आपकी कामयाबी पर यूँ बदल जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं और आपने 3 एग्ज़ाम क्रैक नहीं किए हैं, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं है, तो चार लोग आपको ताने मारते हैं कि यार पता है कितना बनेंगे हीरो, हम जानते हैं ना बहुत होनहार बन रहे हैं, सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहे हो। वहीं पर अगर आपका पाँचवीं बार में निकल गया तो फिर कहेंगे हमको तो पता ही था बेटा तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत मेहनत करते हो। तो चार लोगों का जो एक खौफ है हमारे अंदर, इसको साइड में कीजिए, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो अपनी ज़िंदगी में चार बार फेल हुए थे। ये चार का किस्सा कहीं जा नहीं रहा है, चार घूम घूम के आ रहा है। फिर चाहे वो लोगों की बात हो, सीजन्स की बात हो आपके अपने विचारों की, क्योंकि चार विचार ही आते हैं अक्सर, चार चीज़ें ही करी जाती हैं और चार बार ही कोई फेल भी हुआ है। लेकिन आज वो दुनिया के सबसे जाने माने प्लास्टिक सर्जन बन चुके हैं, चार बार अपनी मेडिकल एग्ज़ाम को फेल कर चुके थे। लोगों को लगा था ये क्या डॉक्टर बनेंगे, लेकिन भाई वो ऐसा डॉक्टर बना कि आज अमेरिका से हर साल न जाने कितने डॉक्टर्स अपने पैसों पर सिर्फ इंडिया उड़कर आते हैं ताकि वो उनके साथ बैठकर उनके ऑपरेशंस में मदद कर सके। क्यों? क्योंकि वो इंसान एक ऐसा काम कर रहा है जो शायद दूसरे सोच भी नहीं सकते। यूँ तो मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुनाती रहती हूँ जहाँ एक कहावत है जो हमारे बीच में कि डॉक्टर्स खुदा होते हैं, वो सच हो जाता है। और एक उसी कहानी की कड़ी में हमारे पास एक ऐसे डॉक्टर की स्टोरी है जो आपको दो जगह पे इंस्पायर्ड करने वाली। पहला कि लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो असल में ज़िंदगी जीते हैं। और दूसरा ये कि जो चार लोगों की टेंशन छोड़िए, क्योंकि चार बार फेल होने के बाद भी आप पाँचवीं बार में निकल सकते हो। तो खुद को कभी किसी से कम मत समझिए, और ये भी मत समझिए कि अगर एक बार में आपने अपना सपना नहीं पाया तो आप कभी पा नहीं सकते। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप IAS नहीं बन सकते, या आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप बन सकते हो। वो अलग बात है कि आपको अपने अंदर से वो जो शेम है लूजरपन की, वो निकालनी होगी। खुद को इस सोच से निकालना होगा कि अगर एक बार फेल हो गए तो हमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा भी है जो चार बार फेल होने के बाद भी आज एक साल में 500 से ज़्यादा सर्जरीज करता है। इवन सर्जरी भी ऐसी वैसी नहीं, वो इतनी ख़तरनाक सर्जरी करते हैं जिसको हम कहते हैं बर्न मार्क्स। आपको भी पता है जब एक इंसान जल जाता है तो उसकी हालत क्या हो जाती है, वो उसकी स्किन कितने सालों तक के लिए ख़राब हो जाती है, वो अपने सही तरीके से नहीं नज़र आती। लोग उस इंसान को देखना पसंद नहीं करते हैं ये सोच कर कि यार इसका तो फेस अच्छा नहीं है। वो उन लोगों को ज़िंदगी दे रहा है। वो एक ऐसे डॉक्टर हैं जो हिमालय की चोटी पर रहने वाले, जो हिमाचल की तरफ रहने वाले लोगों को एक नई ज़िंदगी देते हैं, क्योंकि वहाँ की महिलाएं अक्सर खाना बनाते टाइम जल जाया करती हैं, बच्चे खुली आग में गिर जाया करते हैं। एक एक दिन का बच्चा जो जल जाता है वो उनकी सर्जरी करने का काम करते हैं। एक लड़का जो खुले आग में गिर गया था, जिसका पूरा फेस जल गया था, और उन्होंने उसको एक नया चेहरा दिया, जो सिर्फ एक चेहरा नहीं था, उसके लिए एक नई ज़िंदगी थी। एक ऐसे प्लास्टिक सर्जन जो खुद तो चार बार फेल ज़रूर हुए हैं, लेकिन अपनी सर्जरी में किसी को भी फेल नहीं होने देते। और कमाल की बात ये है कि वो ये सब कुछ एक भी पैसे के बिना करते हैं। वो सबकी सर्जरी तो करते हैं बट किसी से चवन्नी भी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वो सर्जरी करते हैं वहाँ के लोगों के पास इतने पैसे होते ही नहीं, उनके पास शायद 10 रुपए भी नहीं होते हैं अपनी मेडिकल की चीजों को लेने के लिए, दवाइयों को खरीदने के लिए। उस दौरान इतनी महंगी सर्जरी कोई कैसे अफोर्ड कर सकता था, और इसी को देखते हुए उन्होंने अपनी सर्जरीज फ्री कर दी है। एक ऐसे डॉक्टर जिनकी मदद करने के लिए अमेरिका से, पूरे देश से, पूरी दुनिया से जाने कितने डॉक्टर्स अपने पैसों पर वहां से पासपोर्ट वीजा बनवाकर इंडिया आते हैं ताकि वो उनकी सर्जरीज में उनकी मदद कर सके। जानना चाहेंगे उनका नाम क्या है? हाँ हाँ बताइए बताइए। अगर आप जानना चाहते हैं और आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको इंस्पायर कर सकता है, ये सोचने पे मजबूर कर सकता है कि भैया ज़िंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, कितनी बार आप फेल क्यों ना हो, कितनी ही बार आप गिरो क्यों ना, लेकिन अगर आपके अंदर उठने का जज्बा है तो ज़िंदगी आपको आगे जाकर मौका ज़रूर देती है। और तब तक आपकी चीज़ें आपके साथ वैसी ही रहती हैं जब तक आप उनसे कुछ सीख नहीं लेते, है ना। हम हमेशा पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं ये सोच कर कि यार एक बार फेल हो गए अब ये घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, और इन सब के बीच में हम अपने सपनों को कुचल देते हैं, अपनी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। वहीं पर ये इंस्पायरिंग सेगमेंट में जो हमारे पास ये पर्सनैलिटी है, ये हमें इंस्पायर करती है कि आप चाहे कितनी भी बार फेल क्यों ना हुए हो, अगर जज्बा है, अगर कुछ कर दिखाने का हुनर है, उम्मीद है, चाहत है, ज़िद है, तो आप वो कर भी लेते हो। लेकिन जब आप कुछ कर लो तो उसको कभी घमंड में मत बदलने देना, उसको हमेशा एक काइंडनेस की तरह रखो और हमेशा दूसरों के लिए भी जीना सीखो। अपने लिए जीना तो जीना है ही, बट कभी कभी दूसरों के लिए जीना भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये है भैया 84 साल के, जिनका नाम है योगी एरन, डॉक्टर योगी एरन। ये नाम आपने शायद कभी पहले ना सुना हो, बट ये ऐसे प्लास्टिक सर्जन हैं जो स्पेशली उन चीज़ों को ट्रीट करते हैं जो जल चुकी होती है, जो बर्न मार्क्स होते हैं, जो बर्न केसेस आते हैं, इवन जो 3rd degree बर्न होते हैं जिन्हें ऑलमोस्ट बचाना मुश्किल हो जाता है, ये उनके लिए काम करते हैं। लोगों को नया चेहरा देते हैं, लोगों को नया हाथ देते हैं, नई ज़िंदगी देते हैं और उनसे उनकी ज़िंदगी की कीमत भी नहीं लेते हैं। उसको ये भी नहीं कहते हैं कि तुम मुझे पेमेंट नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा। वो बस इलाज करते हैं और उनके मरीज़ उनसे खुश होकर जाते हैं अपने नए चेहरे के साथ, अपनी नई चीज़ों के साथ। तो भैया ये तो थे डॉक्टर योगी एरन, जैसा नाम वैसा काम। फिलहाल आप बताइए आपको इनकी कहानी कैसी लगी और क्या आप इनकी कहानी सुनने के बाद भी चार लोगों के बारे में सोचने वाले हैं चार बार फेल होकर के? क्योंकि भैया ये तो फेल हुए थे और इन्होंने तो आई थिंक किसी के बारे में सोचा नहीं होगा सिवाय इसके कि इन्हें अपना ख्वाब पूरा करना है। तो आप भी अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ जाइए, लोगों की सोच छोड़ दी

हाँ जी भैया, तो अब जरा क्योंकि वक्त होता जा रहा है आपसे विदा लेने का, तो इंस्पायरिंग सेगमेंट में आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी इंस्पायरिंग मोड की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में एक कहावत है कि उम्र के साथ साथ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बट ऐसा हर कोई नहीं मानता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हम कैसे अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आइए हम आपको बताते हैं एक ऐसी संस्था के बारे में जो इन्हीं के लिए काम किया करते हैं। हमारे भारत में जब किसी की उम्र हो जाती है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है और कहते हैं कि अब आप घर पे रहिए, आपके पोते, आपकी बहू आपका ख्याल रखेगी, और उन्हें हमेशा ऐसा महसूस कराया जाता है कि अब वो किसी न किसी पर डिपेंड हैं। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे भारत देश में जो नहीं चाहते वो किसी पर डिपेंड होकर रहे, जो नहीं चाहते कि वो अपनी ज़िंदगी किसी और के भरोसे जिए, जो चाहते हैं कि 65 की एज के बाद भी, 85 साल की उम्र के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करते रहें, कुछ प्रोडक्टिव करते रहें। उनका सवाल होता है कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकती हूँ, कैसे मैं रिटायरमेंट के बाद भी काम कर सकती हूँ, और ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से मैं घर पर ना बैठकर बाहर निकलकर अपनी चीज़ों को यूं ही करती रहूँगी। तो वहीं पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है, एक ऐसी संस्था सामने आती है जो इन लोगों को काम देने का काम करती है जो ऑफकोर्स रिटायर हो चुके हैं। ये उन रिटायर लोगों को ऑफकोर्स जॉब्स ऑफर करती है, उन्हें टीचर बनाते हैं, क्योंकि भैया जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, उनकी एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उन्होंने ज़िंदगी के कई मायने देखे होते हैं, कई रूप देखे होते हैं, उनके पास किताबों से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारे घर पे दादी, हमारे घर पे नानी, उन्हें इतनी सारी बातें पता होती है जो शायद हमने कहीं भी ना सीखी है। उनके पास तजुर्बा होता है और उसी तजुर्बे का सीधा सीधा सही फ़ायदा उठाते हैं हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है द इंस्पायरिंग सीनियर्स फाउंडेशन। ये वो लोग हैं जो लोगों को जॉब देते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। क्यों? लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई भैया? इसकी शुरुआत जब उनके फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी प्रोडक्टिव बनी रहे, जिससे मैं कुछ बेहतर करती रहूं, अपना योगदान अपने समाज में देती रहूं, और ऑफ कोर्स मैं घर पर ना बैठी रहूं, मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे सार्थक बनाऊं। और मुझे जल्द ही एहसास हो गया था कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाखों वरिष्ठ नागरिक यही सवाल खुद से हर रोज़ पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा जीवन सार्थक बन सके, और उनके पास होता है दशकों का ज्ञान और अनुभव, उनके बाद भी वो कहीं काम नहीं कर पाते, वो घर पर रहते हैं क्योंकि उनको तो रिटायरमेंट घोषित कर दिया जाता है, यानी कि अब वो बाहर जाकर काम नहीं कर रहे हैं, वो जॉब्स नहीं कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, उनके पास चीज़ें बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन वो बता नहीं पा रहे। तो भैया उनके लिए बनाया गया था इंस्पायरिंग सीनियर फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, वो भी इसी विश्वास के साथ कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो सिर्फ केवल देखभाल पाने के लायक नहीं होते, वो सिर्फ देखभाल पाने के लिए नहीं बने होते हैं, बल्कि वे समाज की एक ऐसी कीमती चीज़ है उनके पास जो शायद हमें उनसे ही मिल सकती है। तो उनके स्वास्थ्य को यानी कि उनके हेल्थ को भी बढ़ावा दिया जाता है, उन्हें समझाया जाता है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो अपनी हेल्थ को बरकरार रखते हुए बाकी लोगों तक अपना ज्ञान पहुँचाने का काम करते हैं, बाकी लोगों को इंस्पायर्ड करते हैं, बाकी लोगों को जाकर के ज्ञान देते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, अपने लाइफ के तजुर्बे, अपने लाइफ का जो नॉलेज होता है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। तो जहां पर लोग रिटायरमेंट के बाद घर पे बैठ जाते हैं, ये फाउंडेशन ऐसे ही लोगों को काम देता है, जहां पर लोगों को बस अपनी जीवन को, अपनी ज़िंदगी को, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, उसे सार्थक बनाना है, जिनके पास अनुभव तो बहुत है लेकिन जरिया नहीं था अपने एक्सपीरियंस को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो इंस्पायरिंग सीनियर फाउंडेशन ये काम कर रहा है। फिलहाल आपको इनका तरीका कैसा लगा चैट बॉक्स में बताइएगा, और अब मैं आपसे चाहूँगी कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आज की प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा, मिथ बस्टर या फिर इंस्पायरिंग सेगमेंट, किसकी कहानी आपको आई पसंद, फीडबैक में जरूर से बताइएगा। फिलहाल
लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, जस्ट इसके बाद आते हैं आपके चैट बॉक्स की तरफ आपके मैसेजेस और फीडबैक को पढ़ने के लिए। तो एंजॉय करते रहिए, अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा, बने रहिए, सुनते रहिए। आप सुन रहे गुड मॉर्निंग ओनर विद राजे उन्नति।

हाँ जी, तो आइए भैया बढ़ते हैं आपके अपने चैट बॉक्स की तरफ, आपके फीडबैक्स और आपके मैसेजेस को पढ़ने के लिए।

हमने जो आखिरी मैसेज पढ़ा था वो हमारे अनमोल जी का था, और उसके बाद हमारे साथ जुड़ी थी गुलफशाह सिद्दीकी जी। गुड मॉर्निंग उन्नति मैम, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड इसके बाद मैसेज था हमारे अरविंद जी का, और लिखा था आपने कि आई थिंक आप वही हो जो मैं सोच रहा हूँ, चलो जल्दी से अपना परिचय दे दो हमको आरजे मैम, और मैं वही हूँ जो आप सोच रहे थे। तो मैं हूँ आपकी अपनी आरजे उन्नति, एंड मेरा आज का दिन अच्छा जाने वाला है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है, और मुझे भी यही उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा जाए। एंड इसके बाद आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। अरविंद जी ने लिखा था कि आप लोगों के ही मैसेज है कि सबका नाम लिया था, पर आप भैया हमने भी सबका नाम लिया था, जिस जिसका नाम हमारे पास आया था हमने उन सभी का नाम लिया था, गुलफशाह जी का नाम भी लिया गया था उसमें। एंड सविता दुबे जी की तरफ से बहुत सारी इमोजीज, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद मैसेज आया है कि उन्नति मैम भी सोच रही होंगी कहाँ मुसीबत मोल ले लिए ना, भैया हम काहे सोचेंगे ये सब, हमको तो मज़ा आता है, बहुत मज़ा आती है हमको। एंड इसके बाद लिखा है यूं बदलने का हुनर हमें भी सिखा दो, जैसे तुम बेवफा बने वैसे हमें भी बना दो। अच्छा जनाब, ये सब बनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जैसे हैं बेहद खूबसूरत हैं, और अगर आप उनकी तरह बन जाएंगे तो फिर फर्क कहाँ रह जाएगा आप में और उनमें, बताइए बताइए। एंड इसके बाद गुलफशाह जी का मैसेज है, अरीबा शेख हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं, उन्नति जी का फेवरेट गाना चल रहा है। जी हाँ, वैसे मेरा पसंदीदा गाना तो है कुमार सानू की आवाज़ में जब कोई बात बिगड़ जाए। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। एंड इसके बाद ओके कि भैया मेरे लिए ही मैसेज है कि आ गई बरेली की मशहूर नान खटाई आ गई। एंड इसके बाद आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस खुद के लिए कमेंट्स हैं, क्योंकि आजकल मैं ऐसा ही हूँ यार। ओ या आजकल आप बीमार हैं, आप बताइए आप कैसे हैं फ़िलहाल के लिए। आए होप आप ठीक होंगे और हॉस्पिटल के बाद अपना ख्याल रख रहे होंगे। शान जी शान से रहें माता रानी। सविता दुबे जी ने लिखा है ये मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया। आर के श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग आर्य नदी जी, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? श्रीवास्तव सर, आपका स्वागत करते हैं, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे आप। एंड इसके बाद हमारे पास है मिश्रा जी का मैसेज, मेरा फेवरेट गाना, बहुत बहुत शुक्रिया। मिश्रा ऑप्टिकल गोना हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आर के श्रीवास्तव जी। एंड इसके बाद लिखा है बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत बहुत शुक्रिया तेरे चेहरे पर। ओके, तो ये गाना आपको पसंद आया था, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद है अरविंद जी का मैसेज, बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड धर्मेंद्र जी का भी मैसेज आ रहा है लगातार। सुनील यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू। आज अदनान सर नहीं आए, जी हाँ, क्योंकि आज अदनान सर का वीक ऑफ होता है, और इसलिए आज वेंसडे के दिन मेरी मुलाकात होती है आपसे। मैं तो बस इतने इंतजार में रहती हूँ कि कब सर छुट्टी मारे और कब मैं आपके पास आ जाऊँ, लेकिन हमारे सर रोज़ रोज़ रहते हैं, बस आज के दिन नहीं होते, और इसीलिए आज के दिन हमारी मुलाकात आपसे होती है, और आई होप आपको हमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड ओके, आप इटावा से हैं, उत्तर प्रदेश से लाइव सुन रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, कुछ नई जानकारी आपको हासिल हुई होगी, कुछ नए लोगों के बारे में आपको पता चला होगा, कुछ कहानियों ने आपको इंस्पायर्ड किया होगा, तो कुछ इन्फॉर्मेशंस ने आपके पुराने थॉट्स को थोड़ा सा तोड़ा मोड़ा ज़रूर होगा। अगर ऐसा है तो चैट बॉक्स में बताइएगा, और आप रखिएगा अपना ख्याल। मुलाकात होती है आपसे 3 से 4 कॉल ट्यून गोंडा में, सुनना मत भूलिएगा आपकी अपनी फरमाइशों का कार्यक्रम, जिसको ऑफकोर्स मैं ही लेकर आने वाली हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द, बस कुछ ही लम्हों के बाद, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए आपका अपना शो। एंड छोड़कर जाती हूँ आपको मैं मौसम फिल्म के गाने के साथ, सज धज के प्रीतम का संगीत है, मेगा बाजी की आवाज है, तो एंजॉय करते रहिए, और हम मिलते हैं बस कुछ ही देर बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9286098197 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमे एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
6: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
7: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर गांव की गूंज, जहां हर एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि समाज का आईना होता है। हम हैं आपकी अपनी आवाज, आपके फेवरेट शो गांव की गूंज की टीम के साथ। आज हमारी 89.6 FM की टीम लेकर आई है एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम हाल ही में उत्तर प्रदेश के माधोपुर गांव गए थे, जहां हरियाली ही और सादगी थी, लेकिन उसी सुंदरता के बीच छुपी है एक कड़वी सच्चाई, बेटियों के प्रति भेदभाव। आज हम उसी सच्चाई को आपके सामने रखेंगे और उसे बदलने की शुरुआत करेंगे।
8: जब हम माधोपुर पहुँचे तो सच कहूँ ऐसा लगा जैसे किसी किताब के पन्ने में प्रवेश कर लिया हो। चारों तरफ फैले हुए गेहूं के खेत, जिनकी बालियां हवाओं के साथ ऐसे झूम रही थीं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू थी और लोगों के चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी थकान पल भर में उतर गई हो।
9: हाँ जया, यह सब बहुत सुंदर था, लेकिन जैसे जैसे हम गांव के अंदर गए, कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने दिल को बेचैन कर दिया। हमने देखा कि यहाँ लोग बहुत मेहनती हैं, परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बात बेटियों की आती है तो वही लोग, वही परिवार अचानक बदल जाता है।
7: मुझे याद है जब हमारी गांव की गूंज की टीम 89.6 FM की टीम एक घर में गई थी। वहां सब लोग खाना खा चुके थे, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब। और उसके बाद चुपचाप बिना कुछ कहे घर की बहुएं और बेटियां रसोई में बैठकर बचा हुआ खाना खा रही थीं। उनके चेहरे पर एक शिकायत नहीं थी, लेकिन आंखों में एक आदत सी थी, जैसे ये उनके जीवन का हिस्सा बन चुका हो।
10: हमार तो जियरा हिल के रहेगा। हम सोचित रहे कि ये का नियम है, का बेटी और बहू के पेट कम होते है, का वो लोग इंसान नहीं है का। ये सब देख के लगत है कि आज भी हम कहीं न कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। जहाँ प्यार है, अपनापन है, लेकिन बराबरी अभी तक ना पहुँची है।

0: हमने माधवपुर में सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं देखी, बल्कि एक सच्ची सोच देखी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ लोग बहुत धार्मिक हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन जब हमने ध्यान से सुना तो कई जगह एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, भगवान बस बेटा देना। कुछ लोग तो तंत्र मंत्र तक कराते हैं सिर्फ इस इच्छा में कि घर में बेटी नहीं बेटा ही जन्म ले।
1: यह सुनकर मन में एक सवाल उठा, क्या भगवान को भी हम भेदभाव सिखा रहे हैं?
2: और बात यहीं तक सीमित नहीं थी, हमने कुछ ऐसी बातें भी सुनी जो दिल को झकझोर देने वाली थी। कानूनन यह गलत है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे यह जानने की कोशिश करते हैं कि गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की।
3: और अगर उनका पता लग जाए कि पेटे में लड़की है तो उनका जन्म ले के पहले ही खत्म करे की सोच लेते हैं। गांव की दाई या कुछ गलत रास्ते अपनावे वाले लोग हैं, महतारी का इसी दवाई दे हैं जो मासूम की जिंदगी का दुनिया देखे इनके पहले ही खत्म कर दे, जानू कि नहीं।
1: अरे बाप रे बाप,
2: सोचिए जिसे हमने देखा भी नहीं, जिसने कोई गलती भी नहीं की, उसे सिर्फ इसीलिए जीने का हक नहीं मिलता क्योंकि वो बेटी है।
1: यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अन्याय है। अरे हम कहते हैं कि हम शिक्षित तो हो रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर आज भी हम एक बेटी को जन्म लेने का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं तो हम किस विकास की बात कर रहे हैं?
3: अरे ये सब तो सुन के हम सन्न रह गए। हम सोचत रहे कि आज भी कहीं न कहीं बेटी के जन्म से पहले रोक दियल जात है। का कसूर बा वो नन्ही सी जान के, सिर्फ इतना कि वो बिटिया बा, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है।
1: बिल्कुल सही कहा था।
0: और जो बेटियां जन्म लेती भी हैं, उनका जीवन भी आसान नहीं होता। हमने देखा घर में लड़के आराम से बैठे हैं या पढ़ाई के नाम पर बाहर जा रहे हैं, और वहीं लड़कियां छोटी सी उम्र में रसोई में लगी हैं, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, पानी भरना, यहाँ तक कि खेतों में भी काम करना।
2: उनके लिए बचपन, खेल, सपने, सब कुछ जैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उन्हें यह सिखा दिया जाता है कि तुम्हें तो ससुराल जाना है, तुम्हें घर का काम सीखना है।
1: और दूसरी तरफ बेटे चाहे पढ़ाई में अच्छे हों या नहीं, माँ बाप उनके लिए हर संभव कोशिश करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कर्ज लेते हैं, यहाँ तक कि खेत तक बेच देते हैं, बस इसीलिए क्योंकि वो बेटा है और उन्हें लगता है कि वही उनका भविष्य है।

0: हमारी 89.6 FM की टीम ने इस गांव में कई घरों में एक ही बात बड़े गर्व से सुनी। लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारे तीन तीन बेटे हैं, तीनों शहर में नौकरी करते हैं। उनकी आवाज में गर्व था, एक संतोष था, जैसे उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। लेकिन जब हमने धीरे से पूछा, क्या वे आपका ध्यान रखते हैं, क्या वे आपसे मिलने आते हैं, तो अचानक वही चेहरे जो अभी तक गर्व से चमक रहे थे एकदम शांत हो गए, आंखें झुक गईं और होठों पर एक मजबूर सी खामोशी छा गई।
1: हम उसी घर में कुछ देर बैठे और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पता चला कि इनके तीन बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ शहर में बस गए हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी जिंदगी, लेकिन उस अच्छी जिंदगी में अपने माँ बाप के लिए कोई जगह ही नहीं बची।
2: वो तो ना उन्हें अपने पास बुलावत है, ना ही गांव आवे की उनका फुर्सत है। और सबसे दुखद बात ये है कि अपन माँ बाप का शहर बुलावे से भी कतरात हैं, क्योंकि उन्हें डर लागत है कि कहीं उनके सादे सीधे साधे माँ बाप उनकी सारी इमेज का खराब ना कर दें।
3: फुरे कहा तू बहनी, सोचिए जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों की पढ़ाई में, उनके सपनों के लिए, उनके भविष्य के लिए लगा दी, खेत बेच दिए, अपनी जरूरतें छोड़ दी, आज वही माँ बाप अपने ही बच्चों के जीवन में एक बोझ जैसे महसूस किए जा रहे हैं। यह सिर्फ दूरी नहीं है, ये भावनाओं की दूरी है जो सबसे ज्यादा दर्द देती है।
0: लेकिन उसी घर में एक कहानी और भी थी, एक ऐसी कहानी जिसने हमारे दिल को छू लिया।
1: उस घर की एक बेटी भी थी, रीमा।
3: रीमा? रीमा ने शहर में शादी करने से साफ मना कर दिया था। जब रिश्ते आए बड़े बड़े शहरों से, अच्छे घरों से, तो उसने एक ही बात कही, मेरे माँ बाप मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर दूर नहीं जाऊंगी।
2: रीमा कहत रही कि जब हम शहर में जाइबे, हम बगल के गांव में शादी करब, ताकि रोज माई बाबू का देख सकी, उनका दवा पानी, उनका हाल चाल सब खुद देखी। और सच माँ वो अपनी जिद पर अड़ के रह गई और बगल के गांव में ही शादी करी से, जानियो कि नहीं?
3: हाँ, बगलियम करी से।
2: हाँ,
0: आज वही रीमा सरकारी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका है। सुबह स्कूल जाती है, बच्चों को पढ़ाती है और शाम को अपने माता पिता के पास आ करके उनका हाल भी पूछती है, उनको दवा देती है और उनके साथ बैठती भी है।
1: हमने अपनी आँखों से देखा, उसके माँ बाप उसे भर भर कर आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी आँखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, गर्व और प्यार के आंसू थे।
3: और उन्होंने कहा, हमने जिंदगी भर अपने बेटों के लिए सब कुछ किया, लेकिन असली सहारा हमारी बेटी निकली। उनकी आवाज में पछतावा था, अपनी सोच पर, अपने फैसलों पर।
2: देखो ना दीदी, जिन बिटवन की खातिर सब कुछ दे दिया गा, वो सब शहर में बड़े खुश हैं, लेकिन असली सुकून तो बिटिया से मिलत है। बेटी ना हुई होती तो घर खाली खाली लागत, और बेटी साथ अगर है तो बुढ़ापा में सहारा बन जाती।
0: अब सवाल ये नहीं है कि बेटा जरूरी है या बेटी, सवाल यह है कि हम किसे क्या समझते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, बेटा नाम रोशन कर सकता है, लेकिन बेटी जीवन रोशन करती है।

0: आज हम सब यहाँ पर एक परिवार के मामले पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रामलाल के घर में 5 बेटियाँ हैं और अब वह दूसरी शादी करना चाहता है ताकि उसे बेटा हो सके।
1: प्रधान जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या यह सच है कि हमारे कानून में एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की अनुमति नहीं है? तो फिर हम गांव की सभा में ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं जो न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है?
2: और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये न्याय है कि 5-5 बेटी होवे का दोष सिर्फ माँ पर डाल दिया जाए? हमें तो ये बात समझ में नहीं आवत है।
3: क्या किसी ने यह सोचा कि बेटी या बेटा होना उसके हाथ में नहीं है? विज्ञान कहता है यह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो फिर हर बार माँ को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है?
1: एक नारी जो 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, उसके दर्द को सहती है, उसे ही दोष देना, क्या ये इंसाफ है या हमारी गलत सोच?
4: और क्या बेटियां होना कोई अभिशाप है? वो 5 बेटियां जो आज उस घर में हैं, क्या वो प्यार नहीं दे सकती? क्या वो अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती? या सिर्फ कि वो बेटियां हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है?
5: लेकिन समाज में तो बेटा जरूरी होता है वंश चलाने के लिए, नाम के लिए।
2: ये तो नाम का वंश होए, नाम तो तब रोशन होए जब घर में इंसानियत बची रहा है। एक बात भाई कि 5-5 बेटियां हुई गई तो मेहरारू का दोष दो और दूसर शादी कर लो। और वो औरत तो इंसान ना हो जो दूसरे का दिल का दर्द न समझे। इका न्याय नहीं कहा था, इका अत्याचार कहा जात है।
1: पर आज हम ये फैसला लेते हैं तो हम सिर्फ एक औरत के साथ अन्याय नहीं करते बल्कि हम पूरे समाज को ये संदेश देते हैं कि बेटी होना गलत है और ये सोच कभी खत्म नहीं होगी।
3: हमें यह तय करना होगा कि हम परंपरा को मानेंगे या सच्चाई को।
4: और अगर बदलाव यहीं से शुरू नहीं होगा तो कहीं से भी नहीं होगा।

0: आज हमने जो देखा सुना उसने सिर्फ हमारे मन को दुखी नहीं किया बल्कि हमें जिम्मेदार भी कर दिया। अगर हम सिर्फ सुनकर देखकर चले आते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हम भी उसी गलती का एक हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि बदलाव छोटी छोटी शुरुआत से आती है।
1: जब एक माँ अपनी बेटी को बेटे जितना खाना देती है, जब एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए उतना ही सोचता है, जब एक परिवार बेटी के जन्म पर उतनी ही खुशी मनाता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है।
2: हम हमेशा कहते हैं कि समाज बदलना चाहिए, लेकिन समाज बनता किससे है? हमसे, हमारे घरों से, हमारी सोच से। अगर आज भी हम अपनी बेटियों से कहें कि तुम रसोई संभालो और बेटों से कहें तुम आगे बढ़ो, तो फिर हम किस बात की बराबरी कर रहे हैं?
1: एक पढ़ी लिखी बेटी सिर्फ अपने लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए बदलाव लाती है। वो अपने बच्चों को शिक्षित करती है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाती है और वो अपने माँ बाप का सहारा भी बनती है। इसीलिए बेटी को रोकना नहीं है, उसे उड़ान देना है।
3: देखो बहनी, बेटी का रोके के ना चाहिए, उके सपना ना तोड़े के चाहिए। वो भी चाहत है कि कुछ बन जाए, वो भी चाहत है कि माई और बाबूजी का नाम रोशन करे। जब वो बड़ा हो के उड़ना चाहत है तब हम ओकर पंख कहे काट दे। अब उका उड़े दियो के रोक ना लगाओ, बेटी के पंखन में उड़ान भरो।
4: हमने हमेशा बेटों को ही सब कुछ समझा, लेकिन आज समझ में आया कि असली सहारा तो बेटी होती है।
5: आज मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी बहन को भी पढ़ाऊंगा और उसे भी आगे बढ़ने का मौका दूंगा।

0: आज माधोपुर में बदलाव की जो लौ जली है उसे बुझने नहीं देना है। जया, किरण दी, हमें रुकना नहीं है, चलिए अब किसी और गांव चलते हैं, किसी और चौपाल पर बैठते हैं, क्योंकि यह संदेश जितना दूर तक जाएगा उतनी ही मासूम जिंदगियां खिल उठेंगी।
1: बेटी है तो भारत है, उससे ही हर आंगन है, उसके सपनों से ही रोशन है ये सारा जीवन। कलम पकड़ेगी, हल चलाएगी, रचेगी नया इतिहास, हर आंगन अब महकेगा, खुशियों का होगा वास। ऊंचाइयों को छुएगी अब, न डरेगी न ये झुकेगी, प्रगति की इस राह पर अब बेटियां ही नहीं रुकेंगी। शिक्षित होगी नारी तो जग में होगा सवेरा, मिट जाएगा अंधकार, होगा खुशियों का बसेरा। बिल्कुल सही समता, हमारा सफर जारी है, और जब तक हर घर में बेटी को उसका हक नहीं मिलता, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारी 89.6 FM की टीम का यही मिशन है, क्योंकि समाज तभी बदलता है जब हमारी सोच बदलती है।
2: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM गांव की गूंज, और हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी इन बातों से सहमत होंगे और आज से ही अपने घर की प्यारी सी बेटियों को ढेर सारा प्यार, सम्मान और दुलार अवश्य देंगे।
3: याद रखिएगा, बेटी है तो घर है, बेटी है तो प्यार है, बेटी है तो भविष्य है। नमस्कार।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
7: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
10: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
11: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड,
12: कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
13: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस अकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
14: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
15: मतलब?
14: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
16: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
17: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
17: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम वेलकम वेलकम अवाम वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा शो जो कि आपको देता है मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, जिसका कि नाम है ग्यारसली लाइव। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और आप सभी का तहे दिल से करती हूँ आपके अपने वाले शो में स्वागत। उनका भी जो कि हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उनका भी जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, और उनका भी जो कि हमें चैट बॉक्स से सुन रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी अपना हालचाल बताएं लिसनर्स, कैसा है आप सभी का हालचाल, क्या आप सभी ने आज पूरे दिन में किया, कैसे हैं आप सब, फटाफट से बताइए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किसी से मिलते हैं और पहली बार नहीं, जब हम डेली ही किसी से मिलते हैं या फिर कहीं जाते हैं और किसी से मिलते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो सवाल होता है वो यही होता है कि भाई आपके हालचाल कैसे हैं, कैसी है आपकी सेहत, क्या किया आपने अपनी सेहत के लिए, अपना ख्याल रखा या नहीं रखा, हम ये सारी ही चीज़ें पूछते हैं। तो ठीक उसी तरह आप भी हमारे लिसनर्स हैं और आप ठीक रहें, आपकी सेहत अच्छी रहे, इसलिए हमारा आपका हालचाल पूछना तो बनता ही है। सो फटाफट से आप सभी बताएं लिसनर्स कि कैसा है आप सभी का हालचाल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपके अपने ज्ञानसली लाइव में वेनसडे, और वेनसडे हमारा होता है हेल्थ रिलेटेड, यानी कि हम बात करते हैं कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर के, कुछ मेंटल डिसीज़ को लेकर के और कुछ फिज़िकल डिसीज़ को लेकर के। आज भी हम बात करेंगे कुछ मेंटल डिसीज़ पर, कुछ फिज़िकल डिसीज़ पर, और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं यानी कि डिसीज़ेस होती हैं, वो किस तरीके से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और हम समझ भी नहीं पाते हैं, जान भी नहीं पाते हैं कि हमें इनसे बाहर कैसे निकलना है। तो आज इस पर बात होगी, बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले आज जिस टॉपिक को लेकर के हम बात करने वाले हैं वो है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़्यादा हमें हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को भी अच्छा रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तब तक हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ होगी, ठीक वैसी ही आपकी मेंटल हेल्थ भी होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी हो। इसलिए अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज कुछ ऐसी फ़िज़िकल चीज़ों पर भी बात करेंगे जो कि फ़िज़िकल डिसीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले आज जिस फ़िज़िकल डिसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं हम, उस डिसीज़ का नाम है जो कि यूथ्स में बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब इस समय बहुत ज़्यादा, क्या कह लें, बहुत ही ज़्यादा हो रही है, और कहीं ना कहीं उन्हें उसको फेस भी करना पड़ता है, जिसके बारे में हमने हमेशा ही बात की है, जो कि होती है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि आपका बढ़ता हुआ वज़न, आपका बढ़ता हुआ मोटापा, जो कि आजकल कहीं ना कहीं यूथ्स में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। सिर्फ यूथ्स में ही नहीं, सभी में देखा जा रहा है। लेकिन ये जो आपका बढ़ता हुआ मोटापा बढ़ रहा है ना, ये सिर्फ एक फ़िज़िकल डिसीज़ नहीं होती, इसकी वजह से कई सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल यूथ्स में 20, 25, 26, 27, 28 के हो रहे हैं या उससे भी ज़्यादा एज के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें घुटनों में दर्द होता है, फैटी लीवर हो जाता है, लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती, और वो सब का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है आपका बढ़ता हुआ वजन, यानी कि आपकी ओबेसिटी, आपका मोटापा। इसीलिए कहते हैं कि इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, और फिर बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी को थका देता है। बॉडी को सिर्फ थकाता नहीं है, बल्कि बॉडी में एक जो एनर्जी होती है ना, हमारा एनर्जी लेवल होता है, उसे बिल्कुल ही डाउन कर देता है। इसलिए आज हम बताएंगे कि मोटापे के कुछ कारण क्या होते हैं, कैसे आप में वो चीज़ें बढ़ती हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इससे आप क्या कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमेशा जब भी हेल्थ की बात आती है ना लिसनर्स, तो हम बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी डिसीज़ को लेकर के, बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर के, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं, जो हमारी डेली लाइफ का कहीं ना कहीं एक हिस्सा होती है, एक पार्ट होती हैं, हम देखते हैं कि हमारे घर के आसपास जो यूथ्स हैं उनमें से हर कोई दूसरा अपने वज़न से परेशान है। हर कोई कहता है मुझे वज़न कम करना है, जिसका वज़न कम है वो कहता है मुझे मेरा वज़न बढ़ाना है, मुझे हेल्दी होना है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो प्रॉब्लम होती है वो आए दिन हम हमारे घरों में, रिलेटिव्स में, सभी में देखते हैं।
तो आज इसी पर बात करेंगे कि कैसे आप इसे दूर कर सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस को लेकर के, और कैसे दोनों में संतुलन बना सकते हैं, यानी कि अपनी डाइट में और अपने वजन में, उसको भी लेकर के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पहले आइए चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं, आएंगे सॉन्ग के उस पार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर के, बहुत सारी मोटिवेशन को लेकर के और एंटरटेनमेंट को लेकर के भी। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में जिसका नाम है ज्ञानश्री लाइव, मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: शहर की धड़कन का दिल धड़काने के लिए लेकर के फिर से एक बार हाजिर हूँ आपका अपना वाला बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए अब बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं वजन बढ़ने के कारण और कैसे इसके शुरुआती लक्षण नजर आते हैं और कैसे हम इसके कुछ प्रिकॉशंस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि कारण क्या होते हैं। अगर बात करें कारण की तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा कारण होता है वो होता है प्रोटेस्टेड और जंक फूड खाना। पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चिप्स और पैकेज फूड खाने से हमारी बॉडी में न सिर्फ, देखिए वज़न का बढ़ना सिर्फ ये नहीं होता है कि आप मोटापा सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका वज़न बढ़ रहा है, मोटापा ये भी होता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं फैट जो है वो स्टोर होता चला जा रहा है, और जब लगातार हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता है तो धीरे धीरे ये एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। इसी की वजह से कई सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपको फैटी लीवर हो सकता है। फैटी लीवर के साथ साथ में हमें कई बार सांस की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि टाइम रहते हुए हम अपने वेट को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लें। दूसरी चीज़ होती है लिक्विड कैलोरी। दूसरा इसका कारण होता है लिक्विड कैलोरी, जो कि कहीं ना कहीं हम बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक, पैकेट का जूस और ये सारी चीज़ें लेते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा चीनी खाने की उन्हें हैबिट होती है, यानी मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर आप भी बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण हो सकता है वज़न के बढ़ने का। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा लिक्विड कैलोरी पे, यानी पैकेट के जूस वगैरह पे और जो भी बाहर आप कैलोरी वाली चीज़ें खाते हैं उन सभी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। फोर्थ पॉइंट आता है कि हमें स्ट्रेस और नींद की कमी। अगर आपको देर रात तक जागने की आदत है, जैसे किसी किसी को होता है ना कि बहुत देर रात तक पढ़ाई कर रहे हैं, जाग रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि जब हम रात तक जागते हैं तो इससे हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जो होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ता है जो कि हमारे स्ट्रेस को बढ़ा देता है और ये साथ में भूख को भी बढ़ाता है, और फैट तेज़ से स्टोर होता है। जब हमारी भूख बढ़ती है तो हम कुछ ना कुछ खाते हैं, और जब आपको क्रेविंग कभी कभी होती है खाने की तो हम ज़्यादातर मंचिंग करने के लिए पैकेज फूड या ऐसी ही चीज़ें खाते हैं जिनकी वजह से हमारा फैट जो है वो ज़्यादा बढ़ता है और फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको इस तरीके से रात को काफ़ी लेट तक ना जागें, फ़ोन ना देखें। अगर आपको फ़ोन देखते हैं तो फ़ोन बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि फ़ोन देखना तो बहुत ही बड़ी बात होती है कि हम रील्स जब स्क्रॉल करने लगते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कितनी देर हुई। इसलिए फ़ोन वगैरह से भी दूर रहें, और साथ ही साथ में जो रात की क्रेविंग होती है, कभी कभी मन करता है ना रात में कुछ खाएं, उन क्रेविंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप एक अपने टाइम शेड्यूल से खाएं, अच्छा डाइट लें। अच्छे डाइट का मतलब है कि आपको मौसमी फल, मौसमी चीज़ें खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, नट्स खाने हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है अपनी डाइट में। पैकेज फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, बाहर का खाना ये सारी चीजें अपनी डाइट में बिल्कुल भी न लें, जिनसे कि फैट हो और आपका वेट और ज्यादा बढ़े। एक कारण ये भी होता है कि कई बार हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं, यानी कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस में नहीं रहते, जिसकी वजह से भी हमें ये चीज़ हो जाती है, यानी हमारा वज़न बढ़ता है। तो ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं सीरियस वे में लें। और अगर आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, बार बार आपको ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो आप मेडिकल हेल्प भी इसके लिए ले सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर हम लक्षण की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो होता है थोड़ी दूर पैदल चढ़ने पर या सीढ़ियाँ चढ़ने पर जल्दी जल्दी आपके सांसों का फूलना, और बहुत ज़्यादा, जैसे कि मान लो आपने थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ी और 10 मिनट तक आपकी सांस कॉन्टीन्यूसली फूल रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये लक्षण हो सकते हैं कि आपका वज़न जो है वो बढ़ रहा है। हर एक महीने दो महीने के बाद में अपने वज़न को चेक भी करते रहना चाहिए। दूसरा आता है कि लगातार थकान और सुस्ती। अगर रात को पूरी नींद लेने के बाद भी दिन भर आपको बॉडी में एनर्जी की कमी लगती है और आलस महसूस होता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके वज़न में ये बढ़ने के लक्षण हो सकते हैं, मोटापे के लक्षण हो सकते हैं। थर्ड आता है कि रात को सोते समय सांस लेने में दिक्कत होना या खर्राटे लेना। अगर आपको भी रात को सोते हुए सांस लेने में दिक्कत होती है या आप खर्राटे लेते हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी कहीं ना कहीं फैट की तरफ इशारा करता है कि आपकी बॉडी में फैट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। जोड़ों और पीठ में दर्द होना बहुत ही बड़ा सिम्टम्स है। जब आए दिन आपके जोड़ों में और पीठ में दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि ये आपके बढ़ते हुए वजन की वजह से हो सकता है। ध्यान रखें, थोड़ा सा इस पर प्रकॉशन करें और चीज़ों को और बेहतर की तरफ ले जाएं। यानी कि अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप इन्हें कम करने की कोशिश करें, यानी कि तुरंत प्रकॉशंस को लेना शुरू कर दें। अगर आप तुरंत प्रकॉशन लेना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें खुद ब खुद कम हो जाएंगी और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी गेन नहीं करनी पड़ेगी। सो आइए लिसनर्स, चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, उसे सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। आएंगे सॉन्ग के उस पार फिर आपसे बातें करने के लिए और आपको बताएंगे कि इससे बचने के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस हो सकते हैं जो कि हमें लेने चाहिए। आइए फिलहाल चलते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही प्यारा शो जिसका नाम है या नस्ली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और फिर से एक बार लेकर के हाजिर हूँ आपके अपने वाले प्रोग्राम को और आपसे कुछ बातें करने। तो आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ रिलेटेड, और जो हमारा टॉपिक है वो है कि किस तरीके से हम अपने बढ़ते हुए वज़न को रोक सकते हैं, क्योंकि आजकल जो वज़न बढ़ना है ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बनकर सामने आता है, स्पेशली यूथ्स और टीनेजर्स के लिए। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। तो सबसे पहले जो प्रिकॉशन है वो यही है कि आपको अपनी डेली लाइफ रूटीन को चेंज करना है, यानी कि अगर जिम जाने का टाइम आपके पास नहीं है तो आपको रोज़ 15-20 मिनट पैदल चलने की हैबिट होनी ही होनी चाहिए, या आपको डालनी ही डालनी है कि आप रोज़ 15-20 मिनट पैदल ज़रूर चलें। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ऑफ़िस जा रहे हैं और आपका ऑफ़िस जो है वो ऊपर के फ्लोर पे है, यानी थर्ड फ्लोर पे है, फोर्थ फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है या फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आपको लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाना चाहिए। हर घंटे का टाइम निकाल कर कम से कम 5 मिनट की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। फ़ोन पर बात करते समय टहलें, जैसे कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि फ़ोन पर अगर वो बात करते हैं तो फ़ोन पर बात करते हुए टहलते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है कि रोज़ आप अपने डेली रूटीन से 5 मिनट निकाल के वैसे टहलें, फ़ोन पर बात कर रहे हैं टहलते हुए बात करिए, कोई काम अगर जैसे है कि आप उसको कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं तो थोड़ा चलिए। ज़रूरी है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो हो थोड़ी सी, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कोई एक्टिविटी ना होगा, ऐसा होगा तो वो मोटापा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए अगर आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अगर सीढ़ियों का यूज़ ज़्यादा करें। सेकंड आता है कि हफ्ते में 2 दिन कार्डियो एक्सरसाइज, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग ये ज़रूर करना चाहिए। इससे बॉडी क्या होती है कि इससे मसल्स जो होते हैं वो और तेज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और साथ में मेटाबॉलिज्म जो होता है वो तेज़ हो जाता है, इसलिए आपको ये ज़रूर करना चाहिए। सेकंड आता है कि हमें हमारी डाइट चेंज करनी चाहिए। डाइट चेंज करने का मतलब होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डाइट में दाल, हरी सब्जियां, सलाद, ओट्स ये सारी चीज़ें रखें, 80% अपनी डाइट यही रखें, और 20% आप डाइट रखें बाहर के चीज़ों के लिए, यानी जंक फूड, पैकेज फूड के लिए जो आप कभी कभी खाएं। जैसे हम करते हैं ना कि महीने में एक बार दो बार खा लिया तो खा लिया, नहीं तो कोई इतनी ज़रूरी नहीं, वही चीज़ आपको भी करनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि प्रोटीन और फाइबर को हमें हमारी डाइट में बढ़ाना चाहिए, जैसे कि पनीर, अंडे, दाल, सोयाबीन और स्प्राउट्स आपको ज़रूर लेने चाहिए। इससे क्या होता है कि इनसे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा होता है कि हमारा जो पेट होता है वो, अगर आपने फ्रूट्स खाए हैं तो आपको लंबे टाइम तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे हमें बार बार खाने की नीड नहीं होती है और हमारी क्रेविंग जो होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सेकेंड आता है कि इससे एक फ़ायदा और होता है कि इससे आप, जैसे आपने फ्रूट खाया मान लीजिए, तो आप जो भी खा रहे हैं वो आप हेल्दी चीज़ खा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम हमेशा हेल्दी चीज़ों को ही प्रेफर करें। और सेकेंड आता है कि कहीं ना कहीं आपको अपना एक टाइम रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है। टाइम रूटीन का मतलब होता है कि हम सेट करके चलें कि हमें सुबह कब नाश्ता लेना है, कब हमें दोपहर को खाना लेना है, कब रात को हमें खाना खाना है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर सेट नहीं होता है और आप रात को 12 बजे खा रहे हैं, 1 बजे खा रहे हैं, इससे भी आपका जो खाना होता है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसकी वजह से भी हमारा वज़न बढ़ता है, यानी कि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब करती है बॉडी। इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। आइए लिसनर्स, अब चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं, और आएंगे इस सॉन्ग के उस पार फिर से आपसे बातें करने और आपको बताने के लिए कि क्या कुछ। ये तो हमने फिज़िकल डिसीज़ की बात की कि किस तरह यूथ्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अब हम बात करेंगे किसी एक मेंटल डिसीज़ को लेकर के, तो क्या होने वाली है, क्या हम आपको बताने वाले हैं, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आप भी कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा आपके अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव में, मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। बस यूँ गए और यूँ आए, स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9286 9816 9819 81 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो भाई, हमारी डेली लाइफ में ये जो फ़ोन है, यानी कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे प्यारा साथी, उस फ़ोन के साथ क्या होता है ना कि जब उसकी रिंग बज रही होती है तो भी हमें पता चलता है फ़ोन की रिंग बज रही है, लेकिन अगर फ़ोन की रिंग नहीं बज रही होती है तो भी हमें लगता है फ़ोन की रिंग बज रही है। अगर फ़ोन पे मैसेज नहीं आया होता है फिर भी हमें रिंगटोन सुनाई देती है कि लगता है मैसेज टोन आया है। सो कहीं ना कहीं हम इसे डेली यूज़ में एक आदत समझ करके इग्नोर करते हैं कि अच्छा हो गया होगा।

फ़ोन यूज़ करते हैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये तरीके क्या होता है, किस तरह शुरू होता है, आज हम बात करते हैं इस पर कि ये फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम है, यानी कि धीरे धीरे जिसमें बार बार हमें ये कहीं ना कहीं भ्रम होता है, ऐसे लगता है कि हमारी जेब में जो फ़ोन है वो कहीं ना कहीं वाइब्रेट हो रहा है या बज रहा है या मैसेज है जिसमें मैसेज टोन आ रही है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% यूथ जो हैं वो कहीं ना कहीं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम से शिकार हैं अभी प्रेजेंट में, क्योंकि हम ज़्यादातर सभी फ़ोन यूज़ करते हैं और कभी ना कभी हम सभी ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होता है कि अगर फ़ोन हम नहीं भी बज रहा होता है या नहीं भी मैसेज आ रहा होता है तो हमें लगता है कि नहीं वो आ रहा है और फ़ोन आ रहा है, फ़ोन बज रहा है, मैसेज आ रहा है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये आपको रातों रात नहीं होती है, बल्कि ये हमारे स्मार्टफोन को यूज़ करने के तरीके से होती है। जैसे कि दिमाग का ओवर अलर्ट मोड पर रहना, जब हम किसी ज़रूरी कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया नोटिफिकेशन का लगातार वेट करते हैं तो हमारा दिमाग फ़ोन को लेकर अलर्ट मोड पर होता है कि कब आएगा फ़ोन, कब आएगा कॉल, कब आएगी मैसेज, कब आएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू होती हैं कि हमारे माइंड में एक सेट पैटर्न होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें शुरू होती हैं। आइए अब बात करते हैं सेकेंड चीज़ पर कि कभी भी क्या होता है कई बार कि हमारे दिमाग में जो ओवर अलर्ट मोड होता है ना, वो हमारे आसपास होने वाली हर हलचल को कहीं ना कहीं ये समझ लेता है कि फ़ोन बज रहा है, फ़ोन वाइब्रेशन हो रहा है। हमारे दिमाग में वो बातें चलती रहती हैं कि कॉल आने वाला है, मैसेज आने वाला है, फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ हो रहा नहीं होता है। लगातार स्ट्रेस में रहने से या एंजाइटी अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी ये चीज़ होती है। जैसे कि आजकल के जो यूथ्स होते हैं वो अपने काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, उनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो हर समय फाइट कर रहा होता है, फाइट मोड पे ही होता है, इस जिससे उन्हें ये उन जो भ्रम है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इससे बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और इस मेंटल डिसीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो मेंटल डिसीज़ होती है ना, अगर धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इससे आप दूर कैसे रह सकते हैं, कैसे इसे हटा सकते हैं, कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, वो सारी ही चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है जिसे सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं और बस यूँ गए और यूँ आए। आप भी सुने, इन्जॉय करें इस प्यारे से सॉन्ग को। स्टे ट्यून्ड।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानस्थली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो अभी तक हमने बात की जिस बारे में, वो था फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। यानी कि कहीं ना कहीं ये हम सभी को होता है कि जब हमारा फोन वाइब्रेट नहीं कर रहा होता है, फिर भी हमें लगता है कि वाइब्रेट कर रहा है। जब हमारी मैसेज की रिंगटोन नहीं बज रही होती है, तभी हमें लगता है कि हर वक्त मैसेजेस ही आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सभी ने कभी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, तो आज इन्हीं पर बात हो रही है। तो आइए बताते हैं अब कुछ प्रिकॉशंस जिनसे कि आपको ये सिंड्रोम नहीं होगा। सबसे पहला जो प्रिकॉशन है वो ये है कि अपने फ़ोन रखने की जगह को बदले। यानी कि अगर आप अपने जैसे फ़ोन जो है वो अगर आप पॉकेट में रखते हैं, तो आप फ़ोन की जगह बदलें, उसे कुछ दिनों के लिए अपने पर्स में या फिर अपने डेस्क पर रखें, ताकि जब पैटर्न चेंज होगा तो धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। दूसरा होता है कि अपने फ़ोन का वाइब्रेशन सिस्टम बिल्कुल ही बंद रखें, यानी कि अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर वाइब्रेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बंद कर दें, केवल रिंगटोन ऑन रखें और फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखें, जिससे आपके दिमाग को ये पता होगा कि फ़ोन जो है आपका वो वाइब्रेट नहीं हो सकता है, या फिर उसमें बार बार मैसेजेस और वो नहीं आएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड जो है वो बार बार अलर्ट मोड पर नहीं जाएगा और आपको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। थर्ड आता है कि नोटिफिकेशन को कस्टमाइज्ड हमेशा रखें। यानी कि अगर आपके फ़ोन में जो भी बेवजह के नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, उन्हें आप ब्लॉक करके रखिए, ताकि वो नोटिफिकेशंस ना आए और आपको बार बार परेशान ना करें। डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी कि दिन में कम से कम 1 या 2 घंटे खुद को पूरी तरीके से फ़ोन से दूर रखें। रात को सोते समय भी फ़ोन यूज़ ना करें। यह बहुत ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। दिन में कम से कम 2-3 घंटे हम फ़ोन से दूर रहें, ये बहुत ज़रूरी है। 1-2 घंटे दूर रहिए, अगर आप 2-3 घंटे नहीं रह सकते हैं, तो रात में सोते टाइम, सोने से 2 घंटे पहले फ़ोन या कोई भी ऐसे गैजेट्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, उन्हें जल्दी नींद नहीं आती। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यही होता है नींद ना आने का, कि हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा सोने से पहले अगर आपने रील्स देखी तो उसकी वजह से भी आपकी जो नींद होती है वो आपको कम आती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप फ़ोन को यूज़ रात में ना करें। एक पॉइंट और आता है कि थोड़ा सा नेचर के आसपास रहने की कोशिश करें और रियल लाइफ से जुड़ने की कोशिश करें। रियल लाइफ से जुड़ने का मतलब है कि उन चीज़ों को देखें, उन चीज़ों को महसूस करें जो आपकी रियल लाइफ का हिस्सा है। थोड़ा सा कोशिश करें प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने की, हर वक्त फ़ोन में रहना, हर वक्त फ़ोन चलाते रहना, हर वक्त रील से स्क्रॉल करते रहना, या फिर हर वक्त बस यही महसूस करना कि फ़ोन फ़ोन फ़ोन, ऐसे नहीं। आप थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा घूमें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और भी चीज़ों को देखें, गार्डन जाएं। इससे क्या होता है कि जब हम नेचर से जुड़ते हैं या प्रैक्टिकल चीज़ों से जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे ये हमारे जो एक भ्रम हमारे दिमाग में बनने लगता है ना फ़ोन को लेकर के, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। यानी कि फैंटम वाइब्रेशन सिस्टम धीरे धीरे कम हो जाता है और आप इसको ओवरकम कर पाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जिन चीज़ों की हम प्रैक्टिस करते हैं उन्हें हमारा दिमाग भी मानने लगता है। जैसे कि अगर आपने अपने दिमाग को रोज़ ये एक इंस्ट्रक्शन दे के रखा हुआ है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो कई बार होता है ना कि हम नहीं भी सोचते हैं लेकिन सुबह 5 बजे हमारी खुद ब खुद आँख खुल जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने एक माइंडसेट बना करके रखा हुआ है कि आपको कितने बजे उठना है, आपको 5 बजे उठना है। ठीक इसी तरह हम हमारे माइंड को जैसे चलाते हैं वैसे ही हमारा माइंड चलता है, जैसे हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो वैसे ही चलता है, जैसे हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं वो भी ठीक वैसी ही चीज़ों को अप्लाई करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने माइंड को जो भी इंस्ट्रक्शंस दें, जो भी आपने माइंड में एक सेट पैटर्न बनाए, वो हमेशा पॉजिटिव हो और सही हो। याद रखिए लिसनर्स, फ़ोन जो है वो हमारी डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प भी करता है। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करने का मतलब है बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं, या फिर धीरे धीरे इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इसकी ज़्यादा आदत ले लेते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। क्योंकि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हमें उन्हें हमेशा लिमिट में ही यूज़ करना चाहिए। तो आइए इसी बहुत ही प्यारे से मैसेज के साथ आज के लिए मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, रेडियो ज्ञानस्थली को सुनते रहिए। और अब मैं आपसे मिलूंगी आपके अपने बहुत ही पसंदीदा शो में, जिसका कि नाम है सुन सहेली। तब तक के लिए बाय बाय,

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका आरजे अदनान। श्रोताओं, कहते हैं ना कि घर की असली खुशी तभी होती है, यानी घर की असली खुशहाली तब आती है जब बच्चे स्वस्थ और खुश हों। लेकिन कई बार पोषण की कमी या गलत आहार की वजह से छोटे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं और कुपोषण सिर्फ बच्चे के शरीर को कमजोर नहीं करता बल्कि उसके दिमाग के विकास पर भी बहुत असर डालता है। तो आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे समय रहते पहचाना जा सकता है और इसे दूर करने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि बच्चे के सही पोषण के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी टीकन भाभी। चूँकि भाभी हमेशा अपने अनुभव से सेहत के जरूरी मुद्दों को समझाती है, भाभी बच्चों में हम कुपोषण यानी पोषण की कमी आखिर कैसे पहचान सकते हैं और इसे समझना जरूरी आखिर क्यों है?
3: देखिए, बच्चों में कुपोषण जल्दी पकड़ में आ जाए इसके लिए कुछ संकेत साफ दिखते हैं। पहला संकेत है बच्चे का वजन। अगर बच्चा उम्र के हिसाब से हल्का है या वजन बढ़ नहीं रहा है तो ये पहली चेतावनी है। और दूसरा है सुस्ती। कुपोषित बच्चे जल्दी थक जाते हैं और हमेशा सुस्त रहते हैं। तीसरा लक्षण है बाल और त्वचा। कुपोषित बच्चों के बाल कमजोर, रूखे या झड़ते हैं, त्वचा भी रूखी सी दिखती है। चौथा है भूख नहीं लगना। बच्चे ठीक से नहीं खाते तो ये भी कुपोषण की तरफ इशारा है। और पांचवा है बीमारियां। कुपोषित बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं और बार बार बुखार, दस्त या संक्रमण के शिकार होते हैं।
1: अच्छा, तो भाभी हमने बच्चों में कुपोषण के लक्षण तो जान लिए, अब जरा इसे दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये भी बताइए।
3: देखिए, कुपोषण सिर्फ खाने की कमी से नहीं बल्कि सही पोषण और देखभाल की कमी से भी होता है। इसे दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जन्म के 6 महीने तक केवल माँ का दूध दें, 6 महीने के बाद भी दूध देना जारी रखें। माँ का दूध बच्चे को ताकत और बीमारियों से बचाता है। 6 महीने के बाद बच्चे को खिचड़ी, दलिया, सब्जी और फलों का गोदा देना शुरू करें। थोड़ा बड़ा होने पर उसे दाल, सब्जी, फल, अनाज और दूध दही जैसे पोषक खाना दें। साफ सफाई भी जरूरी है। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, साफ बर्तन में खाना देना और बच्चे के आसपास स्वच्छ वातावरण रखना बहुत जरूरी है। समय पर टीकाकरण और स्वस्थ जांच भी जरूरी है। डॉक्टर से बच्चों को नियमित दिखाना और जरूरी टीके लगवाना बीमारियों से बचाता है। परिवार की मदद भी बच्चे की परवरिश में खासा सहायक है। परिवार को खाना बनाने, दूध पिलाने और बच्चे का ध्यान रखने में माँ की मदद करनी चाहिए।
1: तो भाभी, क्या बच्चे के दिमागी विकास में भी पोषण का असर होता है?
3: हाँ, पैदा होने के बाद बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से बढ़ता है। दिमाग के सही विकास के लिए पोषण की जरूरत होती है। उचित पोषण नहीं मिलने से बच्चे के सीखने का स्तर कमजोर हो सकता है। माँ का दूध इस मामले में सबसे खास है। जन्म के पहले 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध बच्चे को सभी जरूरी पोषक तत्व, फैटी एसिड और एंटीबॉडीज देता है। ये दिमाग को सही तरह से विकसित करने में मदद करता है। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार बच्चे के दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। दाल, खिचड़ी, सब्जी और फल जैसे आहार में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जो दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करते हैं। साथ ही सीखने, सोचने और याद रखने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। मतलब जितना बच्चा पौष्टिक आहार पाएगा, उसका दिमाग उतना ही तेज और सक्रिय होगा।
1: तो भाभी, आजकल बच्चे जंक फूड बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या ये नुकसान कर सकता है?
3: जंक फूड बहुत ही ज्यादा तला भुना, मीठा या मसालेदार होता है, जैसे चिप्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर या फ्राइज। ये बिल्कुल पौष्टिक नहीं होते। इस प्रकार बच्चे को जंक फूड से पोषक तत्व तो नहीं मिलता और उनमें विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमी हो जाती है। जंक फूड से बच्चे का मोटापा बढ़ सकता है। मोटापे से हड्डियां कमजोर और दिल की समस्याएं हो सकती हैं। जंक फूड दांतों के लिए भी खराब है। ज्यादा मीठा खाने से दांत सड़ सकते हैं और मसूड़े कमजोर हो सकते हैं। जंक फूड जल्दी ऊर्जा देते हैं, लेकिन जल्दी खत्म भी हो जाता है, जिससे बच्चा सुस्त और चिड़चिड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, लगातार जंक फूड खाने से बच्चे का स्वाद बदल सकता है। फिर वो अनाज, दाल, सब्जी और फल खाने से मना कर देता है, जो उसके शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। जंक फूड स्वादिष्ट तो है, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को पौष्टिक खाना ही मिले, ताकि वो स्वस्थ हो।
1: भाभी, एक और जरूरी बात बताइए कि परिवार बच्चों और माँ के पोषण में कैसे मदद कर सकता है?
3: देखिए, बच्चे और माँ का पोषण पूरे परिवार के सहयोग पर निर्भर करता है। परिवार के सदस्य कई तरह से मदद कर सकते हैं। अगर घर में दादी, दादा, पापा खाना बनाने में थोड़ा हाथ बटाएं, तो माँ को पौष्टिक खाना खाने और बच्चे को खिलाने का समय मिलता है। परिवार देख सकता है कि बच्चे और माँ को रोजाना दाल, सब्जी, फल, दूध, दही और अनाज मिल रहा है या नहीं। बच्चे को खाना और माँ को आराम दिलाना परिवार का काम है। साथ ही घर की साफ सफाई और हाथ धोना, ये सब बच्चे और माँ की सेहत को मजबूत बनाता है।
1: तो भाभी, मुझे ये बताइए कि गर्भवती महिला के खाने में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं?
3: गर्भवती माँ का खाना सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी होता है। इसलिए खाना पूरा और पोषक होना चाहिए। उसे रोज दाल, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, दूध, दही जैसी चीजें खानी चाहिए। अगर घर में अंडा या मछली खाया जाता हो तो वो भी बहुत फायदेमंद है। अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा भी जरूरी है। ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। साफ पानी पीना भी जरूरी है।
1: भाभी, अक्सर डॉक्टर्स गर्भवती महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां खाने को कहते हैं। ये गोलियां खाना क्या जरूरी होता है?
3: जब महिला गर्भवती होती है तो उसके खून की जरूरत बढ़ जाती है। बच्चा माँ के खून से ही पलता है। अगर खून की कमी या एनीमिया हो जाए तो माँ को कमजोरी, थकान और चक्कर आने लगता है। ये कमी बच्चा भी झेलता है। उसका वजन कम हो जाता है, समय से पहले जन्म हो सकता है और कई बार जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां देते हैं। आयरन खून बनाने में मदद करता है और फोलिक एसिड बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से विकसित करता है।
1: तो भाभी, मेरा एक और सवाल है, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही हो तो उसके खाने में क्या खास चीजें होनी चाहिए?
3: माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा पोषण है। उसका स्वाद और गुड़ भी माँ के खाने पर निर्भर करता है। इसलिए माँ को संतुलित और पोषक आहार लेना बहुत जरूरी है। रोज माँ को दाल, हरी सब्जियाँ, फल, दूध दही जरूर खाना चाहिए। गेहूँ, चावल, बाजरा जैसे मोटे अनाज भी ताकत देते हैं।
1: तो भाभी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हरी सब्जियाँ और दूध दही आखिर क्यों जरूरी होता है?
3: हरी सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, गाजर सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि उसके शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर भी देती है। इससे माँ की सेहत ठीक रहती है और बच्चा भी मजबूत पैदा होता है। दूध और दही हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है। ये जरूरी कैल्शियम देते हैं, साथ ही प्रोटीन भी मिलता है जिससे माँ की ताकत बनी रहती है और दूध की मात्रा भी अच्छी रहती है।
1: भाभी, एक बात अक्सर सुनने में आती है कि जिन घरों में मांसाहार खाया जाता है वहाँ गर्भवती या दूध पिलाने वाली माँ अगर मांस, मछली या अंडा खाए तो क्या फायदा होता है? अगर घर में मांसाहार बिल्कुल ना खाया जाए तो फिर उसके लिए एक अच्छा विकल्प क्या हो सकता है?
3: माँ बनने वाली और दूध पिलाने वाली महिला के लिए सबसे बड़ी जरूरत पोषण की होती है। अगर घर में मांसाहार होता है और माँ उसे खाती है तो उसे फायदा मिलता है। मांस, मछली और अंडे में प्रोटीन होता है। प्रोटीन से माँ के शरीर में ताकत आती है, बच्चा ठीक से बढ़ता है और दोनों की सेहत बनी रहती है। इसके अलावा इन चीजों में आयरन भी खूब होता है जिससे खून की कमी नहीं होती है। गर्भ के समय और बच्चे को दूध पिलाते समय खून की कमी आम बात है। ऐसे में मांसाहार उस कमी को जल्दी पूरा कर देता है। इसमें विटामिन B12 भी होता है। ये माँ और बच्चे के दिमाग और नसों के लिए जरूरी है। कई परिवार पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। अगर माँ शाकाहारी है तो भी उसे भरपूर ताकत और सेहत मिल सकता है। दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, दूध दही, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जियाँ और सूखे मेवे, ये सब खाने से शरीर को वही ताकत मिलती है। हरी सब्जियों से आयरन की कमी पूरी होती है, दाल और पनीर से प्रोटीन की कमी पूरी होती है और दूध दही से हड्डियाँ मजबूत रहती है। अगर ये सब रोजाना खाने में शामिल हो तो माँ को किसी तरह की कमी नहीं होगी और बच्चा भी अच्छी तरह बढ़ेगा।
1: सो दोस्तों, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में हमने जाना कि अगर छोटे बच्चे को जरूरी पोषण नहीं मिलता तो धीरे धीरे कुपोषण की समस्या हो जाती है। कुपोषण का मतलब कि बच्चे के शरीर को जितनी ताकत चाहिए उतनी उसे नहीं मिल रही। इससे उसका वजन कम रह जाता है, अक्सर बीमार पड़ने लगता है और पढ़ाई लिखाई में भी पीछे रह सकता है। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो कुपोषण को रोका जा सकता है। बस जरूरी है कि बच्चे को सही और संतुलित खाना मिले, समय पर टीकाकरण हो और साफ सफाई बनी रहे। अगर ये बातें अपनाई जाए तो बच्चा स्वस्थ और मजबूत होगा। छोटे बच्चे सहित गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माँ का पोषण बहुत जरूरी है। माँ अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चे को पूरा पोषण मिलेगा और वो सही तरह से बढ़ेगा। दाल, सब्जियाँ, फल, दूध दही जैसी चीजें माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। तो याद रखिएगा, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी घर परिवार में असली खुशहाली आएगी। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे सेहत से जुड़ी एक और अहम जानकारी के साथ। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे
4: और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
2: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
5: सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है, क्योंकि सरिता की मां को टीबी है। न जाने कितने बच्चों का स्कूल छूट जाता है टीबी की वजह से। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है तो उसे पहचानने की और पूरे इलाज की।

0: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
7: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
7: आज ही कॉल करें 92 60 981 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
6: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
7: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या

0: FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: आज कुछ चेन चेन सा नहीं लग रहा है, कुछ तो बदला बदला सा है आज।
1: जब बदल जाते हैं इंसान, हो जाता है इंसान प्यार में, तो कुछ ऐसी ही धुनें उनकी दिलों में, उनके कानों में, हर जगह गूंजती हैं।
0: ओके, प्यार में,
1: प्यार में, प्यार में। यस, आई एम इन लव, मैं प्यार में हूँ। और जब प्यार में इंसान होता है ना, तो हर समय हर जगह उनकी ही मूरत दिखाई देती है, उनके बारे में ही सोचा जाता है और उनके लिए ही जीने का मन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज आप इतनी रोमांटिक क्यों हैं?
0: ऐसे मैं सोच रही थी कि आज मैम इतनी अच्छी अच्छी रोमांटिक बातें कर रही हैं, वाकई में लगता है
1: कि आई एम इन लव।
0: यस ऑफ कोर्स,
1: यस यस आई एम इन लव, ये मैंने एग्री किया है कि यस आई एम इन लव।
0: कोई है जिसकी?
1: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपकी आज समता और लेकर के आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली। भाई प्यार का दौर करते हैं खत्म, क्योंकि हालांकि प्यार का दौर कभी खत्म नहीं होता है,
0: प्यार का दौर खत्म नहीं करते हैं, प्यार के दौर के साथ चलते हैं।
1: साथ चलते हैं, लेकिन कुछ माहौल ऐसा था, मूड ऐसा हो गया था कि मैंने सोचा किशोर दा की कुछ म्यूजिक से लेकर के आज हम एंट्री करेंगे, क्योंकि आज आपको समर्पित, यानी कि हमारी स्पेशल महिलाओं को समर्पित है आज का दिन। आज है वेनेसडे और वेनेसडे के दिन हम लेकर के आते हैं सुपर से भी ऊपर वुमेन सेंटर्ड प्रोग्राम को, तो आज सुनना ना भूलिएगा आप हमारे साथ। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में। मैं हूँ आपकी आरजे समता।
0: मैं हूँ आरजे अंशिका।
1: तो चलिए एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं,
0: शुभ दो पहरिया। शुभ दो पहरिया लिसनर्स, और मूड का तो अंदाजा आपने लगा ही लिया कि आज जबरदस्त है, और जबरदस्त इसलिए है क्योंकि आज प्यार की बात हो रही है। और जब प्यार की बात होती है ना, पता है आपको, किसी आप ऐसी जगह पे भी बैठे हो जो बिल्कुल अनरोमांटिक हो, मतलब उसमें रोमांस जैसा कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आप बात करने लगते हैं रोमांटिक, तो वो महसूस होने लगता है। अच्छे अच्छे बादल हैं, अच्छी अच्छी हवाएं चल रही हैं, फूलों पे तितलियां हैं, बहुत प्यारा मौसम है, और जिसको भी आप उसमें इमेजिन करते हैं, मतलब समवन स्पेशल आपकी लाइफ में जो भी है वो वहाँ नजर आता है, तो कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लगता है।
1: क्यों, हो गया,
0: हो गया।
1: लाओ अब हम शायरी की ओर चलते हैं, अपनी पोयम की ओर चलते हैं। तो चलिए हम सुना देते हैं आज की पोयम को, जो कि आपको सभी को पता है कि महिलाओं को समर्पित है आज का दिन। तो अंशिका जो अभी बोल रही थी वो बिल्कुल दिल से बोल रही थी, और बिल्कुल सच्चाई वाला है कि एग्जैक्टली जब किसी के दिल में किसी की याद होती है, किसी को चाहने की एक तलब होती है ना, तो वो इंसान फिर लाइफ में मिले ना मिले, उनसे बात हो ना हो, पर उनके साथ बिताए हुए जो लम्हे होते हैं, जो प्यार के दो पल होते हैं ना, उन्हीं के सहारे इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है। शायद ऐसा ही कोई एक इंसान जब आपकी दुनिया से चला जाता है, तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं ना, हम उनके सहारे, उनकी यादों के सहारे पूरा जीवन काट देते हैं ना। तो मैं आज उन महिलाओं, उन गर्ल्स को सिर्फ इतना मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई ब्रेकअप वाला सीन है, या कोई आपको डम करके चला गया है, तो आप उन्हें बिल्कुल मरा हुआ साबित करें, मरा हुआ घोषित करें, और अपनी लाइफ से उसको लेट डाउन करें, उनको किक मारें, और उनकी सुनहरी यादों को अपने दिल में बसा करके आप उनके सहारे जिएं, और उनकी जो बुरी यादें हैं उनको किक मारें, और अगर वो फिर से लौट के आते भी हैं, तो आप अपने दिल, दिमाग, अपने जुबान, अपने सब पे नो एंट्री का बोर्ड लगा दें।
0: और एक लाइन है जो इस सिचुएशन में बिल्कुल फिट बैठती है,
1: जो मैं कहती हूँ,
0: जो आप कहती हैं,
1: तो मैं कहती हूँ ये कि वो अंशिका को मेरे मुंह से बहुत अच्छी लगती है जब मैं बोलती हूँ, तो वो लाइन अभी इसलिए है क्योंकि हम उस इंसान की कुछ अच्छी यादों को ले करके चल रहे हैं, तो अभी नहीं कहेंगे वो लाइन, क्योंकि वो लाइन तो फिर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। बट अभी उस इंसान की जिसने आपको डम किया है, जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको मझधार में छोड़ के चला गया है या चली गई है, दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, तो उनके लिए सिर्फ इतना है कि उनकी अच्छी यादों को आप अपने पास रखें एंड बुरी यादों को लेट डाउन करें। आइए पढ़ते हैं इस प्यारी सी पोयम को, जो कि है विमेन सेंट्रिक।
0: तो आइए करते हैं प्यारी प्यारी कविता की शुरुआत प्यारी प्यारी बातों के साथ, और आपकी अपनी प्यारी सी आरजे समता के साथ।
1: शुरू करें
0: जी।
1: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्व

0: पास जगत नग पग तल में, पीयूष शोत ही बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सृष्टि की आदि शक्ति हो तुम, माता की पावन मूरत हो, हर सुनी राह को महका दे तुम ऐसी अनुपम मूरत हो। कभी बेटी बनकर आंगन में चिड़ियों से चहक जगाती हो, कभी बहन के रूप में स्नेह सुधा जीवन की राह बिछाती हो। पत्नी बन संग निभाती हो सुख दुख के हर मौसम में, तुम ढाल बनी खड़ी रहती झंगावातों के आलम में। आंचल में समेटे धीरज को आंखों में करुणा का सागर, घर की चौखट को स्वर्ग करे अपनी ममता का रस देकर। परत्याग की मूरत कहलाकर अब रुकना तुमको गवारा नहीं, तुम खुद अपनी पतवार बनी अब कोई और सहारा नहीं। नभ की ऊंचाई नाप रही, नभ की ऊंची ऊंचाई नाप रही तुम अंतरिक्ष तक जाती हो, सीमा पर बनकर वीर खड़ी भारत माँ का मान बढ़ाती हो। कोमलता की परिभाषा हो पर शक्ति का तुम अवतार भी हो। हे नमन है तुम्हें भी, हे नमन तुम्हें ओ शक्ति स्वरूपा, तुम ही तो ये संसार हो, तुम ही तो ये संसार हो।
1: बहुत ही प्यारी कविता, और स्पेशली लास्ट की लाइन जो थी वो बहुत ही प्यारी थी कि बिल्कुल हम ही शक्ति होते हैं और हम ही कहीं ना कहीं कोमल भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि नारी शक्ति नहीं होती। नारी बहुत ही ज़्यादा ऐसी शक्ति होती है जो वक्त आने पे कुछ भी कर सकती है।
0: यस एग्जैक्टली, और शक्ति का नाम ही नारी है। तो आज के पूरे प्रोग्राम को समर्पित करते हैं हम आज की नारी शक्ति को। तो चलिए हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आज के रियल फैक्ट्स लाइफ में, देखते हैं आज क्या है और उसके बाद सुनाऊंगी एक प्यारा सा गाना।
1: आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है कि रिश्ते उसी दायरे तक बनाना जिस दायरे तक आप निभा सके। कहने का सेंस ये है कि कई बार हम हमारे रिश्तों में क्या कहते हैं, अरे तुम जो मांगो वो मिलेगा ना, तुम जो कहो वो हाजिर है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। लेकिन जब हमारी कोई ऐसा टाइम पड़ता है, कोई ऐसा समय पड़ता है और हम अपने उस रिश्ते को आजमाते हैं कि वो हमारे साथ कहाँ तक खड़ा है, तब शायद वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि रिश्तों को आप उसी हद तक अगले को उम्मीद दीजिए जिस हद तक आप निभा सकते हैं। अगर हम दो कदम चल सकते हैं तो हम यही कहेंगे कि हम आपके साथ दो कदम चल सकते हैं। अगर हम पूरी लाइफ चल सकते हैं तो हम ये कहेंगे कि पूरी लाइफ चल सकते हैं। अगर हम पूरी लाइफ चल सकते हैं तो हम ये कहेंगे कि पूरी लाइफ चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी को ऐसी उम्मीदें दी जाएँ जो बाद में आप पूरी ना कर सकें। इसलिए उम्मीद उतनी ही दीजिए जितनी आप पूरी कर सकें। ये था आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, क्योंकि रिश्ते और प्यार ये दोनों ही लाइफ में कहीं ना कहीं जब हमें अच्छी तरीके से मिलते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आधे अधूरे हो जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो सिर्फ एक टीस रह जाती है और वो किसी की ज़िंदगी में कभी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो सिर्फ प्यार की मीठी मीठी सी बरसात होनी चाहिए, जो अभी अभी स्टार्टिंग में आपने सुना ना किसी के प्यारे प्यारे होठों से, प्यारी प्यारी आवाज में, वैसा कुछ होना चाहिए।
0: हाँ, तो वो किशोरदा की याद आ गई थी मुझे, इसलिए मैंने वो म्यूजिक चला दी थी, और नहीं तो क्या, मुझे किसी और की याद थोड़ी आती है।
1: अब मुझे कैसे पता आपको किसकी याद आती
0: है? चलिए ब्रेक ले लें।
1: हाँ ब्रेक लेते हैं। तो आइए लिसनर्स, चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। बस यू गए और यू आए स्टूडियो।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
4: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
3: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के दूसरे सेगमेंट की ओर, यानी कि आज का टॉपिक।
4: आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी कि जो हम दोनों ही आपसे बात करने वाले हैं, वो ये है कि कहीं ना कहीं जहाँ हमेशा कहते हैं ना कि अगर हमारी बॉडी में सब कुछ सही है, यानी कि हमें हेल्दी रहना है, तो उसके लिए इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है।
3: एग्जैक्टली और आजकल जो मौसम है ना, इसमें इम्यून सिस्टम की बहुत ज्यादा वीकनेस मैंने देखा है कि पाई गई है।
4: जी मैम, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं जिस डिसीज को लेकर के, वो है ऑटो इम्यून डिसीज। इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी बॉडी में जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। जिसे हम कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसानदेह होती है। अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है तो अच्छी बात है, हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन अगर यही इम्यूनिटी आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है।
3: अच्छा, तो उसके क्या लक्षण होते हैं?
4: उसके लक्षण सबसे पहले आपको बताते हैं कि हर वक्त ज़्यादा थकान महसूस होना, यानी कि आपने कोई काम नहीं किया है फिर भी आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। अगर ऐसा आप महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि ऑटो इम्यून डिसीज के लक्षण कहीं ना कहीं हो सकते हैं।
3: तो क्या कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम जब ज़्यादा होता है तब तो इंसान थका हुआ नहीं रहता है, तब तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए ना?
4: जी मैम, लेकिन ये तब होता है जब आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है वो बैलेंस्ड
3: है। अच्छा, ज्यादा ज्यादा रहे तो?
4: ज्यादा ना रहे तब ये होता है। जैसे अगर बैलेंस्ड है तो आप एनर्जी अच्छा एनर्जीफुल खुश महसूस करेंगे।
3: हाँ हाँ।
4: लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये आपकी बॉडी में हार्मोनल जो एक बैलेंस होता है
3: वो चेंज होने
4: वो चेंज हो जाता है।
3: ओके।
4: जिसकी वजह से कई बार हम जरूरत से ज्यादा उदासी भी महसूस करते हैं।
3: हाँ हाँ।
4: जैसे कभी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों उदास महसूस हो रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, तो ये हो सकता है। और इस मौसम में ये सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये जो वेदर है ये ना हम कहें कि गर्मी में होता है।
3: हाँ।
4: और ना पूरी तरीके से ठंडक में होता है।
3: अगर
4: बारिश हो जाती है या मौसम चेंज होता है, आपने अभी रात को ही देखा होगा मैम, रात को ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इस टाइम धूप निकली हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये जो वेदर है उसकी वजह से होता है। दूसरा होता है कि इसके लक्षण कुछ ये भी होते हैं कि जिसमें हमें धीरे धीरे हमारा फोकस जो है वो चीजों से हटने लगता है, यानी कि हम चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चीज आपने रखी कि मुझे अभी ये लेकर के जाना है और 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद वो आपके दिमाग से स्किप हो गया, आप भूल गए, ये भी एक लक्षण हो सकता है। और तीसरा होता है बिना किसी चोट के आपकी पूरी बॉडी में मांसपेशियों में पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द, अगर ऐसा आप महसूस करते हैं तो ये ऑटो इम्यून डिसीज के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा होता है हल्का बुखार और बार बार रैशेज होना। अगर आपको हर वक्त हल्का बुखार महसूस होता है और आपकी बॉडी में रैशेज हो जाते हैं तो ये भी एक कारण एक लक्षण है कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिसीज का।
3: मतलब ज्यादा होती है बॉडी में,
4: ज्यादा होती है।
3: ओके।
4: और रैशेस हो जाते हैं, बड़े बड़े अगर रेड रेड रैशेस आपको हो जाते हैं तो वो भी होते हैं। और सबसे लास्ट होता है, बट कहीं ना कहीं इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप जैसे कुर्सी पे कुछ देर तक आप चेयर पे बैठे हैं आराम से, और उसके बाद आप अचानक से अगर उठ रहे हैं तो आपको चक्कर आ जा रहा है, आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जा रहा है। अगर आप आधे घंटे लेट गए हैं और आधे घंटे बाद उठ रहे हैं तो वो आपकी बॉडी पेन कर रही है, सर घूम जा रहा है अचानक से, तो इसका मतलब है कि ये ऑटो इम्यून डिसीज के लक्षण हो सकते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है, वो ज्यादा हो रही है,
3: वो ज्यादा हो रही है,
4: और आपको इसे कंट्रोल करने की
3: जरूरत है। तो उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? हम तो निवारण बताते हैं ना, यहाँ कम करना है
4: तो कम करने के लिए क्या
3: मतलब क्या घरेलू कोई उपाय ऐसे है जिसको हम अपना करके इन सारी चीजों से निजात पा सकते हैं?
4: हैं घरेलू चीजें,
3: क्योंकि देखो महिलाओं को टाइम नहीं होता है पहली बात
4: जी मैम,
3: जैसा कि बताया जा रहा है कि आज हमारा जो शो है वो महिलाओं को समर्पित है। एग्जैक्टली तो सबसे ज्यादा कहते हैं कि फुर्तीली भी महिलाएं होती हैं, और अपने लिए सबसे ज्यादा आलसी भी वही होती है, क्योंकि हर एक काम कर लेंगी लेकिन जहाँ पर अपनी बात आती है तो उन्हें लगता है कि यार चलो ठीक है ना, बचा कुचा खा लेंगे हम, बाद में खा लेंगे हम, ये बाद में कर लेंगे, चलो ठीक है ना हम अभी नहीं, मतलब देख लेंगे बाद में। तो ये जो बाद बाद बाद वाला आता है ना ये सीन, तो इसी कारण से उनके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होता जाता है धीरे धीरे।
4: बिल्कुल, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी ज्यादा तब होती है जब आपकी बॉडी को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का जो एक स्तर है वो बना रहे, यानी कि नॉर्मल रहे, तो उसके लिए अपनी बॉडी से काम उतना ही कराएं जितना कराने की जरूरत है। और सेकेंड, जैसे कि अभी मैम ने बताया कि बच्चा कुचा जो भी होता है वही खाती हैं, और कहीं ना कहीं घर की महिलाएं ही घर में खाना सबसे लेट खाती हैं।
3: बिल्कुल,
4: इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें, खाना टाइम टू टाइम ही खाएं और एक सेट रूटीन के साथ खाएं। जैसे सुबह 9 बजे नाश्ता किया, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आपने लंच किया, रात को खाने का भी टाइम होना चाहिए। क्योंकि जब हम जैसे बिना टाइम के कभी खाते हैं, कभी आप देखिए कि लेट हो जाता है किसी काम की वजह से, और आप जब बिना टाइम के खाते हैं तो हम कहते नहीं है कि अरे कुछ नहीं था, बट 4 चीजें वैसे ही शुरू हो गई। कहीं गले में जलन शुरू हो जाती है, कहीं कुछ नहीं होता है तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपने बिना समय के खाया, आपका टाइम निकल गया।
3: बिल्कुल,
4: तो इसलिए हमेशा टाइम का ध्यान रखें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे घरेलू टिप्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। कि एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि एक्सरसाइज अगर हम किसी से कहते हैं मैम, तो उनके मन में एक आता है अरे अब अलग से आधा घंटा निकालना पड़ेगा, 1 घंटे निकालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आप अपने घर में काम करते हैं, मान लीजिए आपके घर में सीढ़ियां हैं, आप 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट निकालिए कि हम सीढ़ियां चढ़ेंगे और सीढ़ियां उतरेंगे। वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उससे आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। और हो सकता है कि आपको छत पे कई बार जाना पड़ता हो, हमें भी जाना पड़ता है, तो हम सोचते हैं कि चलो एक बार कपड़े डालने गए, एक बार कपड़े आप उतारने गए, या किसी भी काम से
3: घर में ही आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको यूज करके आपकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर पे हो सकती है।
4: बिल्कुल, तो आइए लिसनर्स अब इसी के साथ चलते हैं, और एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग वेट कर रहा है, उसे सुन लेते हैं और उसके बाद हम आएंगे, क्योंकि अभी के लिए निवारण जो है वो हमारे पास बाकी है, और वो आपको पता ही है कि आपको कौन बताता है
3: जी।
4: तो वो हम जानेंगे लेकिन इस प्यारे से सॉन्ग के उस पार।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आगे ही आपकी आज समता और साथ में है आज अंशिका। तो चलिए फटाफट, अभी बात हो रही थी कुछ ऐसी डिजीज की जो कि महिलाओं में पाई जाती है स्पेशली, तो अब उसके निवारण का टाइम हो गया है अंशिका।
7: हाँ मैम, निवारण की जरूरत है।
6: अब निवारण की जरूरत है तो निवारण भी जरूरी होता है हर एक चीज का, क्योंकि जब चीजें बढ़ जाती हैं ज्यादा तो उन्हें ठीक करने का जो जिम्मा दिया गया है वो मुझे दिया गया है।
7: बिल्कुल।
6: तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारा जो शरीर होता है वो कई चीजों से मिलकर के बना होता है। आप सभी को पता है कि हमें कई चीजें भी हम अगर उनको अवॉइड करने लगते हैं तो कई प्रॉब्लम्स में हम घिर भी जाते हैं। तो अगर आपके आपको भी लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें अगर हो रही है आपके साथ में, तो छोटा सा उपाय जो कि आप घर बैठे ही आप अपने आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जो कि उस डाइट में आप सप्लीमेंट्स भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने खाने में चीनी, मैदा, रिफाइंड तेल और प्रोसेस्ड फूड्स को पूरी तरह से बंद कर दें। अगर आपको इम्यून जो सिस्टम है ये ऑटो इम्यून सिस्टम हो गया है तो उसमें आपने क्या करना है, आपके अपने खाने में चीनी, मैदा, रिफाइंड तेल और प्रोडक्ट्स फूड जो कि पैकेट्स वाले फूड्स आते हैं या फिर जो डेयरी मिल्क वाले जो आते हैं, जो बाहर से पैक हो करके आते हैं, उन सारे फूड्स को आपको बंद करना है पूरी तरीके से। हरे पत्तेदार सब्जियाँ, हल्दी, अदरक, अखरोट और ओमेगा 3 से भरपूर चीज़ें आप लें ताकि शरीर की अंदरूनी सूजन जो है वो ठीक हो सके। और जब आप इसको लेना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि आप में अंदर काफ़ी चीज़ों का बदलाव होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि पेसिंग, यानी ये क्या है, पेसिंग टेक्निक क्या है, अपनी शारीरिक ऊर्जा की सीमा को पहचानें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर स्टैमिना होती है इतने काम करने की, ठीक है, लेकिन हम काम क्या कर देते हैं, उसको 4 गुना बढ़ा देते हैं,
7: जरूरत से ज्यादा ही कर देते हैं।
6: हाँ, जिसके कारण से ये इम्यून सिस्टम जो है आपका धीरे धीरे वीक होने लगता है। एक ही दिन में सारा काम करके खुद को थकाने के बजाय कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटे और बीच बीच में आप रेस्ट भी करें, क्योंकि एक एज ऐसी होती है जहां पर आपको आराम की भी सख्त जरूरत होती है, नीड होती है कि अब आपका शरीर कहता है कि थोड़ा काम करो और बैठ जाओ, थोड़ा काम करो और थोड़ी देर आराम करो। तो आप पेसिंग की भी मतलब आप टेक्निक अपना सकते हैं आप अपनी ऊर्जा को वापस लाने के लिए। दूसरा है कि आपने क्या करना है, आपको ज़रूरी हो तो आप मेडिकल टेस्ट ज़रूर करवाएं, यानी कि अगर आप अच्छे फिजिशियन या फिर आप किसी ऐसे डॉक्टर से मिलें जो ANA यानी कि ऑथराइज एंटीबॉडी वाले जो कि आपकी ट्रीटमेंट को देखें और आपकी विटामिन्स का ख्याल रखें, यानी D3 B12 के ब्लड टेस्ट ज़रूर आप करवाते रहें। और उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट माइंड बॉडी थेरेपी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमने दिमाग से कुछ सोच लिया कि हमें ये बीमारी है, हमें ये हो रहा है ऐसा, तो आप मेरा कहाँ माने, आपको वो सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ खुद पर यूज किया हुआ ये टेक्निक है, क्यों अंशिका?
7: बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और वो सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं होता है कि अगर मैम कह रही है कि उन्होंने कुछ सोचा और उन्हें महसूस होने हाँ। लगा कि उनके साथ वो हो रहा है, तो उन्हीं के साथ होता है, ऐसा नहीं है। अगर अभी मैं सोचूं यहाँ बैठ के कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है
6: हाँ।
7: तो आप देखिएगा कि विद इन 5 या 6 मिनट के अंदर अंदर वो मुझे पैरों में दर्द होने लगेगा।
6: अच्छा ये बताओ, जैसे हम अभी जैसे हम कहीं बाहर गए थे तो जैसे मैं प्रॉब्लम तुम्हें छोटी छोटी बताती रहती हूँ कि आज मुझे ऐसा हो रहा है, आज मुझे वैसा हो रहा है, पर ये सेम प्रॉब्लम मुझे वो 4 दिनों में क्यों नहीं होती है, पता है क्यों नहीं होती है?
7: क्यों?
6: क्योंकि उस समय दिमाग हमारा एक खुशी वाले मोड में होता है
7: जी,
6: ठीक है? क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपनी बॉडी की तरफ कम सोचते हैं
7: जी मैम,
6: ठीक है? और उसके बाद से क्या होता है कि हमारा माइंड तक जो एक सिग्नल जाता है कि यस आई एम अ फिट, तो आप 4 दिन क्या, आप 4 साल तक आपको ये महसूस नहीं होने देता, मतलब आपको होगा ही नहीं, आपको महसूस ही नहीं होगा।
7: अगर आप खुश रहेंगे तो
6: हाँ, आप खुश रहेंगे तो, अगर आपका आपने दिमाग से अगर सोच लिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुश हैं, आप ठीक है, आपका स्वस्थ शरीर है, तो आपको ताउम्र कुछ नहीं होने वाला। बाकी एज है यार, वो तो थोड़ी बहुत अप डाउन होती रहती है, और कुछ ना कुछ तो ऐसे फीवर है, सर्दी जुकाम है, कुछ ऐसा तो वो होता ही रहेगा।
7: छोटी मोटी चीजें तो कहीं ना कहीं बॉडी के साथ लगी रहती है।
6: बिल्कुल, तो पूरा जो गेम होता है ना वो हमारी हमारे माइंड बॉडी जो थेरेपी होती है, माइंड का गेम होता है। यानी अगर हम स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग और काउंसलर की मदद से एक बेहतरीन थेरेपी लेंगे, उसका सहारा लेंगे, तो आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो शांत होता है, और बिल्कुल शांत नर्वस सिस्टम के साथ में आप कोई काम करेंगे तो आपकी बॉडी भी सेंसिटिव नहीं हो जाएगी, आपको वही फील कराएगी जो आप दिमाग से सोचेंगे।
7: बिल्कुल, तो वही फील करें जो आपका दिमाग कहता है कि आपको फील करना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव
6: सोचेंगे तो पॉजिटिव आपके साथ होगा, और पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो पॉजिटिव आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा भरपूर हो जाएगा।
7: बिल्कुल, वैसे मैं भी ऐसे जानती हूँ, ऐसी हैं कोई मेरी करीब जिनके पास बैठो ना तो सब पॉजिटिव ही होता है।
6: अच्छा लगता है फिर,
7: अच्छा लगता है फिर।
6: कौन है वो, कुछ किस्मत?
7: मजा आता है। आज उन्होंने येलो कुर्ती पहनी है।
6: अच्छा मैं? Oh my God, मतलब मैं,
7: मुझे लगा था मैम गेस कर ले।
6: अंशिका तुमने आज बताया नहीं कि आज मैं कैसी लग रही हूँ।
7: आज आप अच्छी लग रही है मैम, वैसे रोज ही लगती है।
6: नहीं लेकिन आज मुझे भी खुद से भी फील हो रहा है कि हाँ,
7: ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, आपको खुद से फील हो रहा है।
6: वो ऐसा होता है जब किसी वही ऐसे मरे हुए मूड में आओ ना तो मरे हुए मूड में आओ तो वो ऐसे वो पूरा दिन ऐसे जाता है, और जब आप हाँ, अच्छे अच्छे हैप्पी मूड में आओ तो पूरा दिन आपका हैप्पी हैप्पी जाता
7: है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे ही हैप्पी रहें, और इसी हैप्पी बातों के साथ हैप्पी सॉन्ग भी सुन लेते हैं। आइए सुनते हैं और मिलते हैं आपसे सॉन्ग के उस पार। स्टे ट्यून।
8: एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
5: और मैं हूँ आरजे अंशिक।
4: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के सेकंड पॉइंट, जो कि है बहुत ही ज्यादा वाला स्पेशल। तो आइए जानते हैं कि कौन सा क्या है।
5: आपने हमेशा सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं, यानी स्पेशली महिलाएं भी होती हैं ऐसी, जो कहती है मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ओके, आई एम वेल, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम्हें पता है मेरी लाइफ में कुछ कितना अच्छा अच्छा हो रहा है, ऐसी होती है। यानी कि बाहर से तो हम दिखाते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो,
4: नॉर्मल जा रहा है,
5: लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। यानी कि हमारे मन में, हमारे दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। यानी पूरी एक तरीके से कहीं ना कहीं उधेड़बुन होती है।
4: बिल्कुल,
5: क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं हो सकता है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो।
4: ऐसा तो कोई नहीं हो सकता। एग्जैक्टली,
5: कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ अच्छा है। हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर किसी की लाइफ में होता है।
4: वो तो है।
5: अगर ये आप में एक आदत बन जाती है तो ये एक मेंटल कंडीशन की तरह सामने आती है, जो हमारे बिहेवियर को और हमारी कहीं ना कहीं पूरी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है।
4: मतलब जो सोचते रहते हैं कि हम परेशान हैं, हम मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है।
5: जी
4: नहीं, ऐसा भी है कि अगर अगर ये कहा जाए कि किसी की लाइफ में वाकई में अगर प्रॉब्लम हो, तो
5: अगर आपकी लाइफ में वाकई में प्रॉब्लम है और आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो सही है, क्योंकि आपकी वो रियलिटी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हम कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल हो जाते हैं। एक ऊपर से, जैसे हम कभी कभी कहते नहीं है कि मुखौटा होता है कभी, कि हम हंसता हुआ अगर मुखौटा आप किसी को दिखाएंगे तो अगले इंसान को यही लगेगा कि वो स्माइल कर रहा है, लेकिन पीछे कितना पेन है ये हम नहीं जानते। कुछ फीमेल्स के साथ ठीक ऐसी ही हैबिट होती है कि वो दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन पीछे क्या होता है, पीछे उन्हें पेन होता है जिसे वो दबा रही होती है।
4: बिल्कुल।
5: और उसी पेन को लगातार दबाना और अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट न करना, ये बहुत गलत होता है, क्योंकि धीरे धीरे आपके दिमाग को, आपके माइंड को उसी माइंड सेट की आदत पड़ जाती है।
4: मतलब कि प्रॉब्लम्स कितनी भी हैं, लेकिन उसको अकेले सफर करना और उसको फेस पे नहीं लाना।
5: जी, और ये बहुत गलत होता है, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा लिसनर्स कि जब भी प्रेशर कुकर होता है मैम, और उसमें अगर आप कुछ मत डालिए, मतलब कोई चीज ना रखिए, और खाली ऐसे प्रेशर कुकर अगर आप उसको बंद करके और गैस पे रख देंगे, तो थोड़ी देर के बाद वो प्रेशर कुकर क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम,
4: लेकिन यहाँ तो प्रेशर कुकर में बहुत सारी बातें हैं, उलझने हैं ना, वो क्यों ब्लास्ट होगा?
5: होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को छिपाते हैं, जिसे हम हमेशा कहते हैं कि रिश्तों में कुछ छिपाना नहीं चाहिए, अगर आपका किसी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है तो आप उसे सारी चीजें बताएं। प्रॉब्लम्स को हम हमेशा क्यों कहते हैं कि कभी छिपाओ मत, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हम छुपाते हैं, और छुपाते छुपाते एक्सेप्ट न करते करते अपनी रियलिटी को एक दिन उस माइंड सेट पर पहुंच जाते हैं कि हम धीरे धीरे अपनी बनाई हुई दुनिया में ही रहना शुरू कर देते हैं, और रियलिटी से हमारा जो एक नाता होता है
4: वो हट जाता है,
5: वो बिल्कुल पूरी तरीके से हट जाता है।
4: बिल्कुल,
5: जो बहुत गलत होता है। धीरे धीरे जब आप रियलिटी में नहीं रहते हैं, तो आपका माइंड सेट आपको उसी दुनिया में ले जाता है जिस दुनिया में आप रहना चाहते हैं।
4: अच्छा, ये होता है सभी के साथ में? मतलब मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं अंशिका, जो लोग इस फेक दुनिया को अपना बना करके रहते भी हैं।
5: जी,
4: मतलब जैसे कि उन्हें हो सकता है कि अपनी फैमिली का कुछ डर हो, समाज का डर हो, अपना खुद का डर हो, तो वो ऐसा बैकग्राउंड बना देते हैं अपने आसपास कि हमें कोई देखेगा तो क्या कहेगा, हमारे बारे में क्या सोचेगा, इससे अच्छा है कि हम सारे दुखों को अंदर अंदर पी रहे हैं और हम ऐसे सामने मतलब अपना उसको हम फेस कर रहे हैं।
5: बिल्कुल।
4: पर एग्जैक्टली अंशिका का कहना यह है कि अगर ऐसा है तो वो आगे चल करके कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, क्योंकि आपकी बनाई हुई दुनिया कुछ और है और आपके साथ जो चल रही है दुनिया वो कुछ और होती है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो कहने का सेंस केवल इतना ही है कि अगर कुछ ऐसा है तो उसे खुलकर कहीं पर व्यक्त करने की आवश्यकता है।
5: बिल्कुल, अपनी चीजों को हमेशा बताना चाहिए। अगर आप किसी से नहीं बता सकते हैं तो आपको और कुछ चीजें करनी चाहिए, लेकिन उसे बाहर जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि चीजें कहते हैं ना कि जब अंदर रह जाती हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। जैसे किसी को लेकर के भी कभी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अगर किसी के लिए गुस्सा भी है, किसी के लिए मन में नेगेटिविटी भी है तो निकाल दीजिए, आप लड़ाई कर लीजिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, दोबारा आपको फिर वो बातें कभी नहीं याद आएंगी।
4: और जिससे लड़ाई होती है ना, और फिर पता है वो हम लोग मानसिक तौर से फिर हम लड़ाई करने लगते हैं, कुछ बोलते तो नहीं है लेकिन मन में चलता, दिमाग में चलता रहता है कि अगर मैं उसको ये बोल देती ना तो अच्छा होता है, मैं उसको ये बोल दूं ना तो ये अच्छा होगा। तो इससे अच्छा है कि आप बोल करके उसको, अपने दिमाग और वो सारी चीजों को बोल करके खत्म करो और शांत करो।
5: बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि लड़ाई नहीं करते हैं, चलो रहने दो, जाने दो, चीजें अच्छी ही रहें, लेकिन हमेशा ये माइंडसेट लेकर के कभी नहीं चलना चाहिए कि चीजें अच्छी ही रहें, क्योंकि चाहे आपका किसी के साथ रिश्ता हो, आपका बिहेवियर हो, आपकी अपनी पर्सनालिटी ही क्यों ना हो, हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं रह सकता।
4: बिल्कुल।
5: हमें भी गुस्सा आता है, हम भी इंसान है, कभी किसी पर हमें भी होता है कि गुस्सा आता है तो हम बोल देते हैं, बाद में भले ही हम उसको वो करते हैं लेकिन उस टाइम पर बोल देते हैं और वो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिए और अपने बिहेवियर में ये जो अभी हमने आपको बताया वो कभी चीजें ना आने दें, कभी खुद को बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल वे में दिखाने की कोशिश
4: बिल्कुल
5: ना करें
4: जी।
5: तो इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ में अभी हमारे पास और भी कुछ है आपको बताने के लिए, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ आपको ये बताया कि किस तरीके से ये शुरू होता है, किस तरीके से बढ़ता है, क्या क्या इसके हार्म पार्ट्स होते हैं। अभी हम आपको ये बताएंगे कि आप इसे दूर कैसे कर सकते हैं, यानी इससे दूर कैसे रह सकते हैं
4: जी।
5: लेकिन उससे पहले हम आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाएंगे और उस सॉन्ग के बाद आएंगे और जानेंगे कि क्या है इसके कुछ प्रिकॉशंस। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यू गए और यू आए।
4: और आपको पता होना चाहिए कि इस गाने जो मैं नेक्स्ट गाना प्ले करने जा रही हूँ वो गाना मेरा फेवरेट सॉन्ग है। एंड मेरा फेवरेट सॉन्ग, मैं हमेशा से शाम वाले शो में आती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं इस गाने को आज सिंपल को ज़रूर फरमाइश करती हूँ कि ये गाना मुझे सुना दो। एंड ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, वाकई में दिल को बाहर निकाल देता है इस गाने को। आइए एंजॉय करते हैं एक साथ।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
2: गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
5: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
4: चलिए तो फटाफट आते हैं चैट बॉक्स में, जिन्होंने लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच आशु जी, और सभी को सॉन्ग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रीति जी थैंक यू सो मच, धर्मेंद्र जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और यही ऐसा ही आप सभी का प्यार आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। एंड अरविंद जी, मैम देखो ना, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, आपका मैसेज था। एंड सुनील यादव जी थैंक यू सो मच आप सभी का तहे दिल से। तो आइए अब सीधे चलते हैं आज की मॉरल स्टोरी, जो कि आप सभी को पता है कि मॉरल स्टोरी आज के दिन हमारे विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम की एक जरूरी वाली एक सेगमेंट होता है, जो कि महिलाओं को सशक्तिकरण कहने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर दिन हर पल एक ये बहुत बड़ी एक वो होती है कि हमें कहना नहीं पड़ता है कि यस नारी तू कमजोर नहीं शक्ति का नाम है। ये कहने की जरूरत नहीं, स्लोगन नहीं है कि हम हमेशा से उसका उसको उसकी माला जपते रहेंगे, ऐसा नहीं है। यस विमेन्स पावर है, अगर घर में औरत है तो यानी कि आपका घर घर नहीं वो फिर महल है, अगर घर में औरत नहीं है तो वो फिर और चार दीवारी और एक छत का ही केवल मकान है।
5: बिल्कुल, तो आइए अब बात कर लेते हैं कि आज की हमारी जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है अनीता की। अनीता की स्टोरी हम सभी के लिए मोटिवेशनल इसलिए है क्योंकि जब वो बहुत ही छोटी उम्र में उनकी शादी एक बहुत ही साधारण परिवार में हुई थी और गांव में हुई थी, और वो एक हाउसवाइफ थी, मतलब गृहिणी थी, और उनके घर की जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी बहुत ज़्यादा। इस वजह से वो हमेशा परेशान रहती थी और सोचती थी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे घर की जो कंडीशन है वो स्टेबल हो जाए। हमेशा उनके मन में यही चला करता था, यही वो सोचा करती थी।
4: ओके,
5: तो वो क्राफ्ट्स बहुत अच्छे बनाती थी।
4: अच्छा,
5: यानी कि किसी भी कोई भी पेपर है या घर में
4: आर्ट एंड क्राफ्ट।
5: हाँ,
4: लेकिन एक बात है अंशिका कि ये तो ईश्वर का एक बहुत बड़ा मतलब एक आशीर्वाद है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर वो जरूर से डाल देते हैं।
5: बिल्कुल मैम,
4: कोई भी मतलब आप कोई भी आप उठा के देख लो, कोई भी ऐसा कोई, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, आपने कभी देखा है कि हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट जरूर होता है जिसके बल पर वो मतलब एक अपने आप को स्पेशल फील करता है।
5: बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि हर किसी में रोशनी होती है, बस देखने वाला नजरिया चाहिए। और उन्हें ये नजरिया मिला उनके हस्बैंड के थ्रू।
4: ओके,
5: क्योंकि वो हमेशा घर में वेस्ट पड़ी हुई चूड़ियों से, मोतियों से, अगर कोई जैसे कोई चीज खराब हो जाती थी, अगर कोई साड़ी थी और वो खराब हो जाती थी तो वो उसके फॉल्स वगैरह को कट करके अच्छा सा कुछ ना कुछ हमेशा बना दिया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो साड़ी से कुछ क्राफ्ट बना रही थी, उसमें से सितारे निकाल रही थी। वो साड़ी खराब हो गई थी तो वो उसमें से सितारे निकाल के उसका कुछ अपना बना रही थी। तो उनकी हस्बैंड की नजर उनके ऊपर गई और उन्होंने बोला कि ये क्या कर रही हो, तो उन्होंने बताया कि मैं इससे क्राफ्ट बना रही हूँ। और उन्होंने अपने हस्बैंड को दिखाया भी कि इससे पहले मैंने क्या क्या बनाया है।
4: okay.
5: जब उन्होंने वो सारी चीजें देखी तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा टैलेंट है और हमें इसे और इस्टेब्लिश करना चाहिए। लेकिन जो कि थोड़ा सा घर का एक प्रेशर था कि घर पे लोग जल्दी इन सब के लिए मानते नहीं। तो वो उनके साथ भी हुआ कि उनके पेरेंट्स जो थे वो अग्री नहीं कर रहे थे कि वो ऐसा कुछ करें। लेकिन उनके हस्बैंड जो थे उन्होंने कहा कि नहीं तुम करो, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनका एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और उस पर धीरे धीरे उनके वीडियोस
4: पोस्ट करने लगा,
5: पोस्ट करने लगे। लोगों को उनके क्राफ्ट्स इतने ज्यादा पसंद आने लगे कि वो उसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होते थे। उन्हें बस ये होता था कि आप इस चीज से मेरे लिए ये क्राफ्ट बना दीजिए और मैं आपको इतने या जितने भी आप उसके लिए पे लेंगी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शुरू शुरू में क्या हुआ कि ज्यादा मैसेजेस नहीं आते थे, ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता था, जिसकी वजह से उनके रिलेटिव्स, उनके अपने सास ससुर ने उन्हें ताने मारने शुरू किए। अरे कुछ नहीं होगा, घर में जो होते हैं वो सिर्फ घर का काम कर सकती हैं महिलाएं, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्हें सुननी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और ठीक 6 महीने बाद, आप सोचिए कि चैनल शुरू करने के पोस्ट करने के 6 महीने के बाद उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिला क्राफ्ट का, और उनका पहला ऑर्डर ही 50 पीसेस का था।
4: ओह माय गॉड।
5: जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी और उन्होंने एक मूर्ति बनाई थी जो कि उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, और उन्होंने बोला कि मुझे इसके 50 पीसेस चाहिए और आप जितना भी इसके लिए पे करने के लिए कहेंगे हम आपको उतना पे करेंगे। और फिर जब धीरे धीरे उन्हें ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए तो आज उनका बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो जो भी क्राफ्ट बनाती हैं वो लोगों को पसंद आते हैं और लोग उसे लेते हैं। और आज उनके साथ 10 महिलाएं जुड़कर उनके बताए अनुसार वो क्राफ्ट बनाती हैं और काम करती हैं। आज उनके घर की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है, और वही लोग जो उन्हें ताने मारते थे आज उनसे कहीं ना कहीं सीखते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिविटी पे ध्यान देना चाहिए।
4: हाँ।
5: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
4: काम है कहना,
5: लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो लाइफ में तरक्की करेंगे।
4: और वैसे भी अंशिका, लोगों का काम है कहना जो ये जो स्लोगन है ना, ये सभी के साथ कहीं ना कहीं फिट बैठता भी है।
5: बिल्कुल।
4: जैसे मैंने कई बार देखा है कि महिलाएं जो शादी के पहले बहुत सारे अपने सपनों को मतलब जैसे लगता है कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके वही सपने कहीं ना कहीं एक बंद डिबिया में रह जाते हैं। एक कहते हैं ना कि मैंने कहीं पढ़ा था कि मेरे सारे सपने जो हैं वो एक सिंदूर की डिबिया में बंद हो गए, चूड़ियों की खनक की आवाज़ में कहीं खो गए, और पैरों की पायल की जो चाल होती है उसमें कहीं वो मेरे कदम खो गए। तो ऐसा नहीं है, आप भी कहीं पे भी, मुझे लगता है कि ऐसी महिलाओं को बिल्कुल अपनी इच्छाओं को और जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो जीने का अधिकार सभी को होता है, अपनी मन की इच्छाओं को जागृत करने का अधिकार सबको होता है, चाहे वो एक इंसान हो चाहे वो कोई भी हो। तो अगर आपके मन की कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं तो उन्हें पूरा करने का वक्त, और आपको पता है कि अब तो महिलाएं मतलब धरती से लेकर के चांद तक पहुंच गई भाई, और आप अपने घर से निकल करके आप अपने ऑफिस तक नहीं जाना चाह रहे हैं, आप अपनी चलो ऑफिस तक नहीं जाना है लेकिन आप अपने घर में ही, आप अपने घर के ही किसी एक कमरे से कोने से आप अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अपनी इच्छाओं को जागृत करें। एक छोटी सी जो कि पहल होती है, छोटी सी पहल आपके लिए बहुत कुछ बड़ा मिसाल कायम कर सकती है।
5: बिल्कुल, इसलिए हौसले को हमेशा बुलंद रखें और अपने जो भी आप करना चाहते हैं उनमें हमेशा उड़ान रखें, क्योंकि कहते हैं कि हौसलों में नहीं बल्कि आपके सपनों में उड़ान,
4: सपनों में जान होनी चाहिए और उसमें एक उड़ान होनी चाहिए। तो चलिए आज के विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम में महिलाओं के आज के स्पेशल शोज को हम यही करते हैं एंड, कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें क्योंकि मौसम हमारा ऐसा है। और हाँ, जाते जाते एक चीज और कहेंगे कि प्लीज आप योगशाला को सुनिए, योगशाला में आजकल बहुत ही अच्छी सी सीरीज भी लगी हुई है, तो आप लोग सभी सुने और उस योगशाला के प्रोग्राम का भी फीडबैक हमें जरूर दिया करिए। अगर आप मॉर्निंग में नहीं दे सकते हैं तो सुन सहेली में आकर के हमें उसका फीडबैक जरूर दिया करिए। चलिए हम दोनों को दे इजाजत, हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय
5: बाय दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में, क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब?
5: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

नमस्कार आदाब, हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। घड़ी में वक्त हो चला है 3:05 बाय स्टूडियो क्लॉक। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरशी उन्नति, और ये है आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा। जानना चाहते हैं कॉलर ट्यून गोंडा क्या है? बस मैं हर बात बताती हूँ कि भैया कॉलर ट्यून गोंडा है आपके फरमाइशों वाला कार्यक्रम, लेकिन इसके अलावा ये शो है आपके अपने नाम पर। यहाँ आरजे की मर्जी नहीं चलती, यहाँ मर्जी चलती है हमारे लिसनर्स की। मैसेजेस होते हैं हमारे लिसनर्स के, गाने होते हैं हमारे लिसनर्स के डिमांड पर, इवन डेडिकेटेड मैसेजेस होते हैं हमारे लिसनर, इमोशंस होते हैं हमारे लिसनर्स के, और सब कुछ होता है हमारे लिसनर्स का। तो ये वाला शो आरजे कंट्रोल नहीं करता, इसको कंट्रोल करता है हमारा लिसनरशिप। तो भैया अगर आप चाहते हैं ना इस शो में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना, कंट्रोल करना, अपनी मर्जी से इस प्लेलिस्ट को डिज़ाइन करना, तो उठाइए अपना फ़ोन, डायल कीजिए 6393316429। आई रिपीट 6393316429। अपने गाने, अपनी फरमाइशें, अपना नाम और अपना शहर भेज दीजिए आरशी उन्नति के पास, और आइए हम चलते हैं हमारे पहले गाने की तरफ, क्योंकि ये है आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस 89.6 FM पर। हमारे पास फरमाइश आई है बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत गाने की, और वो गाना है अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। दही जमाना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देख लेना, नरेश प्रजापति की फरमाइश है, तो इंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। जहर फिल्म से आप इंजॉय कर रहे हैं, भले ही फिल्म का नाम जहर है, लेकिन माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत गाना है ये।

और ये गाना इतना खूबसूरत है, हमारे नरेश प्रजापति ने इस गाने की फरमाइश की थी श्रेया की आवाज़ में। आप एंजॉय करते जहर फिल्म से, माशाल्लाह बेहद ही खूबसूरत गाना। और इसी गाने से इंस्पायर्ड होकर एक दिन हम भी गुनगुना रहे थे कि तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, पीछे से मम्मी की आवाज़ आई तुम शीशा तोड़ो हम तुमको तोड़ते हैं शीशे, तुम्हारे लिए पैसे पेड़ पे उगते होंगे हमारे लिए नहीं उगते, हम खरीद के लाए हैं तुम तोड़ के दिखाओ। और उसके बाद हम बस इतना ही कह पाए कि ही मम्मी मजाक कर रहे थे मजाक, और उसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं पाए। फिलहाल आइए बढ़ते हैं आपके अपने चैट बॉक्स में और देखते हैं किन किन के मैसेजेस आ चुके हैं और कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया है। धर्मेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए। हेलो रति मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? और सब अच्छा है? हाँ जी बेशक बहुत अच्छा है, और पहला गाना सुनने के बाद और भी अच्छा हो चुका है। गुलाब शाह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड आफ्टरनून रति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। लेकिन आप गुलाब शाह सिद्दीकी से गुलाब शाह शेख कैसे बन गई ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़ारा खान आ चुकी है हमारे साथ। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू। रिजु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। एंड हेलो, एकदम मस्त, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। सुपर वॉइस डियर मैम, थैंक यू सो मच। और इसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी आवाज़ विकास से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं कॉल ट्यून गोंडा में। बाबू अंसारी अहमदपुर बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून अति मैम जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत भली चंगी, आप बताइए आप कैसे हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने सोच लिया है कि सभी लिसनर को थिरकाना है। ओह माय गॉड, लगता है आपका गाना फिर से हाई बीट होने वाला है, हाँ, ऐसा कुछ है क्या? एंड दादा यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बजाज चीनी मिल से, आपका भी स्वागत करते हैं। और आपने लिखा है हाय हाय, कैसे हैं आप? अरीवा शेख हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड गुड आफ्टरनून मैम, गुड गुड आफ्टरनून टू यू, कैसी हैं आप? एंड इसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी लाइन आ चुकी है हमारे धर्मेश जी की तरफ से। महफिल में आज एक खूबसूरत एहसास आया है, आपकी आवाज ने दिल को फिर से मुस्कुराया है, आप यूं ही अपनेपन से दिलों को छूती रहिए। अर्जुनती जी आप आई जैसे बाहर आया है, क्या बात है क्या बात है, मेरी तारीफ में चार चांद लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारा लिखते हैं आप, बाय द वे हम आपको बता दें। एंड इसके बाद राजकमल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एंड लिखा है नमस्ते दीदी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए भैया जी आप कैसे हैं? एंड इसके बाद मोहम्मद मुसीफ है हमारे साथ और लिखा है आपने गुड आफ्टरनून डियर राजवंती जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आपका भी इस्तकबाल करते हैं हम कॉलोनी गोंडा में। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। रामजन का आया है मैसेज और आ गया है फरमाइश बाराबंकी से, तो इंजॉय करते रहिए। पतली कमर लंबे बाल जो कि हो नहीं पा रहे हैं मेरा दोस्त, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसका टेंशन हम नहीं लेंगे क्योंकि हम तो इंजॉय करेंगे पतली कमर लंबे बाल। मिलेंगे इस गाने के उस पार, स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारे राम जन की एंड बाराबंकी से आपने एंजॉय किया। ये बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना वो है जिसको देखने के बाद आप भी हो जाएंगे बहुत मस्त, क्योंकि गाना है गुलाबशाह सिद्दीकी जी का, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। सेम लाइन मेरा माइकल भी मुझे बोलता था, लेकिन वो अलग बात है कि अपनी भाषा में बोलता था और हम अपनी भाषा में उसको जवाब दे नहीं पाते थे क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आता था वो क्या बोल के चला गया है। लेकिन हम आपको बता दें, बेहद ही रोमांटिक सा गाना है और मुझे बेहद ही पसंद है ये गाना। जीत फिल्म से आप एंजॉय करने जा रहे हैं करिश्मा और सनी देओल की ऊपर फिल्म आया गया कुमार सानू अलका जी की आवाज में, तो एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं इस गाने के उस पर। अगली फरमाइश हमारे मेहताब जी की है एंड ओके, तो आपने ये फिल्म बीसीआर पे देखी थी, राम कमल या राज कमल यादव जी, बहुत बढ़िया बात। हालांकि बीसीआर देखे हुए जमाने गुजर गए।

और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले नगमे की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ, क्योंकि ये है आपका अपना कॉलर ट्यून गुंडा। ये फरमाइश तुम्हारे गुलाब शाह जी की 6393316429 पर आपको भेजनी अपनी फरमाइश, अपना नाम, अपना शहर का नाम और ऑफ कोर्स अपने गाने की बोल। एंड आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। मेहताब जी ने हमें भेज दिए ये फरमाइश मुंबई से, और हमारे साथ हमारी एक्ट्रेस भी जुड़ गई है, क्या बात है। श्रीदेवी जी की एंट्री हो चुकी है, आपका स्वागत करते हैं। एंड ये गाना मेरे लिए डेडिकेटेड था, थैंक यू सो मच। ओके, धर्मेंद्र जी ने लिखा है, उर्ति जी गुड आफ्टरनून टू यू। धर्मेंद्र जी, काफ़ी देर से याद आया आपको, हालांकि हम आपका स्वागत तो बहुत पहले ही कर चुके हैं। एंड आइए इन्जॉय करते हैं हमारा वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इन्जॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अगले गाने पर, जो कि राजकमल जी की फरमाइश है, बाराबंकी से। इसके बाद है हमारे सुनील जी की बारी।

मेहताब जी की फरमाइश थी मुंबई से, एंड हमारे साथ रीना शर्मा जी जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। एंड आइए बढ़ते अगले गाने की तरफ। बाराबंकी से हमारे पास फरमाइश आई है, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, इंजॉय करते रहिए। लता जी की आवाज़ है, बहुत ही प्यारा सा नगमा है। एंड ओके, तो लगातार आपकी फरमाइशें आ रही हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली फरमाइश हमारे सुनील जी की, जारा खान की, रिजू जी की, राजेश मीना जी की, धर्मेश त्रिपाठी जी की और धर्मेंद्र मोहन जी की होने वाली है। तो बने रहिए, सुनते रहिए कॉल ट्यून गुना। मैं हूं आपकी अपनी आरशी नदी और ये है रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुसीब जी, अगर आपकी फरमाइश हम तक आई है तो आपका गाना हम बहुत जल्द प्ले करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, और अगला सॉन्ग हमारे पास है सुनील जी की फरमाइश का, जो सुनना चाहते हैं सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना। इंजॉय करते रहिए। 1999 में इस गाने को रिलीज किया गया था जानम समझा करो फिल्म से, और मिला के ऊपर फिल्माया गया गाना। इंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे अगले गाने पर, जो कि माया ज़ारा खान, रिजू जी की, राजेश मियां जी की, धर्मेश त्रिपाठी की, धर्मेंद्र मोहन की, बाबू अंसारी की, आरिबा जी की, सबलू जी की, मोहम्मद मुसीब की, रईस की, शारदा जी की और एहसान जी, एंड उसके बाद है हमारी निशा जी की बारी।

और ये फरमाइश थी हमारे सुनील जी की। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना हमारे पास है जारा खान का और वो कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है, कह दो ना। बताइए बताइए क्या कहना है, मैं इंतजार में बैठी हूँ। जारा जी क्या बोलना चाह रही हैं आप? ओ गाना सुनना चाह रही हैं, चलिए आपके लिए गाना ही सुनाते हैं फिर, और क्या।

और इतना कुछ कहने के बाद आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास है रिजू की, तो आइए एंजॉय करते हैं साजिद वाशिद का गाना। राहत फतेह अली खान की आवाज़ है, सुरीली अखियों वाले, वन ऑफ माय फेवरेट गाने लगता है। भैया आज सबने मेरी प्लेलिस्ट चुरा ली है और हर दूसरा बंदा मेरा ही पसंदीदा गाना भेज रहा है, कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल। फिलहाल के लिए एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार राजेश मीना जी की फरमाइश को लेकर के जो हमें बैंगलोर से सुन रहे हैं।

ये फरमाइश थी हमारे रिजू जी की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले सोनिया तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका स्वागत करते हैं सोनिया जी। आपको अपनी फरमाइश करने के लिए कॉल करना पड़ेगा 6393316429 पर, और आइए एंजॉय करते हैं हमारे अगले गाने को, जो कि हमारा गाना है बैंगलोर से आया हुआ तम्मा तम्मा फ्रॉम थानेदार फिल्म। एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। अगली फरमाइश हमारे धर्मेश त्रिपाठी जी की और धर्मेंद्र मोहन जी की होने वाली है। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून्ड।

और भैया इस पूरे गाने में मेरी पसंदीदा लाइन है, जले जो उसे मैं और जलाऊं। बप्पी लहरी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आपने इस गाने को एंजॉय कर लिया है। एंड गुलफशा जी का कहना होती मैम परेशान मत होना, हम आपके साथ हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा।

एंड इट्स कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और एंजॉय करते हैं बोल राधा बोल तूने क्या किया, हमारे धर्मेश जी की फरमाइश है। एंड इसके बाद हमारे धर्मेंद्र मोहन जी, बाबू अंसारी जी, अरीबा जी, सबलू सावन जी, मोहम्मद मुसीब, रईस, शारदा प्रसाद प्रजापति, एहसान, निशा जी और सोनिया तिवारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून को।

और इसी के साथ थोड़ा सा वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पे आप सुने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सनगमा, जो कि हमारे राजेश जी पर फिल्माया गया गाना है। एंड इसके बाद सॉरी हमारे धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया गाना है। अपने ही नाम का गाना मंगा लिया आपने, ओ माय गॉड, जिसको कहते हैं क्रिएटिविटी, टैलेंट, हुनर। फिलहाल एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अगले गाने की तरफ जो कि हमारे अरिजीत सिंह की आवाज़ में होने वाला है। जाइएगा कहीं भी नहीं, गाना बहुत ज़बरदस्त आएगा। लेकिन इसके बाद

और ये फरमाइश थी हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की। धर्मेंद्र पाजी पर फिल्माया गया गाना है, मोहम्मद रफी की आवाज है। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने पर। बाराबंकी से हमारे पास आई है बाबू अंसारी जी की फरमाइश और वो सुनना चाहते हैं मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड। राबता फिल्म से पेश करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये हाई बीट गाना आपके लिए।

और ये फरमाइश थी हमारे बाबू अंसारी जी की। नाइये बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना हमारे पास है अरिबा शेख का और वो सुनना चाह रही हैं तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। एंजॉय करते रहिए बॉडीगार्ड फिल्म से। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के हमारे सबलू सामी जी की फरमाइश।

इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, जो कि हमारे सबलू सावंत जी की है और वो सुनना चाहते हैं ओ प्रिया प्रिया। तो इंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे अगले गाने पर, जो कि बैक टू बैक दो सॉन्ग आपके लिए पेश करने वाले हैं वक्त को ध्यान में रखते हुए, जो कि हमारे मोहम्मद मुसीफ जी का और रईस साहब का होने वाला है। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, और ये फरमाइश थी हमारे मोहम्मद मुसीफ जी की, माफी चाहेंगे यहीं पर रोकना पड़ रहा है आपका गाना, लेकिन आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। और वक्त ने इशारा कर दिया है भैया बहुत कम टाइम बचा है और करनी है कई सारी फरमाइशें पूरी। लेट्स सी मैं जीती हूँ या आज भी वक्त कहीं ना कहीं बाजी मार जाता है। तो सुंदर या मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे कॉलर ट्यून को ना। मिलते हैं अगली फरमाइश पर, जो कि हमारे शारदा जी की है, एहसान जी की है, निशा जी की एंड सोनिया जी की। 6 मिनट के अंदर 4 गाने, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। फिलहाल माजरा चाहेंगे अगर आप में से किसी एक का भी गाना हमसे नहीं प्ले हो पाता है तो।

ये फरमाइश थी हमारे रईस साहब की और अरविंद जी की एंट्री हो चुकी है चैट बॉक्स में। बहुत देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, अच्छा लगा आपसे मिलकर के। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग है हमारे पास मथुरा से, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। शारदा प्रसाद प्रजापति की तरफ से ये गाने की फरमाइश आई है, तो इन्जॉय करते रहिए और हम मिलेंगे अगले गाने पर। और मुझे लगता है भाई आज कुछ फरमाइशें पूरी नहीं कर पाएंगे, तो आपसे चाहते हैं तहे दिल से माफ़ी।

बहुत ही बेहतरीन नगमा, बीच में रोकने के लिए चाहेंगे माफी, लेकिन आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ जो कि हमारे एहसान जी की है। और जाने से पहले कोशिश रहेगी कि आपकी सारी फरमाइशें पूरी कर सकें, अगर नहीं होती है, वक्त हमें धोखा देता है, तो आपसे माफी चाहेंगे। फिलहाल नन्हे से फरिश्ते एंजॉय करते रहिए हमारे एहसान जी की फरमाइश है, और उसके बाद हम मिलेंगे हमारे निशा जी और ऑफकोर्स सोनिया तिवारी जी की फरमाइश, जो कि लग नहीं रही है कि हम कम्प्लीट कर पाएंगे। फिलहाल कोशिश करते हैं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कॉल ट्यून गुड़ा विद राजनीति।

और ये फरमाइश थी हमारे एहसान जी की, और इसी के साथ अब हम प्ले करते हैं हमारा आखिरी गाना जो कि हमारे निशा जी की फरमाइश पर है, दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा। एंड इसी के साथ अब चाहूंगी आपसे इजाजत, एंड साथ ही साथ चाहूंगी आपसे माफी सोनिया तिवारी जी, आपके गाने को हम प्ले नहीं कर पाए। आई होप कल आप जल्दी कॉल करेंगी और आप हमारे साथ इंजॉय करेंगी कॉलर ट्यून गुंडा। फिलहाल के लिए ये गाना आपको भी डेडिकेटेड है, वो अलग बात है कि हम आपकी पसंदीदा गाने को प्ले नहीं कर पाए थे। एंजॉय करते रहिए, ये गाना सभी के लिए डेडिकेटेड है जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो देरी से आए हैं, जिसमें हमारी गुलफशार जी, इट्स कुमार जी और हमारे अरविंद जी भी शामिल हैं, तो ख्याल रखिएगा। एंड सोनिया तिवारी जी, आपके लिए भी डेडिकेटेड है ये गाना, बाकी आपसे आपका गाना प्ले ना कर पाने के लिए माजरत चाहेंगे। बाय बाय, ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। दोस्तों, ये शो ऐसा है जिसमें हम प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज यानी आपको ही इनवाइट करते हैं, क्योंकि हर शख्स में एक ऐसे गुण होते हैं जो उसको शख्सियत में तब्दील करते हैं। सो ऐसे ही आज हमारे बीच गोंडा से नहीं बल्कि गोंडा के पड़ोसी नगर अयोध्या नगरी से मेहमान आ चुकी हैं। जी हाँ, बेशक। और चूंकि आज की जो बातचीत होगी वो बड़ी ही लयबद्ध होगी, अब आप सोचेंगे हम सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर रहे, इतना क्यों घुमा रहे। भाई साहब, जब गेस्ट के रूप में कवित्री सामने हो तो बातों को सीधा कहना बेईमानी होता है। फिलहाल मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम बताने का उनका अपना एक अलग अंदाज है। तो मैं चाहूंगा, अपनी गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने ही अंदाज में हमारे लिसनर्स को अपना परिचय दीजिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। कड़कड़ में जहाँ राम है, माँ सरस्वती का जो धाम है, कड़कड़ में जहाँ राम है, माँ सरस्वती का जो धाम है, वहाँ की निवासी मैं शिवानी श्रीवास्तव सहज, करती हस्त जोड़ आपको प्रणाम है, करती हस्त जोड़ आप सभी को प्रणाम है।
1: जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अपने ही अंदाज में अपना परिचय देने के लिए आज हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद है स्टूडियो में शिवानी श्रीवास्तव सहज। सहज आपका तकिया कलाम है, लेकिन मुझे पर्सनली मैं बताऊं कि कोई भी जब नाम आता है और उसके आगे तकिया कलाम लगा होता है, तो सबसे पहली क्यूरियोसिटी मेरी ये होती है कि उस तकिया कलाम को जानूं क्या है। तो आपके नाम के आगे सहज लगा है, ये सहज की उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई, ये हम जानना चाहेंगे।
2: जी बिल्कुल सर। सर, ये जैसा आपने बताया कि मैं कवित्री हूँ, जी हाँ, मैं आप सभी के समक्ष एक कवित्री, युवा अयोध्या से चलकर आई युवा कवित्री शिवानी श्रीवास्तव सहज हूँ। सर, हमारा जो पहला कवि सम्मेलन का मंच था वो था मतंग की राम सर, वहाँ आर के मतंग सर की 25th एनिवर्सरी के उपलक्ष में उन्होंने कवि सम्मेलन करवाया था, वहाँ पर मैं इन्वाइटेड थी। सर, जैसे पोएट अगर मैं वहाँ पर इन्वाइटेड थी तो सर ने मतलब पहले ही मुझसे बात कर रखी थी, तो सर को लगा थोड़ा सा मैं सहज हूँ, तो इसी वजह से उन्होंने सहज मेरी पर्सनालिटी के तौर पर मुझे एक एज अ गिफ्ट उन्होंने दिया था, एक तोहफे के तौर पर, कि आप आज से आपका टाइटल सहज है। तो वहां से मुझे मतंग के राम से आरके सर के द्वारा मुझे नाम मिला है सहज।
1: क्या बात है, आप बहुत खुशनसीब हैं, लोगों को तोहफे में बहुत एक केक मिलते हैं। कपड़े मिल जाते हैं, टी शर्ट शर्ट तो हमको बहुत मिली है, लेकिन एक नाम, एक लकब, एक टाइटल, वो भी लाइफ टाइम साथ में रहना, ये बहुत बड़ी बात है।
2: लोग पूछते हैं ना कि तोहफे में क्या दूं, मैं लोगों से ये कहती हूँ कि ऐसा कोई तोहफा जो लाइफ टाइम चले, तो ये तो बिना सर को बताए ही लाइफ टाइम के लिए एक तोहफा मिला है। तो मैं आरके सर को यहाँ से आज मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच टू आरके सर।
1: बेशक, आरके सर डिजर्व करते हैं, इतना प्यारा उन्होंने नाम दिया सहज। चलिए इसी सहजता के साथ हम चलते हैं और आपसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए आप गोंडा एफएम पर आई हैं, हमारे श्रोता आपके बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हम चाहेंगे एक संक्षिप्त सा परिचय आप बताएं अपने बारे में कि आपकी फैमिली कहाँ की है रहने वाली, और अभी फिलहाल आप कर रहे हैं क्या, और क्या कैसे आपकी स्कूलिंग हुई, इन सब चीजों के बारे में।
2: सर, मैं अयोध्या फैजाबाद नियावा से बिलोंग करती हूँ, नियावा एक जगह है वहाँ पर बिलोंग करती हूँ। सर, मेरी स्कूलिंग हुई है केजी टू ट्वेल्थ, मैंने पूरी पढ़ाई की है अपनी कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से, और उसके बाद मैंने बीए कर रखा है साकेत डिग्री कॉलेज से, और इसके बाद मैंने अपना पसंदीदा एक लाइन चुनी है सोशल वर्क।
1: ओके
2: सर, मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद था, तो मैंने पर बहुत सर्च किया, तो लोगों को बातचीत करके बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद मुझे पता चला सोशल वर्क में मास्टर्स भी होते हैं। तो सर मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क इसलिए बहुत ही मन से बहुत ही से किया है, मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी कर रखा है मैंने।
1: क्या बात है।
2: तो अभी तो मैं एज अ सोशल वर्कर कवित्री के साथ साथ एज अ सोशल वर्कर भी आप सभी के सामने हूँ।
1: वाह क्या बात है। तो एक कवित्री भी है और समाज सेविका भी है। आपके मुंह से निकल गया था कि बहुत पसंद था, अभी सब पसंद नहीं क्या?
2: पसंद है सर, पसंद है, और मैं उसको हमेशा पसंद रहेगा क्योंकि मैं मेरे एक मोटो ही है कि मैं एक मेरा एम है कि मैं एक सब बेस्ट सोशल वर्कर और बेस्ट पोइटेस बनूं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर एक बच्चा, मतलब अभी तो फैमिली जानती है, मोहल्ले वाले जानते हैं, कुछ शहर वाले जानते हैं, और धीरे धीरे कहीं दूर के लोग भी जान रहे हैं, जैसे कि अयोध्या से कुछ दूर आपने बताया पड़ोसी शहर से आई है, तो पड़ोसी शहर जाने की आप लोग भी जान रहे हैं मुझे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए। और लेकिन मेरी तो तमन्ना है कि मुझे छोटे छोटे बच्चे भी हर कोई जाने कि एक बेस्ट सोशल वर्कर और बेस्ट पोइटेस नहीं दी।
1: वाओ क्या बात है। कहते हैं कि जब लाइफ में उद्देश्य होता है तो लाइफ मीनिंगफुल होती है, मायने उसके होते हैं। अब वापस से चलते हैं और हम जानना चाहेंगे आपकी फैमिली के बारे में।
2: मेरे पापा मिस्टर सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो कि कैटर्स हैं हमारा, अपना टेंट का और टेंट लाइट केटरिंग और गेस्ट हाउस हमारा एक बिजनेस ही है, इवेंट शो का, इवेंट का एक बिजनेस है, वो पूरी हैंडल होता है। मेरे पापा एक फेमस भी रह चुके हैं, हैं भी अभी भी हैं, फेमस हैं सुरेश कुमार श्रीवास्तव कैटर्स के नाम से। मेरी फैमिली को सर मैं तो पोइट्री थर्ड स्टैंडर्ड से ही लिखती थी, बट बहुत ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा हकलाती थी।
1: ओ,
2: सर जब
1: अच्छा।
2: मैं यस सर, तो ये मेरी बहुत ज्यादा माइनस पॉइंट और आज के टाइम में बहुत प्लस पॉइंट है कि मैं उस टाइम पे हकलाती थी, और लोगों को लगता था कि एक होता ना कि हकलाना एक बीमारी के तौर पर होता है, लेकिन मुझे आज पता चलता है कि वो मेरा कॉन्फिडेंस लो था, कॉन्फिडेंस लो की वजह से मेरी ये प्रॉब्लम थी। बिकॉज जब मैं स्कूल में रीडिंग करना स्टार्ट करती थी, क्लास में रीडिंग करवाते हैं बच्चों से, जब मैं रीडिंग करना स्टार्ट करती थी तो टीचर्स बैठा देते थे, बच्चे होते थे, बच्चे हंसने लगते थे, तो ये सेवेंथ क्लास तक मैंने ये चीज बहुत ज्यादा फेस की है, और इसकी वजह से जहाँ मतलब मैं शुरुआत में तो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस लो की वजह से और मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स भी गिरने लगे, क्योंकि मैं अंदर से बहुत अंदर से उदास रहने लगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं नहीं बोल पाती हूँ, क्या मैं कभी बोल नहीं पाऊंगी, और मैं तो पोइट्री लिखती हूँ, मेरा मंच का शौकीन है, मैं कैसे करूंगी आखिर। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा घुलती थी, इस वजह से कहीं ना कहीं रिजल्ट्स भी गिरने लगे थे। लेकिन हाँ, एट्थ क्लास में मेरे साथ एक ईश्वर की देन कह सकते हैं, ईश्वर के रूप में हमारे मेरी लाइफ में एंट्री हुई खुशी निगम, मेरी बहुत बहुत ही खास फ्रेंड है। मैं तो मानती हूँ कि माँ ने जन्म दिया है और खुशी ने जीवन दिया है।
1: ओह माय गॉड।
2: क्योंकि सर तो उसने मतलब जैसे टीचर्स से लड़ना शुरू किया, बच्चों से लड़ना शुरू किया, क्लास के क्लासमेट्स से लड़ना, सबसे लड़ना शुरू किया। यस सर, वो मेरे लिए लड़ना शुरू की। तब तो हमारी फ्रेंडशिप भी कुछ खास नहीं थी, बट एक होता है ना कि मैंने कहा कि एक ईश्वरीय रूप में आई, तो उसने मतलब मेरे लिए, मैं हम लोग कुछ खास फ्रेंड्स नहीं थे उस टाइम पे वो मेरे लिए लड़ना शुरू की कि टीचर्स से कि आप उसको मौका ही नहीं दोगे तो फिर वो कैसे बढ़ेगी, वो लिखती भी है, ये भी करती है, वो भी करती है, आप लोग बढ़ने नहीं देते। जब भी बच्चे हंसना शुरू करते थे तो लोगों को डांटना, बहुत ज्यादा उसने स्टैंड लिया। तब जाकर के मुझे पता चला कि हाँ, ये जब मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज होने लगी, थोड़ी सी मतलब ठीक होने लगी, तब मुझे पता चला कि अच्छा, ये मेरा कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस लो की वजह से था। और अभी भी मैं लोगों को जो मतलब कहीं ना कहीं लोगों की ये वीकनेस होती है हकलाने की, तो मैं लोगों से ये कहूंगी कि पहले आप ट्राई करो कि आपका कॉन्फिडेंस लो की वजह से भी ये होता है, और स्कूल के टीचर्स से और उनके फ्रेंड्स से ये बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनकी कमियों पर हंसने से ज्यादा आप फोकस करें कि उसके अंदर जो टैलेंट है, या फिर उसको एक मौका तो दीजिए रीडिंग का मौका तो दीजिए। क्या पता आज वो जैसे कि मैं कहां, मैं बिल्कुल रीडिंग नहीं करती थी, एक सेंटेंस बोलने में 5 मिनट लगाती थी, और आज मैं आपके सामने एक कवित्री के रूप में खड़ी हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और क्या पता आपके साथ आपका कोई साथी जो हकलाता है वो एक हीरा हो, मुझसे बड़ा हीरा हो, मैं तो कोई हीरा नहीं लेकिन मुझसे कहीं बड़ा हीरा हो। तो आप हमेशा लोगों को मोटिवेट कीजिए और लोगों को सपोर्ट कीजिए।
1: वैसे आपने एक बात कहा कि कोई अगर हकलाता है कोई बच्चा, तो उसके पीछे वजह हो सकती है उसका लो कॉन्फिडेंस।
2: यस सर।
1: लो कॉन्फिडेंस आता है लेग पुलिंग करने से, जो आसपास के लोग होते हैं वो अप्रिशिएट नहीं करते, उपहास करते हैं उनका।
2: yes.
1: मजाक उड़ाते हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है एक मौका नहीं देना चाहिए, बल्कि हर शख्स को हर बार और मौका देते रहना चाहिए।
2: जी जी, जी.
1: क्योंकि समाज को भी नहीं पता होता वो मजाक मजाक में किसी की जिंदगी का क्या छीन सकता है।
2: ये तो है सर।
1: और एक ताली आपका किसी की जिंदगी को क्या दे सकती है ये भी नहीं पता है।
2: ये तो है सर। सर मैं आपकी एक लाइन पर, आपने अभी कहा ना कि लोगों को एक मौका नहीं हजार मौका देना चाहिए। सर एक मौके में ही ना अगर इंसान को एक मौका मिल जाए तो उसमें वो अगले इंसान से मौका मांगेगा नहीं। उसके बाद इंसान अगर किसी में कमी होती है या लो कॉन्फिडेंस होता है या कोई भी कमी होती है तो इंसान आपसे मौका सिर्फ एक मांगता है, सिर्फ एक मौका दे दीजिए, क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा होता है ना कि आप एक मौका दीजिए उसके बाद तो आप खुद ही मौका दोगे। तो वो चीजें होती हैं, तो एक मौका दीजिए आप, बाकी तो आप दोगे ही। वो मुझे कॉन्फिडेंस है तो वो, क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंट हो जाता है ना तो उसके अंदर आ जाती है चीजें।
1: करेक्ट। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए, हालांकि ये मुद्दे में तो नहीं था लेकिन मैं फिर भी अब सवाल आ रहा है तो पूछ लूं आपसे। हम कॉन्फिडेंस जैसा वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कई ऐसी कंट्रीज है, कई ऐसे समाज है, सोसाइटीज है जहां पे कॉन्फिडेंस जैसी चीजों पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। वहां पे उनकी परवरिश, उनका माहौल ऐसा रहता है कि सभी के लिए काफी इक्वल जैसी चीजें होती हैं, तो वो इतने फ्रेंडली होते हैं कि वो जेन्युइनली मतलब अपने अंदर हमेशा ही अपने पे विश्वास करते हैं कह सकते हैं। अब चाहे उसको आप कॉन्फिडेंस का नाम दो या कुछ और कह के फिर उसको कॉन्फिडेंस का नाम दो, बट मुझे लगता है कि शायद अगर हम माहौल ऐसा बनाए जहां पे कॉन्फिडेंस अलग से लाने की और भरने की जरूरत ना हो, जहां पे हर शख्स अपने पे डिपेंडेंट हो, अपनी वर्थ समझे, अपनी वैल्यू को, तो मुझे लगता है वहां कॉन्फिडेंस जैसे शब्द की फिर जरूरत नहीं रह जाएगी। क्या कहना आपका?
2: सर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस पर। मैं बस यही कहूँगी कि हाँ, कहते हैं परवरिश के ऊपर भी डिपेंड होता है, लेकिन मैं कहूँगी मान लीजिए सर एक हमारी फैमिली है जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा रोक टोक है, बहुत सी चीज़ें, हम ऐसा नहीं है कि मैं ही फेस क्यों, काफ़ी लोग मैं तो फिर भी फेस नहीं क्यों, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मैं आज यहाँ पर हूँ तो मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि अगर मैं, मेरी तो ये स्टोरी रही है, मैं बहुत छिप करके अपनी लाइफ इंजॉय की हूँ। मेरी लाइफ में मतलब जो पोएट्री की स्टार्टिंग मैंने की है वो एक छिप करके की है, तो उसके बाद तो फर्स्ट टाइम तो नहीं बताया, लेकिन सेकंड और थर्ड टाइम के बाद मैंने मम्मी को बताना शुरू किया। फिर भी पापा को नहीं पता था तो भी मम्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया
1: है। किसी के पापा को कुछ नहीं पता होता है। ये सिर्फ आपका नहीं, ये जग का मसला है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है
2: ये। फिर मम्मी ने वहां से सपोर्ट करना शुरू किया। इवन आज भी मम्मी कहीं ना कहीं अगर मैं प्रोग्राम में जाती हूँ, मैं लेट नाइट आती हूँ या फिर कहीं ज्यादा दूर होता है, फिर भी कहीं ना कहीं किसी रिलेटिव का कॉल आ गया, आप भेजती हो, ऐसा होता है वैसा होता है, कहीं ना कहीं मम्मी आज भी सुनती है कि हाँ आप ऐसे करते हो वैसे करते हो। फिर भी मम्मी बाद में मेरे को डांट देती है, लेकिन फिर भी मम्मी कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करती है, क्योंकि मम्मी को पता है, आई थिंक मम्मी को पता है कि हाँ बेटी मेरी ऊंचाइयां छुएगी, उसके अंदर है।
1: और फिर जो भी कर रही है वो आप इतनी समझदार हैं कि अपना अच्छा बुरा सब आप जानते हैं।
2: जी सर, ये तो सर कॉन्फिडेंस की बात करें तो आपने कहा ना कॉन्फिडेंस खुद के अंदर, सर उस पर मैं बस एक ही चीज कहूंगी, जैसे कि हम फैमिली में हर जगह कॉन्फिडेंस का वो नहीं होता, लेकिन हम खुद को डेवलप करना होता है। तो सर एक शायरी के तौर पर मैं कहना चाहूंगी, खुद पर विश्वास रखे बिन कभी मंजिल हासिल नहीं होती है। सर सपोर्टिव तो किसी की फैमिली नहीं होती है, खुद करना पड़ता है। खुद पर जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपकी फैमिली भी विश्वास नहीं कर पाएगी, कोई नहीं विश्वास कर पाएगा।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी पर कहना है, खुद पर विश्वास रखे बिन कभी मंजिल हासिल नहीं होती, बिन लड़े बिन डटे लोगों में तुम्हारी बात नहीं होती, लोगों में तुम्हारी बात नहीं होती। कर जो करना चाहते हो मंजिल हासिल तुम, तो सुनो उठो करो और दिखा दो, कर सकते हो हर पार वो दरिया तुम, जो कभी किसी ने तुमसे उम्मीद भी नहीं की, रोकर और पछता कर मेहनत रंग नहीं लाती, बिन डटे बिन लड़े लोगों में तुम्हारी बात नहीं होती, बिन डटे बिन लड़े लोगों में तुम्हारी बात नहीं
1: थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। मुझे हरिवंश राय बच्चन साहब की वो पंक्तियां याद आ गई,
2: लहरों से डर कर
1: नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
2: जी सर।
1: मैं अगर लिखावट की बात करूं, चूंकि आप एक कवित्री हैं, पहली बार कब लिखा था?
2: सर मैं वैसे तो पोइट्री थर्ड स्टैंडर्ड से ही लिखती हूं, ऐसे त्रुटियों के साथ लिखती थी, कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, जो लिखती थी बस फ्रेंड्स को सुनाना शुरू कर देती थी, और फ्रेंड्स भी मेरी सुनना नहीं पसंद करती थी क्योंकि उस वक्त मैं हकलाती थी। जैसा कि मैंने बताया 8th क्लास के बाद से थोड़ा सा मेरे अंदर वो चीज़ चेंजेस आए हैं, तो फ्रेंड्स भी कहती थी हाँ ठीक है, जो क्लोज फ्रेंड्स थी वो थोड़ा बहुत ठीक है करके किसी तरह दिल पे पत्थर रख के सुन लेती थी। तो मैं थर्ड स्टैंडर्ड से ही लिखती थी, लेकिन मेरा मंचन शुरू हुआ है 12th के बाद से।
1: ओके।
2: जी सर, 12th के बाद से मेरा पहला कंपटीशन मैं जो मैंने आपको अभी शायद बताया कि मैंने छिप करके अपनी जो जर्नी शुरू की है कवित्री लाइन की, वो छिप करके शुरू की है।
1: ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, छिपकर कैसे होता है भाई, हम भी कर ले कुछ शुरुआत अपनी छिपकर।
2: जी जरूर सर। दैट एक्चुअली मैं एक बार मतलब मैं SSC 12th के बाद मैंने SSC की तैयारी शुरू की थी
1: जी।
2: तो मैं कोचिंग जाती थी, इनोवेशन क्लासेस, सुधांशु सर की कोचिंग है, इनोवेशन क्लासेस जाती थी। तो वहाँ पर मेरे कोचिंग का टाइम था 3 से 6। तो सर मैं जाती थी और रास्ते में एक बार ऑटो से मैं जाती थी, रास्ते में जाते वक्त एक बार मैंने एक पोस्टर देखा, वहाँ पर टैलेंट शो हो रहा था, वहाँ पर पोएट्री का भी कॉम्पिटिशन था। तो सर मैंने देखा, मैंने ऐसे रैंडम फोटो क्लिक कर ली और मैंने उसके बारे में लेकिन सोचा नहीं कि मैं कभी पार्टिसिपेट करूँगी। एक हफ्ते पहले मैंने, जिस दिन था उसके एक हफ्ते पहले, बट जिस दिन वो कंपटीशन था उस दिन रैंडम मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यार आज तो कंपटीशन था, चला जाए क्या। वो भी टाइम ओवर होने वाला था, वो शो सिर्फ और सिर्फ 5 बजे तक था, टाइम ओवर होने वाला था और मैं डरी हुई थी, मैं समझ में नहीं आ रहा था करूँ या ना करूँ। जस्ट मैं अपनी कोचिंग पहुंचने वाली थी, उसके जस्ट थोड़ा पहले ही मैंने यू टर्न लिया, वो शायद मेरी लाइफ का ही यू टर्न था। सर मैंने यू टर्न लिया और नाका इधर है, अगर नाका एक साइड है तो अयोध्या उसकी जस्ट अपोजिट
1: में है, राइट।
2: सर मैं पूरा अयोध्या घाट के पास तक गई थी, एक जगह थी वहां पर मैं गई थी और वहां पर कंपटीशन था और कंपटीशन का लास्ट टाइम चल रहा था, 2 पार्टिसिपेंट सिर्फ बचे हुए थे और लिस्ट में दूर दूर तक मेरा नाम नहीं था, क्योंकि जब मुझे ही नहीं पता था कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी तो वहाँ के सर को क्या ही पता होगा।
1: करेक्ट।
2: तो सर वहाँ पर मैं गई और बहुत रिक्वेस्ट किया, अपना नाम मैंने वो किया। उसके बाद फिर मैंने, मुझे खुद आज बिलीव नहीं होता है कि कैसे हुआ, लेकिन लास्ट पार्टिसिपेंट्स मैं थी और फर्स्ट प्राइज मैंने पाया था।
1: वाह, इसे कहते हैं नीचे से टॉप करना, लेकिन नीचे से आपने ऊपर जाके टॉप किया है।
2: यस सर,
1: ये पहली बार सुना है।
2: ये तो है सर। तो सर वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं वहां पर प्राइज मिला था मुझे और मैं छिप करके, जैसा कि मैंने बताया छिप करके, सर यहाँ पर छिप करके वर्ड यही आया है।
1: अरे बड़ा इंटरेस्टिंग
2: कि मैं, यस सर, सर छिप करके वर्ड यहाँ से आया है कि मैं जस्ट जब कोचिंग से मैंने बताया यू टर्न मैंने लिया
1: जी।
2: सर मैंने बताया खुद को भी नहीं पता था मुझे, तो जब मुझे खुद को नहीं पता था तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी किसी को नहीं पता, घर वालों को भी किसी को नहीं पता,
1: जाहिर है
2: घर वालों को तो पसंद भी नहीं था। इवन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी सर, मेरी टीचर्स बहुत परेशान थी, जब PTM होता था मेरी शिकायत कहीं नहीं आती थी कि बच्ची का मार्क्स कम आता है या बच्ची बोलती, कुछ नहीं, सिर्फ एक शिकायत आती थी, मेरी मैम थी, मैम हमेशा मम्मी से यही कहती थी, बिटिया बहुत लिखती है, पोयम लिखती है और ला करके पूरे क्लास को डिस्टर्ब करती है।
1: टॉर्चर।
2: सर बस वही एक शिकायत आती थी।
1: अच्छा।
2: तो जब मैं वहां से ट्रॉफी प्राइज लेकर के, जब मैं घर वालों को तो पता नहीं था, तो मुझे दिमाग में ये था कि मुझे इस रोड पे कोई देख लिया तो मुझे मेरी वाट लग जाएगी, मैं कैसे क्या करूंगी। प्राइज मिला था वो खुशी से कहीं ज्यादा मेरे अंदर डर था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं कोचिंग पहुंची, कोचिंग वाले भी डर गए थे कि लड़की, और बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी।
1: अच्छा।
2: कोचिंग सर लोग पूछे कि इतनी बारिश में तुम आई, तुम कोचिंग ही निकली थी, तुम घर से ही आ रही हो, आखिर क्या। कई सवाल थे सर उस टाइम पे, निगेटिव क्वेश्चंस भी थे, पॉजिटिव क्वेश्चंस भी थे, लेकिन जब मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दी, बस मैंने प्राइज दिखाया सर को और मैंने सर को बोला कि सर मैं पोइट्री कंपटीशन में गई थी, सॉरी सर मैं कोचिंग के टाइम गई, लेकिन सॉरी सर मैं पोइट्री कंपटीशन में गई थी और ये मैं फर्स्ट प्राइज लाई हूँ, सर मैं बहुत ज़्यादा डरी हूँ, सॉरी सर। मैं ये सब भूल करके सर को पहले वो की, फिर सर ने पानी नहीं पिलाया, फिर सर ने बोला कि ओके फाइन, फिर मैं घर गई। लेकिन सर आप यकीन नहीं मानेंगे, छिप करके वर्ड यहीं से आया कि मैं वो प्राइज फर्स्ट आने के बाद भी, लोग फर्स्ट प्राइज पाने के बाद घर में उछल जाते हैं, मैं फर्स्ट प्राइज लाने के बाद भी उसको छिपाना पड़ा मुझे,
1: छिपाना पड़ा। वाओ।
2: क्योंकि घर में पता नहीं था,
1: नहीं
2: और मैं घर में बताते तो फिर क्या क्वेश्चन आते, कैसे गई, क्यों गई, क्या पता आगे रोक ना दिया जाए, टोक ना दिया जाए, कैसे क्या होगा, तो मैं छिपाए रखी। फिर जब एक बार कॉल आई, जैसा कि मैंने बताया मेरा कवि सम्मेलन का पहला मंच था मतंग के राम, तो वहां पर सर मतंग के राम वहाँ से मेरे घर के पास एक स्कूल है शुभम सर का, सर से ऐसे बातचीत होती थी तो उन्होंने बताया कि मेरे मामा का एक, तुम पोएट्री लिखती हो, मेरे मामा की एनिवर्सरी आ रही है, वो कवि सम्मेलन करा रहे, बहुत बड़े कवि हैं, तो आर के तिवारी सर, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो। मैंने कहा भैया करेंगे कैसे, तो उन्होंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कराया, तो कॉन्टेक्ट आया, सर से बातचीत हुई, तो मेरा सबसे पहला जो शो था, मेरा पहला जो कवि सम्मेलन था वो था मतंग के राम में।
1: मतंग के राम में,
2: यस सर। तो जब वहाँ, तो वहाँ के लिए तो मैंने घर में बताया कि मम्मी एक बड़ा शो है, ये है वो है, पापा को पसंद नहीं रहता है, लेकिन फिर भी पापा कहते हैं चलो ठीक है बिटिया तुम्हें पसंद है चलो चलते हैं,
1: चलो देखते हैं। वाओ,
2: तो ये बहुत ही अच्छी चीज थी, तो इसे कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कहेंगे। तो पापा ने मेरे पसंद ना हो करके भी उसको एक्सेप्ट किया है, तो ये बड़ी चीज थी मेरे लिए। तो सेम वो वही चीज मैं रिलेट करूंगी अपनी कवि सम्मेलन से, कि सुबह से शाम तक का मेरा प्रोग्राम था, रात इवन हो गई थी, रात के 9-10 बज गए थे, वो मेरा पहला कवि सम्मेलन, मैं भी डर रही थी, पहला कवि सम्मेलन रात के 10, घर वाले सपोर्ट भी नहीं करते, और घर वाले कहेंगे सुबह से तुम रात तक जाओगी, अगर मैं इस जर्नी में फैमिली अलाउड भी कर दी तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा सुबह से शाम तक नहीं जाना है। अभी हाल ही में मैंने दूरदर्शन पर प्रोग्राम किया है वंस मोर सीजन 3 में, तो वहाँ पर मेरी मम्मी लोग गई थी, और पापा भी दूर दूर तक जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं पड़ोस में ही, पड़ोस कहेंगे लेकिन फिर भी काफी दूर है अयोध्या यहाँ से, बाइक से मेरे पापा साथ में आए हुए हैं, मेरे पापा के साथ में इतनी दूर से बाइक से आई, तो पापा की हेल्थ इश्यूज होने के बाद भी पापा इतनी दूर ले करके आए।
1: सही बात है।
2: तो अभी पापा का मेरी ये जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और हर एक को एक जरूर कहूंगी, जैसा कि मैंने पंक्ति पढ़ी थी, खुद पर विश्वास रखे बिन कभी मंजिल हासिल नहीं होती, बिन डटे बिन लड़े लोगों में आपकी बात नहीं होती, तो मैं बस यही कहूंगी कि आप खुद पर विश्वास रखिए, बाकी घर वाले लोग कहते हैं ना सर, ये एक लाइन बहुत आसानी से लोग कह देते हैं, मेरे घर वाले सपोर्टिव नहीं है, मैं उन सबसे सवाल करूंगी, क्या आप खुद सपोर्टिव हैं, क्या आप खुद सपोर्टिव हैं?
1: बड़ा सवाल है, सही बात है,
2: क्योंकि लोग कह देते हैं बहुत आसानी से मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आज एक स्टेज पर हैं उनसे पूछिए क्या उनके घर वाले सपोर्टिव थे?
1: नहीं,
2: कहीं नहीं थे,
1: सच में
2: कोई नहीं था, लेकिन आज वो लोग इस स्टेज पर क्यों पहुंचे? क्योंकि, और आज भी आप देखोगे ना कि बड़े बड़े स्टार्स भी होते हैं ना, तो अपनी फैमिली मेंबर्स किसी को लाते हैं स्टेज पर तो बड़े उससे लाते हैं और फैमिली वाले खुश होते हैं, लेकिन किसी भी स्टार को आज आई थिंक मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये कहूंगी, कोई भी स्टार ऐसा नहीं है जिसकी फैमिली सपोर्ट की हो और आज वो मंच पर है तो उसकी फैमिली खुशी से ना आ रही हो, बिकॉज वो स्टार कहां से, उसकी फैमिली को कैसे मनाए? ऐसा नहीं है कि आपसे रिक्वेस्ट करके मनाए, उसने पहले खुद पर विश्वास किया, हमें पहले खुद पर विश्वास करना चाहिए, बाकी फैमिली, फैमिली आप खुद को सपोर्ट कीजिए, कहीं से करिए लेकिन आप खुद को सपोर्ट कीजिए, बाकी फैमिली तो आपको करेगी। आज मेरे पापा बहुत कॉन्फिडेंटली सर कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, वो शायद लोग कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा हंसता मुस्कुराता चेहरा होता है वो अंदर से रो जाता है, लेकिन सर मुझे उस दिन सबसे अच्छी रियल वाली स्माइल मेरी अंदर से तभी निकलती है, वो उस टाइम निकल जाती है कि मेरे पापा लोगों से कहते हैं मेरी बिटिया भी लिखती है, मेरी बिटिया कवित्री है, और मेरी बिटिया समाज सेविका है। पापा के साथ एक बार मैं होली सम्मेलन, होली मिलन समारोह था, तो वहाँ पर कई ओल्ड लेडीज थी मेरे घर के थोड़ा सा और आगे पर, एक संस्थान की तरफ से मैं गई थी, संस्था की तरफ से मैं गई थी, तो वहाँ पर लोगों को साड़ियाँ बांट रहे थे, कपड़े बांट रहे थे, तो मैं पापा के साथ गई थी, पापा को बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी पापा को कि मेरी बिटिया समाज सेविका है, तो पापा लोगों से जब बोलते हैं कि मेरी बिटिया कवित्री है, मेरी बिटिया समाज सेविका है, मेरी बिटिया आकाशवाणी में है, और आज बोल रहे हैं कि मेरी बिटिया दूरदर्शन में, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने खुद को सपोर्ट किया। तो मैं लोगों से यही कहूंगी कि आप लोगों को सपोर्ट कीजिए, आप खुद को सपोर्ट कीजिए, बाकी फैमिली आप कीजिए, तो एक बार आप अपने आप को एक मौका दीजिए, उसके बाद वो हो जाएगा।
1: चलिए, तो भाई आप खुद को जरा सपोर्ट करिए, और हम 5 मिनट का पूरा वक्त देते हैं और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक भी लेते हैं। आने के बाद मिस शिवानी श्रीवास्तव से हम बात करेंगे, जो कि अपना लकब लगाती हैं सहज, बहुत ही सहजता से फिलहाल अभी तक बात हुई है, आगे की कुछ कठिन प्रश्न भी हम पूछने वाले हैं, लेकिन उसका कितना सहजता से आंसर मिलता है ये तो खैर म्यूजिकल ब्रेक के बाद जानेंगे। सुनते रहिए अपना 89.6 FM गोंडा शहर की तरफ। गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। अजी, म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं शाम के शो गोधुली में। और आज हमारे साथ हमारे पड़ोस के नगर यानी अयोध्या से आई हुई हैं कवित्री शिवानी श्रीवास्तव सहज। एक बार वापस से आपका हम स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: जी शिवानी, चूंकि आपने बताया, चूंकि आप कवित्री भी हैं और आप दूरदर्शन और आकाशवाणी में आप बतौर संचालिका भी हैं उसमें, इसके साथ ही साथ आपकी एक बुक भी पब्लिश हुई है।
2: यस सर।
1: जी, जिसका नाम है एक कलम बेटियों के नाम, जिस पर हम अभी आएंगे। लेकिन उससे पहले हम नाटक से जुड़ी कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि विधा बहुत अलग है। एक कविता लिखना सही है, लेकिन नाटक लिखना काफी अलग है।
2: जी सर।
1: ये कॉम्बिनेशन कैसे शिवानी में दिख रहा है, ये हम जानना चाहेंगे।
2: जी सर। सर मैं कहूंगी कि जैसे कि मैं थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करती हूँ लोग चीजों को, कि मतलब क्या चीजें हो रही हैं अपने शहर में। जैसे मेरे घर के सामने एक लेडी रहती हैं, एक दीदी रहती हैं, तो उनकी शादी वगैरह नहीं हुई, उनकी फैमिली नहीं है, तो मैं उनके लिए जो चीज करना चाहती हूँ उनके लिए है, या ऐसे किसी इंसान को देखती हूँ और उनके लिए जो चीज करना चाहती हूँ, और वो मैं इमेजिन करके कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, यार वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं एक नाट्य के तौर पर डाल देती हूँ।
1: वाओ। पहला नाटक कौन सा था?
2: सर पहला नाटक तो था, मैंने उन्हीं पर लिखा था।
1: मतलब आपका जो ऑब्जर्वेशन।
2: यस सर। कि एक छोटी सी बच्ची, मतलब तब मैं बहुत छोटी भी थी, तो मैं ये अपने आप को इमेजिन करके लिखी थी कि मैं, मतलब मैंने किस तरह मतलब उनको की हेल्प किया, हालांकि हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि वो उनकी हेल्प करना बहुत बड़ा टास्क है। मेरे पापा ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, बहुत ही ज्यादा हेल्प किया, इवन उनका मकान वगैरह बना करके दिया, सब कुछ किया, बहुत ज्यादा ही टास्किंग है, लेकिन फिर भी मैंने जो इमेजिन किया था उस तौर पर बहुत अच्छा था। अगर वो उस हेल्पफुल होती तो शायद आज मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता।
1: राइट।
2: तो सर मैंने उनको लेकर के लिखा था कि एक छोटी सी बच्ची, मतलब जो कि सामने देख रही है, लोग हेल्प नहीं करते हैं। मैंने ये दिखाया है नाट्य में कि एक छोटी सी बच्ची, लोग जिसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं उसकी हेल्प करना चाह रही है, तो उससे इंसान को जो जिसकी हेल्प वो करना चाहती है, वो लड़की बहुत ही ज्यादा ऐसी है कि मतलब लोगों को डांटती है, लोगों से बात नहीं करती है, थोड़ी सी चिड़चिड़ी है, तो उसकी कोई हेल्प नहीं करता, इवन उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता है। तो एक मतलब उसकी फैमिली भी, बच्ची की फैमिली भी मना करती है कि उससे बात नहीं करने के लिए, लेकिन फिर भी वो हेल्प, उसके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, ये नीडी है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो बच्ची हेल्प करती है कैसे, कि उसको मतलब वो खुद 3rd-4th स्टैंडर्ड में हो करके जो दीदी है उनको पढ़ा रही है, उनको पढ़ा रही, उनको पहले मोटिवेट कर रही है, उनको मोटिवेट करने के बाद पढ़ा रही है, पढ़ाने के बाद उनको मतलब इतना ज्यादा कर कि वो ज्यादा तो नहीं पढ़ा सकती, खुद से वो नहीं कर सकती बहुत ज्यादा, तो वो जो पॉकेट मनी उसको मिलती थी, उस पॉकेट मनी से उनको पेंसिल, पेन, कॉपीज वगैरह दिलाना, ये सब करती थी। और धीरे धीरे करके मतलब उसने ये किया है कि आज वो जो दीदी है वो खुद कई बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी। उसने मतलब उनको इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया है, इतना ज्यादा पढ़ा दिया है कि वो आज लोगों को पढ़ाना शुरू कर दी, लोगों को व्यापार चलाना उसने सिखाया और वो आज अपनी खुद की वो है और आज लोग उनसे हेल्प, आज वो लोगों की हेल्प कर रही है। एक नीडी थी तो ये एक मेरी इमेजिनेशन थी कि मैं लोग उनको इतना ज्यादा करूं, उनके लिए ये करना चाहती थी, मैं उनको पढ़ाऊं ताकि वो आगे चल के, क्योंकि सर एक कहता ना कि बिजनेस आप चाहे जितना खोल लीजिए, आप बिजनेस मान लीजिए मेरी सेकंड जो थी था ये ज्यादा ही वो टीचिंग की तरफ था, सेकंड वाला जरूर शेयर करना चाहूंगी। सर सेकंड जो मेरा था कि वो तीन भाई थे जिसमें से होता नहीं है कि आपसी में भाइयों में नहीं बनती है प्रॉपर्टी के लिए ये वो, तो एक भाई बहुत ज्यादा अमीर थे, बीच का जो भाई था वो मिडिल क्लास था, छोटा भाई जो था बिल्कुल बहुत ज्यादा ही पुअर था। लेकिन वो बार बार पुअर होने की वजह ये थी क्योंकि जो बड़ा भाई था वो कहीं ना कहीं अपने भाई को कामयाब नहीं होने देना चाहता था, तो इस वजह से छोटे भाई जो भी बिजनेस स्टार्ट करता था उसको कहीं ना कहीं वो बंद करवा देते थे, वो इतने ज्यादा पावरफुल भी थे कि छोटे भाई को बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करने देते, जैसे ही वो स्टार्ट करता था बंद कर देते थे, जैसे ही वो स्टार्ट, वो चाहे शॉप हो चाहे जो भी व्यापार वो सब बंद कर देते थे। लेकिन फिर एट लास्ट उनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट किया, उनकी वाइफ ने एक तरीका बताया कि आप क्यों ना टीचिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ज्ञान जो है ना वो कोई नहीं वो कर सकता सर। आप पढ़ा रहे हो, आप अगर पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो ना तो सर एक बच्चे के मन में अगर आप एक टीचर के तौर पर उतर आए तो सर उस बच्चे को चाहे जितना कोई समझा ले कि वो टीचर बेकार है, वो बच्चा नहीं मानने वाला फिर।
3: बिल्कुल सही।
2: तो इसे बेहतर टीचर, एक बेस्ट टीचर के तौर पर वो जाने जाने लगे और इसके करते करते फिर मतलब बच्चों को भी, उसके बड़े भाई ने बहुत ज्यादा बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मतलब किया था अगेंस्ट उसके, खड़ा किया था कि हाँ मतलब वो अच्छे नहीं है, उनके यहाँ ये होता है वो होता है, बहुत विरोध किया। लेकिन फिर भी बच्चे, अब भाई वो अच्छा पढ़ाते थे तो भाई टीचर्स हो, अरे चाहे स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स सब तो वो थे कि हाँ बहुत खुश थे कि हाँ भैया अच्छा पढ़ाते हैं तो हम पढ़वाएंगे, ये रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। हर माँ बाप को क्या चाहिए, बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो और बच्चा अच्छा हो, बच्चों के व्यवहार में भी बदलाव आने लगे थे, वो ऐसे टीचर थे। तो वो भाई चाहे जितना विरोध कर लिए लेकिन वो आखिरी में हार गए कि टीचर से पंगा नहीं ले सकते, सारे व्यापार बंद कर सकते हैं लेकिन ये नहीं बंद कर सकते।
3: क्या बात है।
2: तो ये तो था और ये शायद सच्चाई भी है।
3: बिल्कुल।
2: कि टीचर के बाद फिर टीचर से पंगा कोई नहीं ले सकता है, गुरु तो आखिर गुरु ही होता
3: गुरु
2: है।
3: गुरु ही होता है, बेशक सही बात है। वो कौन सा वक्त था जो लाइफ में बड़ा चैलेंजिंग लगा हो और जिससे निकलने में काफी स्ट्रगल भी किया हो लेकिन फाइनली आपने उसे कर लिया हो?
2: जी सर जरूर, मैं वो जरूर शेयर करूंगी। आई थिंक कि वो दौर हर किसी के उसमें आता है, हर किसी को फेस करना पड़ता है। सर मैं स्कूलिंग के बाद, मैंने बताया कि साकेत डिग्री कॉलेज से मैंने बीए कर रखा है। सर बीए 3 साल का था, मैंने फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं कर पाई, नई नई थी, ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाई थी। बट सेकेंड ईयर में मैंने एनुअल फंक्शन होता है सर, कॉलेज में भी एनुअल फंक्शन था, वहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम करवाया था, मैंने बताया कि आप, मैं नाट्य लिखती हूँ, मैंने एक नाटक लिखा था तो उसमें मैंने उसको मैंने कॉलेज में, साकेत डिग्री कॉलेज में कराने की कोशिश की थी और किया भी था। और वहाँ वो मेरा बहुत ही ज्यादा लाइफ का शायद सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेज था, बिकॉज एक कहता है ना कि स्कूल में बच्चों को गाइड करना और डिग्री कॉलेज में बच्चों को गाइड करना बहुत ही बिल्कुल अलग होता है,
3: बिल्कुल
2: और बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है, और पढ़ाना तो अलग, और अगर प्रोग्राम के लिए कहो तो वो और ज्यादा, वो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग था सर कि मैंने तो उस वक्त सोचा था कि मैं कान पकड़ रही हूँ, दोबारा नहीं कराऊंगी
3: डिग्री कॉलेज के बच्चों के।
2: यस सर, क्योंकि सर मैं भी सेम एज में ही थी,
3: बिल्कुल
2: मैं भी सेम एज में थी, कुछ जो साथ में बच्चे थे वो कुछ हमारे सीनियर थे लेकिन साथ का कोई नहीं था, सारे अननोन थे। मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये था कि सबके सब अननोन थे, अननोन से पहले फ्रेंडशिप करना फिर उसमें ढालना लोगों को, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। तो मेरा ये होता था कि मैं अगर टाइम बता दूं कि मुझे 10 बजे सभी लोग फील्ड में आ जाइएगा, कॉलेज पहुंच जाइएगा, हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, और लोग 10 बजे ना पहुंच के 11:30 बजे आते थे, और वो 11:30 बजे तक पहुंचाना भी बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि मैं 11:30 बजे सर वो कैसे आते थे कि मैं जब भी घर से निकलती थी ना, मतलब मैं सारा काम निपटा करके जल्दी जल्दी 9 बजे मैं घर से निकलती थी, घर के बाहर कदम रखते ही मेरा फोन ऑन हो जाता था, कॉल्स स्टार्ट हो जाती थी।
3: okay.
2: और मैं एक को नहीं, उस टाइम पे 15, हमारा ग्रुप था 15 लोगों का, सारे 15 को कॉल करके बुलाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है।
3: बिल्कुल।
2: तो सर सबको कॉल करना, सबको बुलाना कि आप टाइमली आओ आओ आओ। और डिग्री कॉलेज के अंदर एंट्री करने के बाद, फील्ड में पहुंचने के बाद, वहां भी वेट कर रही हूं मैं 1-1.5 घंटे, वो भी लगातार कॉल करना ही पड़ेगा सर, सबको कॉल करना। सर वहां पर मुझे डिफ़िकल्टीज ये फेस करनी पड़ी कि मेरे घर से निकलते ही और कॉलेज के अंदर पहुंचने के बाद भी मेरी कॉल चल रही है। तो मैं कॉल कर रही हूँ, कॉल मैं कर रही हूँ, बात मैं कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कितनों से बात कर रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ। लेकिन आप अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि एक से बात कर रही है, सुबह से रात तक बात ही करती है क्या? तो सर ये निगेटिव लोग तो निगेटिव ही सोचेंगे। तो सर ये चीज़ था कि मैं घर से निकलती थी और वहाँ तक जब कॉल चलती थी, लोग ये कहने लगे, मेरे घर शिकायत आने लगी। मेरा भाई एक दिन कह रहा है, तुम बड़ा कॉल पे बात करती हो, जो बात करनी है घर में किया करो, ये किया करो, वो किया करो। मैंने कहा अच्छा, मुझे डांट उंट पड़ने लगी। फिर उसके बाद जब मैं फिर कॉलेज पहुँची, कॉलेज में कुछ दिन बाद मेरी चर्चाएँ होने लगी कि लड़की बात करती है, लड़की इधर जाती है, लड़की उधर जाती है, ये करती है, वो करती है, बहुत सी चीज़ें, बहुत बहुत निगेटिव मुझे सुनने मिला। फिर मैंने उस टाइम तो कान पकड़ा था कि मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा बातें हो रही है, इसको मैं पॉजिटिव में कैसे चेंज करूंगी। वो मेरा बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फेज था। और इवन जो मैं जिसका मैं सपोर्ट ली थी, जो मेरे सीनियर जिनकी गाइडेंस में मैं खुद थी, वो भी मेरे लिए अननोन थे, और बाद में मुझे पता चला वो भी एक फ्रॉड थे। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था कि साकेत डिग्री कॉलेज में, जिनको मैंने खुद सोचा कि सर हैं, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ का टीचर हूँ। भाई डिग्री कॉलेज है, सारे डिपार्टमेंट्स के टीचर्स को हम लोग नहीं जान पाते
3: नहीं
2: हैं। उन्होंने मेरा सब्जेक्ट जानने के बाद अलग डिपार्टमेंट का बता दिया। और मैं भी तब बहुत ज़्यादा उतना मैंने दिमाग नहीं लगाया कि हाँ कौन है, पता करें तब वो करें, मैंने पता नहीं किया। बाद में कुछ दिन बाद जब थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हुई, उस टाइम पे सर मैं जल गई थी।

0: फिर उस टाइम पे मेरी जो साथ में एक लोग थे उन्होंने, अभिषेक श्रीवास्तव भैया, उन्होंने एक भाई के तौर पर मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। उन्होंने कहा कि आज से मैं गाइड करूंगा सर, ये वो। प्रिंसिपल जानते थे बहुत ही अच्छे से, प्रिंसिपल को लगा कि हाँ ये कर लेंगे, तब उनको मैसेज मिला। फिर प्रिंसिपल की कॉल मेरे पास आई, मैं तो कांप उठी थी कि क्या कहूंगी मैं, क्योंकि न्यूज़ मेरे पास पहले आ चुकी थी कि ये गड़बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी, क्योंकि एक लड़की पकड़ी गई थी तो बहुत बड़ा मतलब वो था। तो जब मेरे पास न्यूज़ आई तो मैं कांप गई थी कि प्रिंसिपल की कॉल आई मैं क्या करूंगी, लेकिन प्रिंसिपल ने इतने अच्छे से बात की सर ने कि ठीक है आप रिलैक्स करिए, लेकिन आप मुझे प्रूफ दीजिए कि आप जली हैं, इसके बाद ही आपका प्रोग्राम आगे प्रैक्टिस स्टार्ट हो पाएगी वरना नहीं होगी। फिर मैंने प्रूफ दिया, इतना ज्यादा डर हुई थी कि दो ही दिन बाद मैं खड़ी हो गई घर में। अगले दिन जिस दिन जली थी उसके अगले दिन मैं अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करके अगले दिन मैं घर में थोड़ा बहुत काम करना कोशिश किया। 3 दिन बाद मैं कॉलेज चली गई। घर में बहुत डांट पड़ी, लेकिन मेरे लिए डिफिकल्ट था सर कि नेगेटिव पॉइंट्स वैसे भी मेरी पाई जा रही हैं जो कि नेगेटिव नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझे गलत कहा जा रहा है। और फिर कहीं ना कहीं मेरे प्रोग्राम में गड़बड़ी भी, मैं कैसे क्या करूंगी, बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन फिर भी मैंने फेस किया। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि उस टाइम भी मैं फर्स्ट आई थी, मेरा प्रोग्राम फर्स्ट आया था। और फिर जब मैं, भाई नेगेटिव पॉइंट्स आ रही हैं, लोग बात कर रहे हैं, तो मैं लोगों को एक एक करके मैं नहीं बता सकती ना सर कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं कर रही हूँ, एग्जैक्ट मैं क्या कर रही हूँ। ये बात तो मुझे तब पता चली कि मेरे बारे में निगेटिव चल रहा है जब मैं एक साइबर कैफे पे गई थी, और साइबर कैफे पे जिस काम से मैं गई थी वो काम तो मैं करवा ही नहीं पाई आधे घंटे तक। साइबर कैफे पे मैं बैठी रह गई बिकॉज कॉल्स मेरी चल रही थी, और उस टाइम पे मैंने 8-10 कॉल तो की ही होंगी मेरा। उस टाइम भी मैं कोई प्रोग्राम वगैरह शायद कर रही थी, तो 8-10 कॉल तो की ही मैं। तो जो साइबर कैफे वाले भैया थे वो कहे, दीदी आप कितनों को वहाँ कॉल कर रही हो, मतलब मैं, आप जब से लगी हो तब से आपका सर नहीं दर्द होता? मैंने कहा बिल्कुल दर्द होता है। कह रहा है लेकिन दीदी एक बात बोले, बुरा मत मानिएगा। मैंने कहा क्या? तो कह रहा है कि यार अब तक तो मैं सोचता था कि आपका आखिर इतना खलियर बॉयफ्रेंड है कौन जो सुबह से शाम तक लगा ही रहता है, जब आप रोड पर निकलती हो तो आप बात करती हो। हमने कहा भाई असलियत ये नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, असलियत ये है कि मैं इतनों को हैंडल कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने अपनी चीज़ों को दिखाया, मैंने दिखाना शुरू किया कि मैं ये कर रही हूँ। उसके बाद से लोगों की थिंकिंग बदली, क्योंकि भाई वो बंदा निगेटिव पॉइंट्स अगर लोगों के साथ बैठ के बात करता फिर वो पॉजिटिव पॉइंट्स बताना शुरू किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत चैलेंजिंग फेस था कि मेरे घर वालों के दिमाग में भी लोगों ने डालना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बेटी गलत है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरे घर वाले सुने नहीं लोगों के और मुझे रोका नहीं। सुनना चाहे फिर भी घर में ये हुआ कि ये लास्ट है, पहला और लास्ट है, इसके बाद करना नहीं है तुम्हें। फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब मेरे रिजल्ट्स, फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर मैंने कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑनलाइन करना शुरू किया, फिर मैंने आकाशवाणी में अप्लाई किया, धीरे धीरे जब करना शुरू किया मतलब नॉर्मल चीज़ें कि इतना दौड़ भाग वाला नहीं, तब घर वाले कहा ठीक है। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में कदम रखा, सोचे नहीं थे यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करवाएंगे, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में भी फिर शुरू कर दिया। वो भी चैलेंजिंग था, लेकिन ठीक है, चैलेंजेस ही तो लाइफ को करते हैं, लाइफ में जो भी वो मिलते हैं।
1: बिल्कुल सही है, और वैसे भी कहते हैं कि अगर हाईवे पे बिल्कुल सीधा सा रास्ता हो तो जिंदगी बड़ी बोरिंग हो जाती है।
0: सही बात है।
1: सो चूंकि आपने बताया आपने एक बुक भी पब्लिश करवाया है, एक कलम बेटियों के नाम।
0: यस सर।
1: सबसे पहले तो बधाइयां इस बुक के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम चाहेंगे कि इस बुक के बारे में बताइए आप कि ये बुक आखिर बेटियों के कौन से कलम की बात कहती है, आखिर किस तरह की बात जो बेटियों के मन की है वो कलम में लिख के आ रही है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: जी सर, कहते हैं ना कि सर कोई कवि है तो अपने कलम के तौर पर सर जो बातें हम सिर्फ कवियाँ कवि कवित्रियाँ ही नहीं सर सबकी बात है, जो बोल नहीं आएगा कि मैं अपनी बातें कुछ कह नहीं पाऊंगी तो वो मैं एक पेज पर लिख करके दे दूँ। तो वही है, एक बेटी ही नहीं हर कोई यहाँ पर मेरी बुक में हर एक एज ग्रुप के लोग, लड़की हो चाहे लड़के हो, लोगों ने अपना दर्द एक कलम के थ्रू जिस तरह लाया है, इसीलिए कहा गया एक कलम बेटियों के नाम, लोगों ने अपने दर्द को कलम के जरिए निखारा है। ये एक थीम बेस्ड है मेरी जो बुक है सर, लोग आपने कई किताबें पढ़ी होंगी कि टॉपिक्स पर होती हैं, बट मेरी जो बुक है ये एक थीम बेस्ड है। आप गुड टच और बैड टच भी कह सकते हैं सर, लेकिन इसकी थीम है, कहा जाता है कि मेरे घर वाले बिल्कुल फ्रीडम दिए हैं, आप भी अपनी बहनों को फ्रीडम दिए हैं, कहीं भी बाहर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप उसको फेस कीजिए, आप उससे लड़िए, अगर आप वो

0: नहीं लड़ पा रही हैं तो आप उसके, अगर आपकी बहन आती है कुछ बताती है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो नहीं लड़ पा रही है तो आप उसके अगेंस्ट लड़ोगे,
1: बिल्कुल
0: आप उसका फेवर करते हो, ये चाहे पुलिस थाना चौक जो भी करना हो आप करते हो,
1: बिल्कुल सही।
0: लेकिन सर एक क्वेश्चन करूंगी, क्या सेम प्रॉब्लम अगर आपके रिलेटिव से होगी आपकी बहन को तो आप क्या करोगे? सर मेरी पूरी पोएट्री, सर मेरी पूरी थीम इसी पर है कि अगर हमारे रिलेटिव से हमें प्रॉब्लम होती है तो घर वालों का आंसर क्या होता है। मोस्टली घरों में पाया गया है कि जो पूरी बुक से हमारा निचोड़ निकलता है, तो जब मैंने लोगों से सवाल किया तो लोगों ने सिर्फ एक जवाब दिया कि मेरे घर वाले तो कहते हैं कि तुम उनसे मतलब मत रखो। क्या यहाँ से चीजें सॉल्व हो जाती हैं?
1: बिल्कुल नहीं,
0: यहाँ से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि वो चीज़ें तो आप, हम बेटियां हैं, हम सबको तो नहीं बताते हैं ना, एक किसी घर में किसी एक को बताते हैं, और वहाँ से भी अगर नेगेटिव आंसर मिल जाता है तो उस पर तो टूट जाएंगे ना, फिर तो हमें दूसरे से कहने की हिम्मत ही नहीं होगी। तो जब कहने की हिम्मत ही नहीं होगी तो फिर हम क्यों कहेंगे? और उसके बाद जब हम किसी से कहेंगे नहीं, क्योंकि एक प्रॉब्लम एक बार हो रही है, अगर उस पर स्टेप नहीं लिया जाएगा तो फिर कई बार होंगी, तो उसके बाद क्या रिजल्ट आता है उसी पर मेरी कविताएं हैं। सर इसमें सबसे छोटे बच्चे ने जिसने लिखा है वो है आरुषि श्रीवास्तव, 4th स्टैंडर्ड की है। सर उसने इस चीज को महसूस किया कि वाकई होता है ऐसी चीज,
1: मतलब 7-8 साल की बच्ची भी इस बात को महसूस करती है।
0: यस सर, कि हाँ रिलेटिव से प्रॉब्लम होती है। अब उसके घर में है या नहीं है ये तो मैं नहीं कहूंगी, कि उसके घर में है चीजें, लेकिन वो भी तो बाहर निकल रही है, स्कूल जा रही है, कहीं ना कहीं हर कोई फेस कर रहा है, तो उसने कहीं स्टोरी सुनी है या क्या है वो तो वो बता सकती है। सर इतना डीपली मैं नहीं पूछ सकती उसके, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ हो जाएगी।
1: मुझे लगता है उससे पूछने से कहीं ज्यादा ये हमारे और आप बड़े जो सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए एक सवाल है।
0: यस सर,
1: कि इतना छोटा बच्चा भी उस बात पे लिख रहा है।
0: यस सर, क्योंकि सर मैंने जो अंदाजा लगाया कि चीजें बचपन से शुरू होती हैं सर, अगर हम, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं कई महीनों से झेलता आ रहा है, और जब उसको कोई रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है तभी तो वो आज सुसाइड का वो सोच रही है। तो सर अब बचपन से चीजें आ रही हैं तो शायद वो बच्ची ने इसीलिए उसको महसूस कर लिया है, क्या है वो तो वो बता सकते हैं। लेकिन हाँ, और सर इसमें एक और अच्छी चीज है कि इसमें लड़कों ने भी लिखा है।
1: अरे वाह,
0: हाँ लड़के गलत नहीं होते, क्योंकि जिन लोगों ने लिखा है उसमें एक आध से तो मेरी बात हुई है, तो उन लोगों ने ये बोला कि हाँ मेरे भी फ्रेंड सर्कल में काफी लोग हैं, ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैंने खुद सपोर्ट किया है, तो ये लड़कों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। और जो लड़के अपनी फ्रेंड्स को, अपनी बहनों को इस चीज के लिए सपोर्ट करते हैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगी, बहनों को तो नहीं पता लेकिन मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप बहनों को सपोर्ट करते हैं।
1: करेक्ट,
0: क्योंकि
1: सही बात,
0: जब तक आप किसी एक को मात नहीं दोगे तब तक फिर रिलेटिव्स तो बढ़ते जाएंगे ना।
1: बिल्कुल सही,
0: तो इस वजह से आप जरूर सपोर्ट कीजिए।
1: बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि इसकी ये जो कविता आपने लिखी है आपके संकलन की इस बुक की, वो आप प्लीज हमारे श्रोताओं को पढ़कर सुनाइए।
0: जी जी जरूर सर। वो मासूम सी बच्ची स्पर्श और स्पर्श में फर्क समझ न पाई थी, आज फिर वह अपनों की हवस के दायरे में आई थी, वो भोली नादान जो गुजरा कुछ समझ न पाई थी, कच्ची सी उम्र में खुद से वह चिढ़ती जा रही थी। क्या कहूँ किससे कहूँ आखिर समझेगा कौन, इन सवालों में वह उलझती जा रही थी, आज फिर वह अपनों की हवस का शिकार बनती जा रही थी। समझ ना थी उसमें खेल कूद की उम्र में बेबस हो, पढ़ाई से अनभिज्ञ, बचपन में बचपना खो बड़पन वह दिखा रही थी, रिश्तेदारों के आने पर बचपन में खुशी से उछलने वाली बेटी आज उनसे खुद को छिपा रही थी, आज फिर वह अपनों की हवस का शिकार बनती जा रही थी। घर में शोर मचाकर रौनक लाने वाली बेटी आज माँ के आंचल में छिप रही थी, अपने दर्द को लबों पर लाने को वह तड़प रही थी, अपनी ही माँ से कहने को खुद को समझा रही थी, माँ डांटेगी मुझे गलत समझेगी, माँ क्या कहेगी, इन सवालों में वह उलझती जा रही थी। हिम्मत कर और बोल डाल, अंतर मन से आवाज ये आ रही थी, माँ से आप बीती बताने को हिम्मत वह जुटा रही थी, माँ को बताकर जीत पाने को वह छटपटा रही थी, धीरे धीरे अपनी बात रख माँ के मन को वह टटोल रही थी, सुन बात सब्र से उसकी माँ बिटिया को समझाई थी, तुम बिटिया हो सहना पड़ता है ये रिश्ते।

0: इन्हें हमें संभाल कर चलना पड़ता है। रिश्तों के आगे बिटिया की बोली माने लगाई थी वह बेटी है इस बात से बिटिया को वंचित कराई थी, वह बेटी है इस बात से बिटिया को वंचित कराई थी। सन बात माँ की, एक बार फिर वह टूट बिखर गई थी। माँ से अपनी हार की उम्मीद न लगाई थी। बातें सुन माँ की खुद को वह झकझोर रही थी। आज फिर वह अपनों की हवस का शिकार खुद को बना रही थी। लड़ना पाई लड़ाई खुद की। सर कहते हैं मोटिवेट वही करता है जो खुद डीमोटिवेटर रहता है, जो बहुत कुछ झेल चुका होता है। तो उस पर है, लड़ना पाई लड़ाई खुद की। दूसरों को लड़ने के सलीके सिखाने निकल पड़ी थी। दुनिया से जीत, घर में हारी बेटी, सोच सोच माँ की सिखाई सीख खुद को मजबूत बनाने चली थी। घर पहुँचते ही रिश्तेदारों से डर, आज फिर उनसे वह मुख फेर चली थी। दुनिया से जीत, घर में वह हार चुकी थी। माँ से लगी उम्मीद से टूट चुकी थी। डिप्रेशन जैसी बीमारियों को गले लगा मौत के पास वह आ चुकी थी। आज वह मासूम सी बिटिया, आज वह नन्ही सी प्यारी बिटिया मौत को गले लगा ली थी। काश कि उसके अपनों ने समझ दर्द उसका उसे समझाया होता। काश उसकी माँ ने समझ दर्द उसका साथ उसके लड़ा होता। रिश्तेदारों की छोड़ फिक्र, बेटे को तवज्जो दिया होता। सिर्फ किसी एक को मात दे साथ उसके लड़ा होता, तो आज शायद तुम्हारी आंखों में ये पछतावे का आंसू ना आया होता। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मतलब मैं इस पे अप्रिशिएट करने से कहीं ज्यादा एक गहरा प्रभाव, एक गहराई, एक बड़ा सवाल, एक सोसाइटी का डुअल फेस, या ये सवाल शायद मुझसे खुद का भी है और आपसे भी, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या हम और आप भी उसी घर में तो नहीं जहाँ पे अगर कोई हमारी बहन, हमारी बेटी इस तरह का शिकार हो रही है, तो क्या हम अपनी अभी भी रिश्तेदारी बचा रहे हैं? क्या हम अपनी इज्जत साख उसको दबाने में समझते हैं? या जो हम नारे लगाते हैं और अपने को एक सच्चा देशभक्त कहते हैं, क्या हम सच्चे भाई भी हैं? क्या हम सच्चे पिता भी हैं? और अगर हैं तो आखिर वो बेटियां कहाँ जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं, बस इन्हीं सब वजहों से। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने ऐसी बात को लिखा है जो कईयों घरों की कहानी है, मुझे लगता है ये बाहर नहीं आ पाती है
0: जी।
1: इस वजह से कि लोगों को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की फिक्र रहती है, एक ऐसी शान जो बहुत कुछ खो देती है और हासिल कुछ भी नहीं होता उसमें। और ये आपकी सोच और वो सारे कवि कवित्री जिन्होंने अपना अपना जो कुछ भी थॉट था, जो सोचा और कविताओं में पिरोया और एक बुक की शक्ल आ गई एक कलम बेटियों के नाम, मैं उन सभी को सलाम करता हूँ। और हर उस शख्स को जो इस वक्त सुन रहे हैं, उनसे यही सवाल कि क्या हमारे घर में तो ऐसा नहीं हो रहा है? मुझे लगता है कि समाज सेविका आप अलग से तो बहुत कुछ आपने किया होगा, लेकिन ये जो बात है एक बुक के जरिए किसी एक भी शख्स के दिल तक उतर जाने की, ये इससे बड़ी समाज सेवा कोई हो नहीं सकती है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: सो आपको दिल से दुआएं और बहुत सारी दुआएं कि आप लाइफ में जो कुछ चाहें अचीव करें, और साथ ही साथ आपकी ये बुक, आपकी ये लफ्ज जो ऐसे दर्दमंदों का कह सकते हैं उनकी जबां बने हैं, ये पूरी दुनिया में जाएं और लोग इसको समझ पाए।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: बिल्कुल, हम कामना करते हैं।
0: तो सर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी।
1: अरे
0: मैंने लड़कों के लिए भी कुछ लिखा है।
1: वाओ, क्या बात है, लड़कियों के लिए इतना जबरदस्त लिखने के बाद आपने कहा कि लड़कों के लिए भी कुछ लिखा है।
0: जी सर, क्योंकि आपने कहा ना मैं जेंडर पर नहीं जाता हूँ। सर जेंडर पर तो मैं भी नहीं जाती हूँ। मैं अगर कहती हूँ कि हर लड़कियां गलत नहीं होती, हर लड़कियां गलत नहीं होती, तो हर लड़के भी गलत नहीं होते। ठीक है, तो सर उस पर कहूंगी, लड़कों की जिंदगी देखने में आसान होती है पर जीने में नहीं। हम लड़कियां इसे जितना खूबसूरत समझती हैं, असल में उतनी खूबसूरत होती नहीं, असल में उतनी खूबसूरत होती नहीं। लड़के आजाद होते हैं घूमने के लिए पर आंसू बहाने के लिए नहीं। वे घूमते हैं जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, ऐश करने के लिए नहीं, ऐश करने के लिए नहीं। अक्सर कुछ लड़के घर छोड़ जाते हैं, आंखों को नम कर बैठते हैं, सपनों को आग लगा देते हैं, घर की जरूरतें पूरी करने के लिए, ऐश करने के लिए नहीं, ऐश करने के लिए नहीं। उसकी जरा सी गलतियों पर गालियों की बौछार कर दी तुमने, उससे उसकी सच्चाई पूछा भी नहीं। अंदर ही अंदर उसने आंसुओं का समंदर बना लिया, अंदर ही अंदर उसने आंसुओं का समंदर बना लिया, किसी से कुछ कहा भी नहीं।
1: क्या बात,
0: कितना दर्द है अंदर, कितना दर्द है अंदर, बयां भी कर सकते नहीं। घर जो दिखा दे आंसू तो कमजोर दिल का लड़का है का ठप्पा लगा देते हैं लोग, इसलिए

0: अक्सर आंसू को पानी की तरह पी जाते हैं वे, किसी से कुछ कहते भी नहीं, किसी से कुछ कहते भी नहीं।
1: धन्यवाद,
0: सैल्यूट टू ऑल बॉयज जो वाकई डिजर्विंग है।
1: बेशक जो सच में डिजर्विंग है उनके लिए डेडिकेटेड ये आपकी कविता। और बहुत ऐसी बातें थी जो शायद मैं खुद भी एक पुरुष होने के नाते महसूस कर रहा था, और इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं वो भी महसूस कर रहे हैं। एक सच्चे इंसान की निशानी यही होती है कि वो बायस्ड नहीं होते कि आप महिला हैं तो आप महिलाओं के बारे में बात करते हैं, आप पुरुष हैं तो पुरुष के बारे में। आप एक इंसान हैं और आपका तो सारा जहां है, कुदरत ने भी आपको बनाया, जानवर ना होते तो इंसान ना होते, तो आपको तो सबकी बात करनी भी होगी और सबको बचाना भी होगा।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत शानदार आज की बातचीत रही। मुझे लगता है अब तो घड़ी ने भी इशारा कर दिया है, लेकिन इतनी सारी बातें, और मैं अब चाहूंगा कि अपने संकलन की कुछ और कविताएं जो आप हम तक जरूर पहुंचाना चाहें उसको प्लीज पहुंचाइए, और उसके बाद फिर हम आपसे विदा ले लेंगे।
0: तो सर उस पर बस ये अपनी अंतिम कविता कहूंगी।
1: जी।
0: अभी आपने शादी की बात कही थी, तो मैं शादी पर यही कहूंगी कि हम लड़कियां कैसा वर चाहती हैं। आई थिंक मोस्टली लड़कियां ऐसा ही लड़का चाहती हैं।
1: अच्छा।
0: कि लड़का कैसा प्यार करे।
1: उस पे तो नहीं है ना घोड़े पे बैठ के आने वाला।
0: नहीं, सर।
1: बहुत सुना
0: नहीं, नहीं, सर। कैसा प्यार करे, सर कैसा प्यार करे लड़का। और मोस्टली कुछ लड़के मैंने देखा भी है कि कुछ लड़के ऐसा प्यार करते हैं कि एक लड़की को प्यार करते हैं लेकिन वो बयां नहीं कर पाते, और वो सच्चा प्यार करते हैं पर वो बयां नहीं कर पाते। तो उस पर कुछ लिखूंगी लड़के की साइड से। यहाँ भी मैंने लड़के की साइड से लिखा है, लेकिन एक लड़की की इच्छा है। सुन सुन सुन, मैं तेरे तन को नहीं तेरे मन को चाहता हूँ। एक लड़का लड़की से बताना चाहता है, सुन सुन सुन, मैं तेरे तन को नहीं तेरे मन को चाहता हूँ। मेरा दिल तेरे जिस्म पर नहीं तेरे दिल पर आया है, तेरे दिल पर आया है। सुन सुनना, आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ। आखिरी बताना चाहूंगी कि वो हर एक लड़की के हर एक चीजों से किस तरह प्यार करता है। अगर चश्मे मैं अपनी बात करूंगी कि मैं ऐसा ही लड़का चाहता हूँ, तो मैंने अपने तौर पर लिखा है कि मैं एक चश्मे वाली लड़की कैसा चाहती है।
1: अच्छा।
0: काश भाई चश्मा भी तो पसंद करना चाहिए ना, और कुछ पसंद
1: चश्मे वाले यहाँ पे कई लोग हैं।
0: जी। काश कि मैं तेरी आंखों का चश्मा होता।
1: वाओ।
0: काश कि मैं तेरी आंखों का चश्मा होता, इसलिए नहीं कि मैं तेरी निगरानी रखना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तेरी निगरानी रखना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तेरी आंखें कब रोती हैं और किसकी वजह से रोती हैं। मैं तेरे प्यारी आंखों में आंसू लाने वाले को उसकी नसीहत दिखाना चाहता हूँ। और सुन न पगली, मैं तेरा चश्मा बनकर तेरे हर एक आंसू रोकना चाहता हूँ। सुन न, आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ।
1: माय गॉड, क्या बात है। वाओ, मतलब कह सकते हैं कि उस बंदे की आपने बात बोल दी जो बहुत सारा सागर भर का प्यार करता है लेकिन कह नहीं पाता। और ऐसा एक नहीं, न जाने कितने सारे शख्स हैं।
0: जी सर, सर चाहते तो बहुत हैं, लेकिन जो हर एक चीजों से प्यार करे और वाकई प्यार करे तो वो शख्स होना चाहिए।
1: मतलब मुझे लगता है खैर इसको जिसको फील करना था उसने जरूर किया होगा, और स्पेशली वो बेचारे नहीं बल्कि वो ऐसे लोग जो समंदर तक रोक लेते हैं नहीं बोलते।
0: तो मैं कहूंगी बता दो, अब तो बता दो, क्योंकि हर एक लड़की चाहती है सही बंदा।
1: चलिए भाई, सुनने वालों को सुनने की चाहत है, तो अब बताने वालों की बारी आई है कि वो बता दे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, एक्सप्रेस करने से सच में चीजें और मजबूत हो जाती है, ये बात सच है। एंड लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, मैं इतना ही कहूंगा। बस एक सवाल और जाने से पहले कि बहुत शॉर्ट में बस एक वर्ड में आपको इसका आंसर चाहूंगा कि अगर आपकी जिंदगी पर एक किताब बने, शिवानी श्रीवास्तव यानी सहज की जिंदगी पर, तो उसका नाम क्या होगा, उसका टाइटल क्या हो?
0: ये तो मेरे लिए गिफ्ट होगा, जैसा कि एक टाइटल मुझे सहज मिल गया है ना, वैसा ही मुझे अब आपने बहुत ये अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं चाहूंगी कि सहज नाम से ही मेरी पुस्तक भी आए।
1: वाओ, क्या बात।
0: क्योंकि ये मेरे लिए अमेजिंग गिफ्ट होगा, अगर कोई हमारे लिए लिखता है तो बहुत बड़ी चीज होगी।
1: वेरी वेरी अमेजिंग, बहुत ही प्यारी बात कही आपने। और सहज ही नाम होगा अगर आपकी जिंदगी पर बनता, क्योंकि जिस सहजता से आपने पुरुषों की मन की बात, बच्चियों के साथ होने वाले व्यवहार सब कुछ बताया, सच में आप सहज हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि अयोध्या नगरी से गोंडा तक आने के लिए और इतना कीमती वक्त देने के लिए और इतने

0: जज्बात को दुनिया भर में पहुंचा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाकी आप सबसे जो मैंने बातें की उस पर आप गौर करें, अपनी बेटियों को बचाएं, अपने रिश्तेदारों को भी तवज्जो दें, बट साथ में पहले बेटियों की इज्जत है उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगी। और जो और लड़कों को भी, और समाज में निकलने के बाद जो लड़कों पर लोग पहले वो करते हैं, लड़कियों को ही डिफेंस करते हैं, आप लड़कियों को डिफेंस कीजिए, ऐसा नहीं है। अब ऐसा ना सोचिएगा कि हाँ कहीं हो रहा है तो मैं सबसे पहले लड़कों को ही डिफेंस करूँ, ऐसा भी नहीं है। आप सही और गलत पर डिफेंस कीजिए, मैं यही कहूँगी, सही और गलत पर डिफेंस कीजिए।
0: क्या बात है।
1: बाकी जो लव करते हैं तो उनके लिए तो सर ने कहा ही कि अब बताने का वक्त, सुनना चाहती हैं लड़कियां, बताने का वक्त आ गया तो आप बता दीजिए।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही बात,
1: बहुत धन्यवाद सर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद। आप बहुत बढ़िए, बहुत फलिए, बहुत फूलिए। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी शिवानी श्रीवास्तव सहज, जो कि अयोध्या नगरी से गोंडा तक आई, इस चैट बॉक्स पे आकर के फटाफट से लिख करके बता दीजिएगा कि आज का टॉक शो आखिर सुना आपने या दिल तक टच कर गया। सुंदर 89.6 FM गोंडा शहर की तरफ।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM।

0: और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 एफएम। अब गुना सुनेगा अपना एफएम।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
8: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल

0: टाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन आरओ वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी एचओबी और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत एमसीबी एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, डीएम आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9018353594 और 8072168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट ippbonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: अरे सुना
7: क्या,
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ,
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
10: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
11: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94509449499।
12: हे
4: Hey, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
7: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
7: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: मत जोड़िए मुझसे रिश्ता, मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते।
1: पुरानी जानकारियां तो कंपनियों को चाहिए होती हैं, मोहब्बत अपनी नई दास्तान लिखती है।

जाना। तो भाई हर दिन हर गाने का रूप बदलता है, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी जो कभी नहीं बदलती वो है आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 89.6 FM, जो हर दिन आपको एंटरटेन करती है, आपके पसंद की चीज़ें आपको बताती है, आपको सुनाती है और आपके पसंद के गाने आपके लिए पेश करती है और आपको भी मौका देती है अपने दिल की बात कहने का। तो बिल्कुल ऐसे माहौल में हर इंसान चाहता है कि हम भी कुछ ना कुछ बेहतर सा करें और कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाएं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, प्लेबैक सिंगर शांतनु मुखर्जी यानी कि शान का आज है बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे शान, कैसे हैं आप? और आपको बता दूं कि बचपन से हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है कभी कुछ कुछ भाषाएं समझने में, कभी कुछ भाषाओं में कॉन्वर्सेशन करने में। तो आज का दिन उसी समझने से जुड़ा है, यानी कि नेशनल ट्रांसलेशन डे है। वैसे आप बताइए कि आपने बचपन में कभी ट्रांसलेशन किया है? हमारे यहाँ तो घरों में जब भी कोई बड़े यानी कि दादा परदादा या कोई ऐसे ओल्ड रिश्तेदार जो काफ़ी पढ़े लिखे होते तो वो आते पहले ट्रांसलेशन ही कराने लगते थे और ऐसे ऐसे शब्दों का ट्रांसलेशन बोलते थे करने के लिए। और मेरे तो एक मतलब बाबा हुआ करते थे, वो आते थे तो कहते थे हरा पेड़ गिरा चर से ट्रांसलेट इन इंग्लिश, और मैं अभी तक चर की इंग्लिश नहीं जान पाई। अगर आपको आती है तो ज़रूर बताइएगा। वेल आप लोग को बता दूं आज का दिन ट्रांसलेशन को समर्पित तो है, लेकिन आपको बता दूं कि आज वेंसडे भी है और आज होगी अंताक्षरी। वैसे वेंसडे को गोंडा शहर की ऑलमोस्ट मार्केट बंद होती है और इस बंद होने का फ़ायदा हम लोग भी उठाते हैं क्योंकि हम लोग भी एक साथ बैठ के एकदम फ्री वेले वाला काम यानी कि अंताक्षरी खेलते हैं। तो अंताक्षरी खेलने वाले दावेदार फटाफट से आ जाइए। और मैं आपको बता दूं कि आज हम चाहते हैं कि आप अकेले नहीं, अपने साथ अपने एक कंपेनियन को लेके आएं, यानी कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ अपने किसी दोस्त को लेके आएं जो आपके साथ आपकी टीम में आपका सहयोग करे और आपको मतलब वो भी चैट रूम में या कॉल पे सुनाई दे कि हाँ मैं फलाने इंसान के साथ हूँ और हम लोग एक टीम में हैं। तो मुझे दिखना चाहिए कि आपकी दोस्ती में भी कोई दम है या फिर हम लोग ही आपस में एक दूसरे से मतलब बस दोस्तियां निभा रहे हैं। तो आपकी बचपन या जवानी या बुढ़ापे वाला कोई भी ऐसा प्यार या दोस्त है जो आपको आज ज्वाइन कर सकता है तो जल्दी से चैट रूम में लेके आ जाएं और आज की अंताक्षरी में उसको भी पार्टिसिपेट करा लें, आइदर टीम ए से और आइदर टीम बी से। तो चलिए हम देखते हैं ये बहुत सारे नए पुराने गानों का कारवां कैसा है, सुन के बताएंगे और आपकी जो वोकैबलरी है कुछ ही मिनटों में आहा सुपर डुपर तरीके से हिट हिट हिट हिट कर देंगे। तो चलिए आपके लिए कुछ बेहतरीन से गाने लेके मैं आ गई हूँ जो 1-to-1 आपके पुराने और नए गानों का जो कलेक्शन है उसको अपडेट कर देंगी। तो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाली मैशअप। एंड यस, मुझे लगता है कि इस मैशअप में हम सभी अपने बचपन को, अपनी जवानी को, अपने मतलब आज कल और परसों दोनों तीनों को फील करेंगे, करें या ना करें, लेकिन आप लोग मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे गानों का मिक्सअप है ये और मुझे हमेशा से पसंद आता है। तो आप इंजॉय करिए और मुझे बताइए और आपके हार्ट्स ही चैट रूम में मुझे बताएंगे कि आपको गाने कैसे लगे और आपका वाला जो फेवरेट है उसको लिख के चैट रूम में ज़रूर बताइएगा। गुलाबशाह कैसी हैं आप? इट्स कुमार, गुड इवनिंग धर्मेंद्र। तो सभी का स्वागत है आपके वाले शो गोंडा मैसे मसाला में, आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ, आपके शो गोंडा मैसे मसाला में, आपकी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 FM पर।

इतने खूबसूरत गाने सुन के मुझे तो लगता है कि मैं चली गई हूँ किसी पुरानी दुनिया में। वेल, आप सभी का स्वागत है। जैसे लोगों ने 90s की फ़ोटो पोस्ट कर करके हर जगह ये बता दिया कि पुराना ज़माना आ गया, वैसे इन गानों को सुन के लग रहा है यार पुराना ज़माना आ गया। गुड इवनिंग सबलू जी, कैसे हैं, क्या हाल है भाई? और देखिए, मिक्स गाने सुन के ना लगता है कि हमारी ट्रेन जो है ना कहीं दूर जा रही है और अलग अलग स्टेशन आ रहा है। तो हम लोग अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग बातें करते हुए अलग अलग फॉर्म में एक दूसरे से मिल रहे हैं। एंड यस, आज अंताक्षरी है, तो सबसे पहले तो सभी का स्वागत है। और देखते हैं, लड़कों की टीम से तो अभी सब लूचे दिख रहे हैं, लड़कियों की टीम से कोई नहीं दिखा। तो हेलो हाय लड़कियां भी कर दें, फिर शुरू कर दिया जाए। और बिना किसी देरी के पाधा नीसा गारे सा से शुरू कर दी जाए आज की अंताक्षरी। और आज की अंताक्षरी के लिए मैं बता दूं कि आज थोड़ा सा मैं सरगम वगैरह के सवाल भी करूंगी, यानी कि आपको कुछ सवालों के जवाब भी देने होंगे अपने टीम को जिताने के लिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सवालों के जवाब। मामा मारे रे सानी धाने गाने धासा। वैसे ये म्यूज़िक सुनते ही किसी की भी रूह क्या म्यूज़िक बजता है। ये जो है इसका नाम जो है म्यूज़िक का राग ऑफ रिवेंज है, मतलब किसी से बदला लेना हो तो ये म्यूज़िक बजा के पीछे से फिर आप बदला लो। यार ये क्या सीन है, मतलब वैसे मैं बताऊँ ये सब तो चलता ही रहेगा। फिलहाल आज मैं थोड़ा सा आप लोग को अलग ट्रैक पर ले जाने वाली हूँ। अलग ट्रैक आप क्या सोच रहे हैं कि ट्रेन पर बैठा के घुमाने वाली हूँ? नहीं नहीं यार, बातें कुछ और होंगी। और बातों के साथ आप लोग के साथ ये जो शाम है इसको सेलिब्रेट करना है, ना कि आप लोग के साथ इस इवनिंग को बस गोवंट कौन करना है। तो चलिए बात करते हैं अंताक्षरी के बारे में। अंताक्षरी क्या है, क्यों है, कहां से आई? फिलहाल आपके मन में भी क्यूरोसिटी होगी कि कहाँ से आई, कैसे आई, पर कभी मन ने कोशिश नहीं की यार इसके बारे में जाने ही क्यों। लेकिन जब कोई बताता है तो सुनने का ज़रूर मन करता है। तो आज की सुरीली शाम, आज की म्यूज़िकल शाम में आरजे बीना के साथ आप लोग लाइव हैं। और चलिए हम भी चलते हैं इस म्यूज़िकल शाम में, आज की अंताक्षरी की बात कर लेते हैं। तो सभी का पहले तो वेलकम कर ही चुकी हूँ। संगीत, यादें और मस्ती, ये तीनों ही बनाते हैं हम लोग हर शाम को, और आज भी बनाएंगे। तो वैसे अंताक्षरी खेलते खेलते मुझे लगता है हम लोग लाइव खेल रहे हैं रेडियो पे, जो कि मुझे लगता है इतिहास का एक अलग ही पन्ना है। टीवी पे हम लोगों ने देखी होगी पर रेडियो पे किसी ने नहीं सुनी होगी लाइव अंताक्षरी, तो एक नया एक्सपीरियंस है हम सभी के लिए। पर देखते हैं ना, कुछ नया करो तो उसका एक नया इम्पैक्ट होता है सब पे, तो उसको फील कर रहे हैं आप सभी। तो मैं बता दूँ कि आज की जो अंताक्षरी है वो अब अगेन लड़के और लड़कियों के बीच में है, टीम ए एंड टीम बी। और टीम ए से हमें हमारी जो कहते हैं ना कि लड़कियों की उम्मीद है कि वो जल्दी से आ जाएंगी, और लास्ट टाइम टीम ए ने बहुत बढ़िया सी जीत हासिल की थी, नहीं टीम बी ने हासिल की थी, और टीम ए ने बहुत बढ़िया खेला था। लेकिन इस बार मैं चाहूँगी कि टीम बी में एक इंसान की वजह से टीम ना जीते, पूरी की पूरी टीम सपोर्ट करे, सपोर्ट बन के रहे साथ में, क्योंकि मुझे लगता है सुनने वालों की जो तादाद है वो हज़ारों में है।

लेकिन गाने वालों का नंबर सिर्फ एक या दो या चार था पिछली बार, तो वो बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है कि आपकी टीम कितनी वीक है। और इस बार तो मैंने बता भी दिया कि आपको अकेले नहीं आना है, अपने साथ अपने दोस्त को लाना है जो आपके साथ आपकी आवाज़ बनेगा। वैसे देखते हैं आपके साथ आपकी आवाज़ बनने कौन आता है, आपकी दोस्त, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब टीम ए और बी में आपको खुद ही डिसाइड करना है कौन किसको लेके आ रहा है। ये कोई मतलब नहीं है कि आप किसी भी टीम में, मतलब आप किसी भी टीम में रह सकते हो। वैसे नाम बस ये है कि टीम ए गर्ल्स की है, टीम बी बॉयज़ की है, और कोई किसी की भी टीम में जा सकता है। वेरी सिंपल, मतलब इस पे कोई ऐसा रफ एंड टफ रूल नहीं है। तो चलिए अंताक्षरी की बात करते हैं कि हमारे बचपन में बहुत ज़्यादा खेला जाने वाला खेल था दम शरात, अंताक्षरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत मस्त तरीके से खेलते थे, तोता मैना, राजा वजीर, और इनमें टॉप पे खेले जाने वाली गेम थी अंताक्षरी। अंताक्षरी खेलना हो तो मतलब पूरा घर सुरीला हो जाता था, मम्मी पापा दादा दादी सब उसमें गाने लगते थे। जब कोई शब्द से गाना याद नहीं आता था तो हम लोग अपनी दादियों से कोई भी गाना पूछते थे, दोहों पे आ जाते थे, दोहों से शायरी पे आ जाते, शायरी से कविता पे आ जाते थे, स्कूल की पंक्तियाँ आ जाती थी, मछली जल की रानी है एंड क्या क्या, लेकिन मज़ेदार होता था। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई इसकी बात कर लेते हैं। अंताक्षरी शब्द का अर्थ है कि अंत यानी आखिरी अक्षर से शुरू होने वाला गाना, यानी कि जिस अक्षर से या जिस लेटर से गाना ख़त्म हो उसी से दूसरा गाना गाए, ऐसे इसका नियम ये है। लेकिन हम लोगों ने इसको थोड़ा और वास्ट वास्ट वास्ट वास्ट करके नियम बना दिया जिससे मज़ा और आए, ठीक है। और इसकी शुरुआत की बात करूं तो पहले लोग गानों को रेडियो पर सुन सुन के, फिल्मों में सुन सुन के घर बैठे उन गानों को अपनी जुबान पे लाते थे और बहुत मज़े करते थे। पर इस खेल की जो कहते हैं ना कि ऑफिशियल शुरुआत है उसके बारे में सोचने लगे तो किसी के पास कोई जवाब ही नहीं रहता है कि ये कहां से इस दुनिया में आई। पर कहते हैं ना कि हर किसी का इतिहास होता है, वैसे ही अंताक्षरी का भी इतिहास है। क्या है इतिहास, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि इसके शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया। सबसे पहले लोग कहते हैं, मतलब ऐसा पुरानी जानकारियों के हिसाब से, कि प्राचीन और वैदिक काल में ऋषि मुनि जो होते थे वो भजन और श्लोक गायन की परंपरा रखते थे। अंताक्षरी सबसे शुरुआत में प्राचीन काल में रामायण काल से खेली जा रही है, ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा मतलब लोगों का कहना है। ऋषि मुनि संत समूह बैठकर भगवान के भजन गाते थे। जब एक भजन समाप्त होता था तो अंतिम शब्द से आखिरी अक्षर से दूसरा भजन शुरू कर दिया जाता था ताकि वो प्रवाह जो है वो निरंतर बना रहे। तो ये तो बात हो गई थोड़े इतिहास की। फिर आते हैं मध्यकाल में, मतलब ये तो मैंने प्राचीन इतिहास की बात कर ली। मध्यकालीन इतिहास में अगर जाएं तो कहते हैं कि शाही दरबारों में भी इसे लोक परंपरा समझा जाता था। दरबारों में बैतबाजी या काव्य पाठ होता था। मध्यकाल और मुगल काल के दौरान जो परंपरा थी राजा महाराजाओं की, उनके साथ ही साथ जो नवाब थे उन सबके दरबारों में कवि और शायर बैठा करते थे और कवि और शायर बैतबाजी करते थे जिसे शायरी की अंताक्षरी बोलते हैं। तो यार अगले इवेंट्स से क्यों ना बैतबाजी किया जाए। तो बैतबाजी के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो चैट रूम में मुझे हाथ रेज करके बताएं। बैतबाजी यानी कि शायरी की अंताक्षरी या काव्य प्रतियोगिता, ठीक है, जहाँ भाषा साहित्य के ज्ञान की परीक्षा होती थी। मज़ा आ जाता था, मतलब क्या मज़े रहते होंगे ना। मतलब हम लोग क्या करते हैं, बैतबाजी अंताक्षरी एक ही कर देते हैं, मतलब गाने कविताएं बचपन में एक कर देते थे, लेकिन सच में बैतबाजी भी होती है। तो अगली बार बैतबाजी की बात होगी और हम लोग बैतबाजी खेलेंगे। अब बात करते हैं सामुदायिक उत्सव की। तो धीरे धीरे ये जो खेल है राज दरबारों से निकल कर लोगों के बीच पहुंच गया, जिसे लोक संस्कृति बना लिया गया। ग्रामीण अंचलों में उत्सवों में कोई मेला हो, त्यौहार हो, वहाँ पे लोग मिलके क्षेत्रीय संगीत जो होते थे उसे गाने लगे और ऐसे अंताक्षरी खेलने लगे। एक ने गाया फिर दूसरे ने गाया, ऐसे करके। फिर आते हैं 20वीं सदी में, यानी कि जब बॉलीवुड का दौर आया तो भारतीय सिनेमा का आगमन हुआ और रेडियो के अवतार से
इस खेल का स्वरूप बदल गया, यानी कि अब जो श्लोकों और भजनों की जगह थी वो फिल्मी गानों ने ले ली और भाई लोगों ने सुनना शुरू कर दिया, सबको म्यूजिकल चीज़ें मिल गईं। भाई तुम दिल ने ये कहा है दिल से, आहा म्यूजिकल आ गया तो मज़ा आने लगा ना। तो लोग अब घर में, पिकनिक में, शादियों में, यात्राओं में बैठ के क्या करते थे, बैतबाजी नहीं अंताक्षरी। और उसमें क्या होता था कि ये जो खेल था वो अनिवार्य खेल बन चुका था, जैसे समोसे के साथ चाय अनिवार्य हो जाती है कभी कभी, वैसे ही शादी ब्याह ट्रेवल मतलब मैं तो अभी भी समझती हूँ कि जब भी मैंने फैमिली ट्रैवलिंग की होगी, बहुत सारे लोग रहेंगे, तो अंताक्षरी ज़रूर खेली गई होगी, बशर्ते मोबाइल को हम लोग स्क्रॉल करें, एक दूसरे को से नज़रें भी ना मिलाएं, इसकी जगह हम अंताक्षरी खेलें तो शायद कोई भी जर्नी मेमोरेबल और शायद हेल्दी हो जाएगी। अब बात करते हैं 1993 की, यानी कि जब टेलीविज़न की क्रांति आई, अभी तो रेडियो तक थे, अब टेलीविज़न की क्रांति आई और जी अंताक्षरी शुरू हुआ, यानी कि 3 सितंबर 1993 को जी टीवी के निर्माता गजेंद्र सिंह द्वारा अंताक्षरी शो की शुरुआत की गई। अनु कपूर की लोकप्रियता इस शो की मेज़बानी थी और 1994 से लेके 2005 तक कई सहमेज़बानों जैसे पल्लवी जोशी, राजेश्वरी, सचदेव आदि के साथ अनु कपूर के अनोखे अंदाज और गानों के विशाल ज्ञान ने इस शो को घर घर में लोकप्रिय कर दिया था। इस शो ने खेल के नए नियम बनाए, टाइमर, धुन, रिमिक्स जैसे अलग अलग जो पार्ट्स थे इसको जोड़ा। तो ये था अंताक्षरी का इतिहास। वैसे आप लोग को कैसा लगा जल्दी बताइए, मुझे तो मज़ा आ गया यार बता के। तो चलिए आप लोग को सुनाती हूँ एक प्यारा सा गाना, और सुनने के बाद जल्दी से लड़कियों की मैं टीम देखना चाहती हूँ। हमारे साथ धर्मेंद्र जी आ गए हैं लेकिन लड़कियों से मुझे कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो लड़कियों के आने के बाद ही अंताक्षरी की शुरुआत होगी। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना आप लोग के संग, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। देखा अंताक्षरी अपने साथ कितनी यादें लेके आई है। एनीवे ये यादें तो ऐसे ही बरसती रहेंगी लेकिन हमारे साथ हमारी ज़िंदगी नए नए नए नए नए नए नए खेलती रहेगी। तो चलिए सुनते हैं मोस्ट ट्रेंडिंग गाना तेरे।

0: करते हैं शुरुआत। अंताक्षरी की रोशनी हमारे साथ हैं और जिसका इंतज़ार हो अगर वो आ जाए तो भाई शाम शुरू हो सकती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है लड़कियों की टीम का इंतज़ार था और मुझे लड़कियों की टीम से दिख रहे हैं हमारे रोशनी जी। एंड गुड इवनिंग, कैसी हैं रोशनी? और उन्नाव से हैं आप? क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपको देख के और मतलब उम्मीद करूँगी कि सुनने को भी मिलेगा। फिलहाल हमारे शायर साहब सबलू जी लिखते हैं कि एक वादा था तेरा हर वादे के पीछे, एक वादा था तेरा हर वादे के पीछे, तू मिलेगी हर गली हर दरवाजे के पीछे। एक वादा था तेरा हर वादे के पीछे, तू मिलेगी हर गली दरवाजे के पीछे, पर तू क्यों इतनी बेवफा निकली, कि तू क्यों इतनी बेवफा निकली कि एक तू ही नहीं थी मेरे जनाजे के पीछे। लड़की ने आंखों में आंसू के साथ जवाब दिया, एक वादा था मेरे हर वादे के पीछे, मिलूंगी हर तुझे हर गली दरवाजे के पीछे, मैं कैसे आती तेरे जनाजे के पीछे, मेरा अपना ही जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। ओ क्या बात है, महफिल लूटने वाली शायरी यार। मैंने सोचा कि जवाब कुछ दूसरा ही होगा लेकिन इतना खतरनाक जवाब होगा। अरे बाप रे, दिल की धड़कनें ही बढ़ गई। तो बताइए कौन कौन रेडी है, हाथ उठाइए, फिर शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, क्योंकि हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है गाना जुन जुन के किसी और के नाम। क्या बात है यार, शायरी तो मैं भी बढ़िया बना देती हूँ पर उतनी अच्छी नहीं जितनी आप लोग बनाते हैं, है ना? Am I right? ये बात सही है ना, मैं उतनी अच्छी शायरी नहीं बना पाती जितनी आप लोग बनाते हैं। लेकिन यार एक बात ये कहूँगी, ये वाली शायरी जो है ना मुकर्रर टाइप की शायरी है। मुकर्रर मतलब कि एक बार और सुनने वाली शायरी। और ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जो जज बहुत जल्दी करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक जवाब है ये शायरी जो बहुत जल्दी लड़कियों को जज कर लेते हैं। एंड मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि हमारे जो सबलू जी हैं बहुत अच्छे से लड़कियों की भावनाओं को भी समझते हैं, और ना सिर्फ समझते हैं बल्कि एडमिट करते हैं कि क्या है कैसे है। एनीवे, इस शाम को सुरीला और रंगीन बनाने के लिए सभी का शुक्रिया है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने हाँ ना नहीं किया तो इसीलिए मैं इंतज़ार करते हुए आप लोगों के लिए ये शायरी मुकर्रर करते हुए पढ़ती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के दिल तक जाएगी। कि गौर फरमाइएगा, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। एक वादा था तेरा हर वादे के पीछे, तू मिलेगी हर गली हर दरवाजे के पीछे, पर तू क्यों इतनी बेवफा निकली, तू क्यों इतनी बेवफा निकली कि एक तू ही नहीं थी मेरे जनाजे के पीछे। लड़की ने आंखों में आंसू के साथ जवाब दिया, एक वादा था मेरे हर वादे के पीछे, मिलूंगी तुझे हर गली दरवाजे के पीछे, मैं कैसे आती तेरे जनाजे के पीछे, मेरा अपना ही जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं इंतजार का फल कैसा है, आवाज़ किसकी आती है ये तो पता नहीं, पर उम्मीद है कि किसी की तो आएगी। कॉल आया लेकिन कॉल कट गया। तो चलिए पहला लेटर मैं देती हूँ, देखते हैं कॉल किसका आता है। पहला लेटर आपको सुनाना है गाना स से, तो स से गाना सुनाने वाले हमारे जितने भी सुरीले लिसनर्स हैं उनका स्वागत है। पहला कॉल आ चुका है, देखते हैं किसका है। हेलो, हेलो,
1: हेलो,
0: हेलो, गुड इवनिंग।
1: हेलो, गुड इवनिंग, मैं निशा।
0: गुड इवनिंग निशा, कैसी हैं आप? स्वागत है आपका, क्या हाल है?
1: सुन रही थी, मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाई है अंताक्षरी सुनने के लिए।
0: क्या बात है, मतलब गरम गरम रोटियां बन गई है, मेरे को तो भूख भी लग गई है। चलिए आपको सुनाना है गाना स से,
1: चलिए मैम आइए खा लीजिए।
0: क्या बताऊं, इतनी दूर से खाने का तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन स से आप गाना सुना दीजिए, मुझे खाने वाली फीलिंग आ जाएगी।
1: किस अक्षर पे?
0: स से, स स से सपेरा।
1: स से साथ साथ छोड़ना क्या है दुनिया, हो
0: क्या बात है निशा, थैंक यू सो मच, आपने सही समय पे अपनी टीम का साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार।
1: मेरी आवाज आ रही थी?
0: हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही थी।
1: हेलो।
0: और आपका गाना सुन के मुझे ये पता चल गया कि ला से लड़कों को गाना है। क्या है तेरा फैसला? थैंक यू। तो भाई निशा ने आके अपनी टीम का भरपूर साथ दी, और ऐसे देखिए लड़कियों की टीम स्ट्रांग हो जाती है और लड़के हमारे मतलब हाथ मलते रह जाते हैं। एनीवे चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहेगा। आप लोगों से क्या ही कहूँ, कहते हैं ना शिकवा गिला किसी से नहीं करना होता है, और इसीलिए मैं आप लोगों से भी शिकवा नहीं करना चाहती। और अगला कॉल आ गया है, तो इस राउंड में कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि कौन पहले कॉल करेगा कौन बाद में। आप पहले कॉल करिए, अपनी टीम को पॉइंट्स दिलाइए, तो देखते हैं कौन है अभी। हेलो।
2: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, कैसी हैं आशु जी? आपकी आवाज़ मुझे लग रहा है आशु जी।
2: बहुत अच्छे मैम।
0: तो अभी आप लखनऊ में हैं या फिर अपने?
2: बिल्कुल मैम, लखनऊ में हैं मैम।
0: हाँ, गोंडा वालों से कहाँ इतनी मोहब्बत आपको?
2: नहीं मैम, बहुत मोहब्बत है क्योंकि हम गोंडा के ही वासी हैं।
0: हाँ, तभी तो साल छह महीने ऐसे बीत जाते हैं।
2: क्या करना है, जिम्मेदारियाँ हैं।
0: चलिए ला से गाना सुनाइए
2: मैम। ला से?
0: हाँ।
2: दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, हमने सनम को देख लिया आए रे धोखे से।
0: क्या बात है, बस इतना ही? हमने सनम को देख लिया हाय रे धोखे से, माना कि वो दिल लेगा वो मगर अपनी जान देगा वो। मैं वहाँ पे छोड़वा रही हूँ गाने को क्योंकि सा ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं सा से दोबारा नहीं गाना सुनना जा रही थी। वेल, आप लोग बताइए आप लोग का क्या हाल है। और देखिए मैं अगले कॉल को भी ऑन एयर कर देती हूँ, देखते हैं किसकी टीम से है। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम। आवाज तो जानी पहचानी सी है पर नाम सुन के। अनु, मतलब मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। अनु अनु कहो तो फिर पता नहीं वो निकल जाती है, क्या नाम है उसका यार जो
1: संगीत
0: भाषा मैं संगीत सोचने लगी थी नाम।
1: मेरी सिस्टर है ना,
0: तो भाषा तो ऐसा मतलब फिलहाल भाषा ने पिछली बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसको कॉन्ग्रेचुलेट मैंने उस दिन किया था। आपको आज सुनाना है गाना अनु, शिकायत तो आपसे बाद में होगी, फिलहाल आपको गाना सुनाना है बस। वो वाह
1: हाँ
0: ठीक
1: है। और
0: ना
1: पता है अभी ना मैं मैच देख रही थी और रही, मेरे फेवरेट बहुत है ना, मैं उनकी बारी छोड़ के आई हूँ कॉल करने के लिए, दौड़ के आई हूँ।
0: रोहित तो मेरा भी फेवरेट है।
1: मैम ठीक है, मैं गाना गा रही हूँ।
0: बिल्कुल स्वागत है।

0: कोरे को भाई, मैं तो गाने ही लग गई। और देखते हैं कॉल किसका आ गया है। भाई लड़कियों की टीम बहुत सक्रिय लग रही है। हेलो।
1: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
0: ओहो, ये होती है लड़कियों की टीम पर, एक लड़की रिपीट नहीं हो रही है, देख लो, इसी को बोलते हैं मतलब ऐसी क्षमता लड़कियों में ही है, लड़कों में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बेइज्जती करा रहे हैं लड़के हर जगह, क्या कहने हैं, क्या बताऊं। एनीवे कोई बात नहीं, अभी सो के उठ जाएंगे, समोसा कचौड़ी खाने गए होंगे हमारे टीम के लड़के। तो आपको गाना सुनाना है दस है जी। आगे इसने भी पॉइंट नहीं मिलेगा, सिर्फ दैया दैया ही होगा।
1: मैम तो दूसरा सुना दे।
0: अरे तो गा दीजिए, क्या है इसमें तो, इसके तो
1: मैं आगे ध्यान ही नहीं आ रहा है।
0: मैंने तुझसे प्यार किया रे दैया दैया दैया, मुझे तो आलू खाबो घोइया रे याद आ रहा है। मेरे क्लास के बच्चे यही गाते थे। कोई बात नहीं, दूसरा भी आप सुना सकती, दास से तो गाने ही गाने हैं।
1: दीते तेरा देवर दीवाना, आए राम कुड़ियों को डाले दाना, बंदा है वो तेरा पूरा, बंदा है वो तेरा पुराना, आए राम कुड़ियों को डाले दाना।
0: क्या बात है, तो आपकी दीदी का कोई देवर था या फिर ऐसे ही आपने?
1: मैं सबसे बड़ी हमी है।
0: लो भाई, ये सौभाग्य भी नहीं मिला।
1: ये भी नहीं मिला, ना देवर का ना दीदी का।
0: मतलब क्या धोखा कर दिया भगवान ने।
1: कोई बात नहीं, सही बात है,
0: कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े कांड हो जाए। तो चलिए, प्रीति जी को ना दीदी मिली ना देवर मिला, बड़ा ही खतरनाक हुआ इनके साथ। चलिए, दर्द भरी दास्तां सुन के दुख हुआ मुझे जान के। तो अगले कॉल को ऑन एयर करते हैं, देखते हैं आवाज किसकी है, उम्मीद करते हैं कि वो किसी लड़के की हो। हेलो,
2: नमस्कार, मैं अनिल कुमार बात कर रहा हूँ।
0: ओ नमस्कार अमित, आपने एकदम जैसे कहते ना वेंटिलेटर पे मैं थी, ऑक्सीजन दे दी। एक भी लड़के का अभी तक कॉल नहीं आया।
2: मैं वही सोच रहा था, वैसे मोबाइल वोबाइल यहाँ चार्ज नहीं हो रही, लाइट नहीं आ रहा।
0: और आज आपको जोखिम उठाना पड़ा, बची हुई बैटरी के साथ कॉल मिलाना पड़ा, वाह वाह क्या बात है। चलिए अब इसी बात पे सुना दीजिए आप गाना, ना से बिना देरी किए कि बैटरी आपकी वेस्ट हो। हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ न से, न से।
2: नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम।
0: थैंक यू सो मच। तो भाई अमित जैसे लड़के हो तो टीम कैसे हार सकती है, मोबाइल डिस्चार्ज है फिर भी कॉल कर दिया, आपके जज्बे को सलाम है। तो चलिए देखते हैं और किस लड़के का कॉल आ रहा है, मुझे तो गूज़बम्प्स फील हो रहे हैं कि और लड़के उठने वाले हैं या फिर सो के शाम बिताने वाले हैं, वो हो तुम मस्त गाना गाना है, देखते कौन है हमारे साथ। हेलो।
3: हेलो मैम।
0: अच्छा जी, माँ से गाना सुना दीजिए।
3: मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला, बहुत सुंदर गाया आपने, मजा आ गया, थैंक यू। तो भाई आशु जी ने गाना बहुत प्यारा गाया, अब अगले कॉल को मैं ऑन एयर कर देती हूँ, मैं किसी को भी छूटने नहीं दूंगी, कहीं लड़कों का कॉल हुआ तो। हेलो। हेलो
4: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, शुभ संध्या, बहुत अच्छा लगा आपका कॉल है, आपका नाम? सबलू जी, मैं बता रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, आपने लड़कों की टीम से अभी दूसरा कॉल किया है, और तह से गाना सुना दीजिए। मुझसे कोई लड़का प्यार करता था से। अभी कॉल किया ना आशु जी ने और गाना गा दिया, बस
4: जी जी बिल्कुल।

0: हमें भी नहीं जाना। जी बिल्कुल,
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और न से मिल गया है हमें लेटर, और देखते हैं अब कौन गाएगा गाना न से। हेलो
2: हेलो
1: हेलो, ओहो अमित
2: जी, मैं अमित बोल रहा हूँ।
1: न से गाना सुना दीजिए हमें।
0: नैनो की बात तो नैना जाने है, कपूनो के रार तो रैना जाने है, दिल की जो बात तो धड़कने जाने है, इस पे जो गुजरी वो ताने जाने है।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। जाने है हाँ से गाना सुनाने, देखते कौन कॉल करता है। और इसी के साथ एक कॉल कट भी गया है। सॉरी किसका कॉल था भाई, जल्दी से कॉल कर दो। और मेरी धड़कने जो है ना बढ़ बढ़ के घट घट रही हैं। देखते अगला कॉल किसका है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ नेटवर्क में आ जाइए, क्योंकि आज नेटवर्क इधर उधर होने लायक नहीं है, क्योंकि आप लोग के कॉल्स वेरी वेरी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं आज। तो चलिए देखते हैं कौन कॉल करता है अभी। हेलो हेलो हेलो हेलो
2: जी वीना जी,
1: जी सबलू जी, हाँ से गाना सुनाना है।
2: जी बिल्कुल,
0: हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो पर तुम मिला करो।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। इसी के साथ अगला कॉल ऑन एयर करने की बारी, देखते हैं कौन है। कॉल कट गया भाई, अब इसको बोलते हैं एनर्जी। देखिए लड़कों को जैसे मौका मिला तुरंत वो हमारे साथ लाइन है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: जी मैम,
1: अनुरा हमसे मिला करो रा
3: राशि
1: जी।

0: थैंक यू सो मच चंद्रमा माँ। तो माँ से गाना गा दिया है अनु ने, और अनु के बाद देखते हैं किसकी बारी है। और लड़के और लड़कियों के बीच जो जुगलबंदी है वो बरकरार है, और मैं अगले कॉल को मौका देना चाहती हूँ। देखते हैं कॉल।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार। हेलो
1: राधे मैम,
0: शुभ संध्या, कैसे हैं जुगल जी? आपकी आवाज आ रही है।
1: आ रही है।
0: गुड इवनिंग, कैसे हैं?
1: बढ़िया हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिसनर्स हमारे साथ लाइव हैं, जुगल जी जो कि हमें मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। तो जुगल जी, आपको गाना सुनाना है म से।
1: माँ से?
0: माँ, म से मछली।
1: माँ से
0: जी।
1: हेलो
0: जी, माँ से, माँ, माँ से मछली।
1: माँ से
0: जी।
1: मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, ओ मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, तूने बंसी बजाई आधी रात को।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा गाना आपने चुन के सुनाया। थैंक यू सो मच जुगल जी, अपनी टीम का सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। चलिए हम अगले कॉल को मौका देते हैं, और कॉल हो गया डिस्कनेक्ट, और आवाज सुनते हैं किसकी है, कहाँ से गाना सुनाने के लिए। इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, मतलब ये होती है ना जागना, इसको जागना कहते हैं, और देखते हैं कौन जागा है अब। हेलो
2: हेलो, मैं अमित बोल रहा हूँ।
0: अमित, कहाँ से गाना सुना दीजिए अपनी टीम के लिए।
2: मैम कहाँ है
0: जी?
2: कागज कलम दबा दिला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं।
0: क्या बात
2: है, बस इतने से काम चल जाएगा।
0: कागज कलम दबा दिला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। और इसी के साथ दोनों टीमों के पॉइंट्स हो जाते हैं 240 and 240, यानी कि 40 पॉइंट एक गाने का मिल रहा था, और दोनों ही टीमों ने इतने गाने गा दिए हैं कि दोनों टीमों अब बराबर पे आ गई हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि मुझे लगता है एक ही टीम की फील्डिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं संतोषजनक मतलब आपको उत्तर दे पा रही हूँ कि हमारे लड़कों की टीम से भी मतलब ऐसी सक्रियता आई है कि चैट रूम में भी उस्मान आके कह रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अब लड़कों की टीम के पॉइंट बढ़ रहे हैं ना, इसीलिए ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, और इस राउंड को यहीं पे समाप्त करते हुए अब मैं बारी है, अब बारी है शब्द राउंड की। तो एक ब्रेक लेते हैं गाने का। लड़के और लड़कियां फटाफट से अपने अपने शब्द जो है चैट रूम में भेज दें। पहला शब्द जो मुझे दिखेगा वो दोनों ही टीमों को मैं उछाल दूंगी। फिलहाल लड़कों ने गाना गाया, तो इस बार लड़कों को वर्ड देना होगा, गाना लड़कियां गाएंगी। तो लड़कों की टीम अगर मुझे सुन पा रही है ध्यान से, तो फटाफट से कोई भी तगड़ा सा शब्द चैट रूम में फेंक दीजिए, और लड़कियों के लिए वो शब्द पहला वाला शब्द गाने वाला होगा। तो जो भी लड़कियों की टीम से पहले कॉल करेगा वो गा लेगा आराम से। यार टाइमर नहीं लगाया मैंने, सबसे बड़ी बात यह है, सोचिए कितनी मेरा मतलब दिल कितना बड़ा है। ओहो क्या कहने। वेल चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं म्यूजिकल, जो आप लोग के दिमाग की जो बत्तियां हैं उनको जला देगा।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हाँ यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील करा सील
1: टाइट टाइट वेरी टाइट।

तेरे अगल बगल, तू मेरे अगल बगल है। और इसी के साथ मैं बता दूं, पहला शब्द जो है लड़कियों की टीम को जो मिला है वो धर्मेंद्र ने दिया है परमिट। परमिट से गाना सुनाने के लिए लड़कियां चौकन्नी हो जाएं और जल्दी से बारी लड़कियों की टीम के गाने की है। गुड इवनिंग जुगल जी, गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग अनूप जी, गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं? सभी का स्वागत है। तो चलिए अगला गाना ध्यान से सुनते हैं और भाई फटाफट से इन्हीं गानों में से शब्द चुरा चुरा के रखते रहिए। आज मैं अतरंगी से गाने बजा रही हूँ जिससे आपको शब्दों का जो दायरा है वो बढ़ जाए। एंड यस, आप ध्यान से सुनिए और लड़कियों की टीम परमिट से गाना सुना दीजिए। वैसे मैंने तो परमिट दे दिया आपको गाने का, आप गाइए, कॉल करिए।

0: को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता। He is wrong. Watch me.
1: तो चलिए ये गाना अभी हम रुक के सुनते हैं, लेकिन कॉल देखते हैं किसका है। हेलो
2: हेलो मैम, गीता श्रीवास्तव बोल रहे हैं। गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग, कैसी हैं गीता जी, क्या हाल है? बहुत चहक रही हैं, मतलब परमिट से गाना आता है?
2: अभी देखा मैंने खोल के ऐप, देखा हमको याद आया तुम खोले, हम कह रहे चलो सुनाते। मैम घराना मूवी का गाना है गोविंदा का,
1: स्वागत।
2: तेरे डैडी ने दिया है मुझे परमिट तुझे पटाने का, तेरे डैडी ने दिया है मुझे परमिट तुझे पटाने का, बस इतना याद है मुझे।
1: कोई बात नहीं, आपको नंबर मिल गया, आपका गाना पटे या ना पटे चलेगा। थैंक यू सो मच। तो गीता जी ने गाना सुना दिया है, और इसी के साथ मैं लड़कियों की टीम से बोलूंगी फटाक से चैट रूम में वो भी शब्द भेज दें। और लड़कियों की टीम से रोशनी ने शब्द दिया है पैसा, पैसा की पासा, पासा पासा शब्द है। तो पासा से गाना सुनाने के लिए कौन सा लड़का आगे आने वाला है जल्दी से बताइए। अब आपको बता दूं, इस बार आपको एक गाना गाने के से 8 पॉइंट मिलेंगे, पिछली बार 40 मिल रहे थे, 20 पॉइंट बढ़ चुके हैं। एक गाना गाओ और 60 पॉइंट अपने टीम के नाम कर जाओ, लेकिन शब्द कैच करके ही आपको गाना है। तो पासा पलटो और गाना सुनाओ, और मैं अपना वाला गाना आप लोग को सुनाती हूँ। मैं बढ़िया

0: गुड इवनिंग।
1: जाना है
0: नहीं, अभी लड़कियों की बारी नहीं है, लड़कों की बारी है निशा।
1: जी मैम, तुम ना गाना
0: हम लड़कों की टीम से आप गाना चाहती हैं तो डेफिनेटली करिए।
1: तो मैम पासा है और पैसा चल जाएगा?
0: नहीं, आपको नहीं गाना है, लड़कों की टीम से है ना, आप तो लड़कियों की टीम से गा रही थी शुरू से। तो भाई इस बात का ध्यान दीजिए आप लोग कि मतलब लड़कों की टीम से गाना है कि लड़कियों की टीम से। भी लड़कों को गाना गाना है पासा से, देखते हैं पासा से गाना कौन गाने वाला है। मैम पासा से गाना नहीं याद आ रहा है तो फिर संकट में आप आ चुके हैं। कोई बात नहीं, पासा से अगर गाना आप नहीं गा पाएंगे तो फिर मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, हम बारी किसी और को देंगे डेफिनेटली। तो पासा शब्द दिया है रोशनी ने, रोशनी ने, हाँ तो रोशनी ने शब्द दिया है पासा। अब लड़कियों की टीम से रोशनी के अलावा कोई भी कॉल करके पासा से गाना सुना सकता है और बोनस पॉइंट अपने नाम कर सकता है। तो देखते हैं कौन है जो बोनस पॉइंट कमाने के लिए यहाँ हमारे साथ। दिलदार बैठा है, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। मुझे ये गाना कहाँ से याद आ गया। फिलहाल चलिए देखते हैं कौन दिलदार आया है। हेलो।
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, हमारी अनु है हमारे साथ। पासा से गाना आता है तो सुनाइए प्रिय।
1: अनु नहीं मैम, भाषा।
0: ओ भाषा, पासा। क्या बात है, राइमिंग बन गई। तो भाषा, आर यू रेडी टू सिंग गाना फ्रॉम पासा?
1: जी,
0: स्वागत है।
1: ये बम्बई नगरिया तो देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ, पासा दिया है तो फेंक बबुआ, ये बम्बई नगरिया तू देख बबुआ।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। फिलहाल अनूप जी नहीं दिखाई दे रहे, दिख तो रहे हैं लेकिन अनूप जी लग रहा है कि आराम कर रहे हैं, वो अपनी टीम का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या बात है।
1: अरे मैं भी बहुत बिजी हूँ।
0: तो ये बताइए,
1: चलिए और खाना भी बना रही हूँ।
0: ओहो क्या बात है, इसी के साथ हम अगले टीम को मौका देते हैं। और अब बारी है वाकई में लड़कियों की टीम की गाने की, तो लड़कियों को मिल जाता है बोनस पॉइंट। क्या कहने, क्या कहने। और बोनस पॉइंट के लिए मैं लड़कियों को दूंगी सीधे 30 पॉइंट, और मतलब पूरे पूरे पॉइंट्स नहीं मिलते हैं भाई, ये भी आपको बता दूं, नहीं तो आप लोग कहें कि 60 पॉइंट मिलने चाहिए थे। नहीं, आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे और इसी के साथ आपके कितने पॉइंट्स थे, 330 पॉइंट्स आपके इसी के साथ हो गए हैं। और अब बारी है वापस से लड़कियों की टीम को गाने की, और देखते हैं कौन है जो पासा पलटने वाला है लड़कियों की टीम से। लड़कियों की टीम को शब्द और मिल सकते हैं। नादान शब्द आया हुआ था जुगल जी की तरफ से, तो लड़कियों को अगर नादान से गाना आता है तो कृपया गा सकती हैं कोई भी हमारी प्रिय लड़की। हमारी प्रीति जी लिख रहे हैं, मैम कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही। कॉल तो वैसे सारे रिसीव हो रहे, हो सकता है कि ब्रेक वाले टाइम पे आपका कॉल आया हो। एनीवे देखते हैं कौन अभी कॉल कर रहा है।
2: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, आपका शुभ नाम?
2: धर्मेंद्र मोहन।
0: धर्मेंद्र जी, ओहो क्या बात है, कैसे हैं?
2: ठीक है।
0: फिलहाल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिलहाल लड़कियों की टीम की बारी है, आपने लड़कियों की टीम के टाइम कॉल कर दिया है।
2: लड़कों की टीम का?
0: हाँ, लड़कों ने गाना ही नहीं गाया पासा से, तो लड़कियाँ गा के
2: पॉइंट, तो हम गा रहे हैं ना,
0: पॉइंट लड़कियाँ ले गई, आपने थोड़ा सा विलम्ब कर दिया। एनीवे नेक्स्ट शब्द का इंतजार करिए, ध्यान से सुनिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा शब्द दिया है मैंने। मैंने शब्द थोड़े दिया है, शब्द तो लड़कियों को ही मिला है, देखते हैं आवाज किसकी है।
3: हेलो
0: हेलो,
3: आंटी नमस्ते मैम जी, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका नाम? गुड इवनिंग।
3: मेरा नाम है रोशनी रावत।
0: रोशनी, ओके, चैट रूम में आप दिख रही हैं मुझे। तो नादान से गाना सुना दीजिए, नादान से।
3: मैं गाऊंगी नहीं, मैं बताऊंगी। ऐ दिल ऐ नादान करके गाना है, एक लता मंगेशकर जी का, वही गीत है। ऐ दिल ऐ नादान, ऐ दिल ऐ नादान,
0: दो लाइन
3: बहुत पुराना है।
0: हाँ, दो लाइन अगर आप बता देती तो मतलब आपकी टीम के पॉइंट्स पक्के हो जाते।
3: तो मैं बता तो दिया, ऐ दिल ऐ नादान।
0: आगे
3: आगे भी बता रही, क्योंकि गाना मैं गाती नहीं हूँ ना, तो इसलिए मुझे गाना नहीं आ रहा है।
0: हाँ थैंक यू सो मच, आपने अपनी टीम को एडवाइस दे दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी टीम से कोई और भी कॉल कर रहा है। थैंक यू सो मच रोशनी, थैंक यू।
3: ओके मैम, वेलकम।
0: तो चलिए देखते हैं कौन है लड़कियों की टीम से। और हेलो हेलो हेलो, अरे कोई चीटिंग नहीं हो रही है, मैंने तो पासा से गाना गाने के लिए बोला था, आप लोगों ने गाया ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। हेलो
4: हेलो
0: हेलो
4: जी मैम।
0: जी हाँ, आपका नाम?
4: भाषा
0: संग। आपको गाना सुनाना है नादान से, आपकी टीम के मेंबर ने गाना बताया है, दिले नादान, अगर आपको
4: मुझे पहले से ही गाना आ रहा था
0: तो सुना सकते हैं आप।

0: क्या बात है, थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यारा गाना सुनाया। भाषा, आप कौन सा शब्द देना चाहेंगी लड़कों की टीम को? हेलो, भाई कॉल काट के आप लोग चले जाते हैं और मैं शब्द का इंतजार करती हूँ। तो फिलहाल लड़कियों की टीम की तरफ से लड़कों के लिए जो शब्द है, देखते हैं कौन है। हेलो,
1: जी भैया, मैं शब्द देना चाहूंगी ब्राइन।
0: कौन सा?
1: ब्राइन, ब्राइन।
0: ब्राइम, ये कौन सा शब्द है? इसका
1: हिंदी गाना है, मेन बहुत अच्छा गाना है। ब्राइम शब्द,
0: शब्द क्या है? ब्राइम,
1: ब्राइम।
0: मुझे शब्द क्लियर नहीं हो रहा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ब्राइम मतलब?
1: ब्राइम मैम, ब्राइम।
0: ब्राइम जी
1: मैम, ब्राइम।
0: तो फिलहाल भाषा का शब्द मुझे बहुत समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं इस शब्द को कंसीडर नहीं करूँगी। शब्द जो दिया गया है किसकी तरफ से? ऑलरेडी चैट रूम में एक शब्द आ चुका है प्रीति जी की तरफ से, संकट। तो आई कंसीडर संकट, एंड संकट से लड़के गाना सुना दें। और भाई कोई चिटिंग नहीं हो रही, आप लोग टाइम से गाना नहीं गाएंगे तो ऑब्वियसली मुझे दूसरी टीम को मौका देना पड़ेगा। आप लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, अनूप जी भी आके चैट रूम में पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो संकट से गाना सुना दीजिए आप लोग फटाफट से, इंतज़ार कर रही हूँ। और लड़कों की टीम को गाना है, तब तक के लिए चलिए एक और गाना हम लोग आराम से सुनते हैं और आप लोग को मोटिवेट करते हैं। ऑब्वियसली आपकी ये शाम बेहतरीन होगी अगर आप उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना इस मतलब शाम को चाहिए। हेलो
2: हेलो मैम,
0: हेलो प्रीति जी, गुड
2: हेलो।
0: इवनिंग। अभी लड़कों की टीम की बारी है, आपने संकट शब्द दिया है तो मैं उसी को मान लेती हूँ। हाँ, आपने लड़कों की टीम के लिए दिया है ना शब्द?
2: तो नादान गा चुका भाई।
0: हाँ, नादान से आप रेडियो नहीं चला के बैठी हैं, इसका मतलब ये है।
2: नहीं चला के
0: नादान से दो आपकी टीम के दो मेंबर्स ने गाना गाया है।
2: अच्छा अच्छा ओके ओके
0: तो संकट मैं मान लेती हूँ, आपने शब्द दिया है तो लड़कों की टीम के लिए। तो लड़कों की टीम को संकट से गाना गाना है, तो यार किस बात का संकट, बहुत सारे गाने हैं। संकट दूर करिए और जल्दी से गाना सुनाइए। और अभी देखते हैं किसका कॉल आया है, लड़कों की टीम से है कि लड़कियों के। हेलो
3: हेलो,
0: गुड इवनिंग, क्या हाल है अनूप
3: हेलो।
0: जी? हेलो, मतलब आप लोग सच में नेटवर्क को क्या कर देते हैं वेंसडे के वेंसडे। मैं आप लोग के कॉल्स रिसीव करते करते और आप लोगों से हेलो कहते कहते थक जाती हूँ, और आप लोग की आवाज़ क्लियर नहीं होती तो मैं परेशान हो जाती हूँ। हेलो हेलो,

0: अच्छा गाना सुनाया आपने, मतलब भजन सुना के शाम को एकदम पॉजिटिव कर दिया, थैंक यू सो मच। तो लड़कियों की टीम को कौन सा शब्द देना चाहेंगे आप धर्मेंद्र जी, बताइए। लड़कियों
1: माला,
0: माला, वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा सा शब्द दे दिया आपने, बहुत आसान सा शब्द दे दिया, थैंक यू। तो धर्मेंद्र जी ने लड़कियों की टीम को शब्द दिया है माला, देखते हैं माला को कौन पिरो के गाना सुनाता है। सो जल्दी जल्दी टीम आगे बढ़ रही है और हम गाना भी एक सुनते रहते हैं साथ साथ में बिना देरी के, और देखते हैं गाना कौन सुनाता है माला से।
2: हेलो
0: हेलो
2: जी मैम,
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो जी मैम, आवाज़ आ रही है?
0: हाँ आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो भाषा
2: जी मैम, जी मैम।
0: सो भाषा आपको गाना सुनाना है माला से।
2: जी मैम। सांसों की माला पे सुपुर्द मेरी का नाम।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो। सो भाषा की भाषा सुनने में हम लोग असमर्थ है, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, और थैंक यू सो मच भाषा, आपने बहुत प्यारा सा गाना सुनाया। और देखते हैं अब लड़कियों की टीम से कौन सा शब्द लड़कों को मिलता है। माला से तो गाना सुना दिया गया है एंड 60 पॉइंट्स वापस से लड़कियों की टीम को मिल जाते हैं, और इसी के साथ लड़कियों की टीम के 450 पॉइंट्स हो गए। देखते हैं कौन सा गाना गाएंगी गाएंगे लड़के, शब्द तो पहले देख लें कौन सा है। तो कौन सा शब्द देंगे लड़कियां लड़कों को, ब्रांड, ओके जरा इत्र गिरा दो। तो लड़कों को गाना गाना है ब्रांड से, शब्द आया है रोशनी की तरफ से। तो सचिन गुड इवनिंग, कैसे हैं, क्या हाल है। ब्रांड ब्रांड ब्रांड से गाना सुना दीजिए लड़कों, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है।

ब्रांड से गाना सुनाना है, देखते हैं कौन ब्रांड से गाना सुनाता है। और टाइम यार ओवर होने को है और मैंने टाइम पे ध्यान भी नहीं दिया आप लोग के गाने सुनते सुनते, तो लड़कों की टीम ब्रांड से गाना नहीं सुनाएगी। और इसी के साथ चलिए हम करते हैं इस गाने को कंप्लीट और 1 मिनट राउंड के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। देखते हैं किसकी टीम से कौन कॉल करता है।

0: वन मिनट राउंड के लिए पहला कॉल आ चुका है। बिना टाइम वेस्ट के मैं कॉल ऑन एयर करती हूँ, देखती हूँ आवाज किसकी है। हेलो।
1: हेलो मैम,
0: गुड इवनिंग। तो आशु जी, आपने कॉल किया है तो मतलब एक मिनट का जो कहते हैं ना कि पूरा का पूरा जो शय है आपके ऊपर जाएगा अगर टीम जीतेगी।
1: कोशिश पूरी है मैम।
0: हाँ तो चलिए, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपका जो कहते हैं ना टाइमर शुरू करूं।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो आज टाइमर शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो लड़कों की टीम प्लीज़ प्रिपेयर्ड रहें और अपने गानों के साथ रेडी रहें। मैं आशु जी के लिए जो टाइमर है वो प्ले करने जा रही हूँ, देखते हैं आशु जी एक मिनट में कितने गाने गाती हैं। वैसे लास्ट टाइम इनकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पर मैं कहूँगी कि आप लोग गाने थोड़ा सा मतलब ऐसे गाएं कि समझ में आए, एक शब्द का मैं कंसीडर नहीं करूँगी। जैसे लास्ट टाइम हुआ था कुछ कुछ शब्द ही गाए गए थे, भाषा ने या किसी ने गाया था, कुछ कुछ शब्द ही गाए गए थे, मतलब हाँ उसका फर्स्ट टाइम था तो उसको मान सकती हूँ, लेकिन आप लोग तो जैसे ओल्ड हैं तो आप तो वैसे भी नहीं ये मिस्टेक करेंगे, पर हाँ शब्द ही रहेगा तो फिर दूसरी टीम अपोज करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइमर शुरू होता है अब।
1: घर से निकलते जन्म जन्म का साथ, आने से उसके आए बा, मोरे ने खिलाया पु, शायद मेरी शादी बहुत प्यारी करते हैं। अपना घर स्वर्ग न कजरे की धार, गोरी कलाइया गोरे रंग पे न इतना मिलती है जिंदगी, मेरा पिया घर जब हम जवां होंगे, चल जब चली ठंडी और चांद चांदनी उम्र चांदनी, ये कलियां ये चौब सौदागर, सिंधी मेरी बहन, इमली का बूटा मेहंदी से लिख गोरी, सावन का महीना शाम तेरी बंसी, आजकल याद हम प्यार करने वाले, मिलती है जिंदगी ए दिले नाना बहुत प्यार करते, फूल तुम्हें भेजा है खत में झिलमिल सितारों का, जब हम जवान होंगे उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना, नहीं ये हो नहीं सकता दिल का खिलौना, दिल वालों का दिल का दिल है कि मानता नहीं, दिल शीशा हो या दिल हो ये दिल तुम बिन के दिल तो है, दिल कौन दिशा में लेके अखियों के
0: झरोखों से तुमने आपने गाए हैं 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 गाने, क्या बात है। मतलब बहुत गाए नहीं, मतलब इतने आप लोग कैसे गा लेते हैं, मैं नहीं गा सकती, डेफिनेटली मैं नहीं गा सकती, क्या बात है क्या बात है, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। लेकिन आपने सच बताऊं वो तरीका फॉलो किया है जो जेन्युइन नहीं है, मतलब आपने गाने को गाया तो मुझे फील भी हुआ कि हाँ ये वाला ही गाना है, मैं कंफ्यूज नहीं हुई, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड एक परफेक्ट एग्जांपल देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो भाई 40 गाने गाए और 400 पॉइंट कमाए, अब बारी है लड़कों की, देखते हैं कौन आता है करता है धाए धाए, मतलब अपनी टीम को दिलाता है पॉइंट्स। कम से कम लड़कों की टीम के कितने पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए मतलब करीबन 50 पॉइंट, मतलब 50 गाने आप लोग गाएंगे तब आप शायद जीत पाएंगे, क्योंकि लड़कियों की टीम के भी पॉइंट्स कितने हैं, 390 पॉइंट्स हैं लड़कियों की टीम के एंड 300 पॉइंट्स हैं लड़कों के, नहीं 450 पॉइंट्स हैं लड़कियों के, 300 पॉइंट्स हैं लड़कों के। लड़के शुरू से थोड़ा सा स्लो रहे लेकिन अगर चाहें तो अभी भी जीत सकते हैं, तो 4, 4, 8, 850 पॉइंट्स हैं और देखते हैं लड़के इस टीम का जो कहते हैं ना टारगेट पूरा करने के लिए आते हैं सामने या नहीं। फिलहाल मज़ा तो मुझे बड़ा आ रहा है, बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं और ये जो कहते हैं ना कि आप लोग की कैपेसिटी है ये आप लोग को स्पेशल बनाती है, और हर दिन एक एग्ज़ाम्पल आप लोग देखे जाते हैं, हर वेंसडे को एग्ज़ाम्पल देखे जाते हैं, तो देखते हैं कौन आ रहा है अपनी जो कहते हैं ना कि पूरी एनर्जी के साथ। वैसे लड़कों की टीम में एनर्जी बहुत हाई है ऐसा नहीं है, तो देखते हैं किसका कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूँ, और ये सब रिवेंज की बारी है तो मैं म्यूज़िक भी लड़कों की टीम के लिए प्ले करती हूँ, दमदार आ जाइए, कर दीजिए आर या पार। गुड इवनिंग मोहित, गुड इवनिंग कुमार, गुड इवनिंग वंशिका, गुड इवनिंग आरके जी, कैसे हैं, शुभ संध्या, क्या हाल है। बहुत कम दिखते हैं आजकल, छुप छुप के घूम रहे हैं, मतलब जैसे चांद नहीं दिखता है शाम को आता है सीधे, आप भी आज शाम को फरमाइश जी के टाइम आए हैं, क्या बात है, कोई बात नहीं, अपने बिजी शेड्यूल से कभी कभी टाइम निकाल लिया करिए और आप लोग को देख के अच्छा लगता है, सो देखते हैं

0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हमारे लड़कियों लड़कों की टीम क्या कर रही है, गाने की फरमाइश और क्या। चलिए इस म्यूज़िक के ख़त्म होने के पहले आप लोग कॉल कर दीजिए, जिससे कि मैं भी आप लोग के साथ खुश हो सकूं कि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड यस, कॉल आ गया। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार सबलू जी, अब आपकी कहते ना कि नैया की डोर आपके हाथ में है, पार लगाना है।
1: नंबर तो कहीं ज्यादा है, फिर भी अगर हम 40 से 50 भी गा दूं तो फिर भी नहीं जीत पाएंगे, लड़कियां लोग तो जीत गई।
0: आप लोग के कितने पॉइंट्स हैं? 400 तो
1: बहुत कम है, 300 है,
0: 390 है, 390 तो मुझे लगता है पॉसिबल है अगर आप कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो
1: ऐसे ये नंबर बहुत आगे है और 40 गाना गाकर जो रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
0: आप भी 50 गा सकते हैं, आप भी 50 गा सकते हैं। तो चलिए आपका टाइमर शुरू करते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: टाइमर शुरू करें।
1: जी बिल्कुल,
0: स्टार्ट।
1: सामने भी खूब है ना मिलो, रब करे तुझको पहले भी कभी ना जा सजना, तुझको बुला दिया राजा को रानी से रात दिन तुझको, लड़की बहुत याद आती हमको तुमसे प्यार है मेरी महबूब मेरी, आएगी हर पल तुझे कितने दिनों के बाद, कल कॉलेज बंद हो जाए कॉलेज की लड़की हो जिस देख देखो दिल दर का, ये दिल आशिकाना दिल दीवाना कहता है इस दीवाने लड़के को, तू कातिल तेरा दिल कातिल हम लाख छुपाए प्यार, मगर भोली भाली लड़की किस डिस्को में जाए, काली नागिन जाओ तुम चाहे जहाँ, दिल लगा लिया मैंने कसम खा के कहो मोहब्बत दिल ने सुकू, सोल्जर सोल्जर परदेश जाना नहीं, आँख है भरी भरी हम लाख छुपाए, तू मुझे याद ना आए कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, पूछो जरा पूछो दिल ने ये दिल कहा, एक मुंडा मेरी जाति मैं हूँ, मैं मेरी पलकी मैं हूँ, आपके प्यार में हम सवरने लगे कितना प्यार।
0: आपने गाए हैं पूरे 42 गाने, 42। हाँ थोड़ा सा और मतलब स्टार्टिंग में 2 सेकंड आप डिले कर दिए थे, उसमें भी एक गाना हो सकता था, और कोई बात नहीं।
1: हमने बोला ना ज्यादा भी करने से भी नहीं कोई फायदा है, नंबर उनका कहीं ना कहीं आगे था।
0: थैंक यू सो मच, लेकिन सबलू जी आपने टाइम पे कॉल करके अपनी टीम का साहस बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई इस बार बाजी लड़कियों की टीम लग रहा है मार जाएगी, और कहाँ लड़कों की टीम के कितने 390 पॉइंट प्लस मैं कर देती हूँ। मतलब मेरा मैथ तो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी दिमाग में कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मैं सिस्टम पे ही कैलकुलेट कर लेती हूँ। और इसी के साथ 420 पॉइंट, 810 पॉइंट, नॉट बैड यार, 30 पॉइंट 40 पॉइंट से पीछे होना कोई पीछे होना नहीं होता है यार, मतलब क्या है, सही है, सेकंड रैंक तो बढ़िया ही आ गई है ना। तो इसी के साथ 810 पॉइंट है लड़कों की टीम के, और इसी के साथ लड़कों को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द बॉयज़ टीम आल्सो। लेकिन लड़कियों ने मस्कारा लगा के आज जो चौका छक्का मारा है ना, क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ। फिलहाल लड़कियों के लिए मैं ये गाना डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ मस्कारा लगाती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, और सच्ची बताऊँ आज लड़कियों ने ये प्रूफ कर दिया कि ये लोग कितने भी काम करती रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा निशा ने स्टार्टिंग में आके ये कहा कि मतलब मैं मैम जल्दी जल्दी रोटियां बना रही थी, और इसलिए मैं मतलब थोड़ा सा ये हो गया ना कि मुझे गाना गाना है, तो मैं फटाफट से आ गई, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है इस समय सभी काम कर रहे थे। तो कोई बात नहीं अनूप जी, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आप डिले करते तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है। कोई बात नहीं अनूप जी, लास्ट टाइम आपने कितनी कोशिश की थी, लेकिन आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, आपकी टीम ने इस बार स्टार्टिंग से मेहनत काफ़ी की, मतलब थोड़ा सा इधर वर्ड वाले राउंड में थोड़ा सा डिले हो गया मामला, बाकी इनके भी टीम के पॉइंट बराबर ही होते अभी। तो फिलहाल मुझे दोनों ही टीमों को कंग्रेचुलेट करना है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा गैप था, बट 240 जब बराबर हुआ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बोथ टीम बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मज़ा आ गया। एनीवे सबने बहुत अच्छा खेला, एंड लास्ट में सबलू जी ने, मतलब सबलू जी की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, सबको मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगी, सबने बहुत अच्छा खेला, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो रोशनी जी हो, चाहे वो आशु जी हो, चाहे वो प्रीति जी हो, चाहे वो गीता जी हो, एकदम एकदम गीता जी के पास ना, कहते ना कि जैसे कहते ना कि एक ऐसा वैद्य जिसके पास खतरनाक से खतरनाक बीमारी का इलाज हो, ऐसा रहता है। और धर्मेंद्र जी हो, अमित हो, अमित ने, अमित को भी बहुत मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, और किसी का नाम तो नहीं भूल रही हूँ, जुगल जी हमारे, और जो भी हैं धर्मेंद्र जी, सबका सबका सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। देखो मैं भी ह्यूमन हूँ और ह्यूमन एरर तो हो ही जाता है, कोई नाम मुझसे छूट गया तो भाई दिल पे मत लेना, सारे मेरे लिसनर्स अपने ही हैं, एंड बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए सुनते हैं मस्कारा फॉर माई गर्ल्स। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द बोथ ऑफ द टीम।

0: are just simple, who is not so simple. Stay tuned everyone, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की दर्शन. Stay tuned everyone.
1: बापू
2: करा देने
3: मेरे नाल ही टीचर करी

नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में, अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम। और जिन लोगों ने अपनी परमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, ओ माय गॉड, किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, इतना प्यारा सा गाना बजा दिया और मैं भी आ चुकी हूँ। और आपकी परमाइशी की गीतों को हम सुनेंगे भी, वक्त भी हो ही चुका, वक्त हुए तो बहुत देर हो चुकी है, फिलहाल मैंने ही देर कर दिए। खैर कोई नहीं, छोटी छोटी गलियों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है ना सेनोरिटा। सजन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए। और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सोनिया तिवारी गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, इट्स कुमार एमपी रीवा से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, वंशिका गोंडा से, हेलो मोहित मालवीय नगर गोंडा से, आशा मिश्रा जी लखनऊ से, मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, अनूप मिश्रा गोंडा से, गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से, और इसी के साथ में सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, अरविंद मनकापुर से आपका भी स्वागत है। और चलिए एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के अगली फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिसनर्स की तरफ से पहली फरमाइश आई हुई है सोनिया तिवारी की, और सोनिया तिवारी को गोंडा से सुनना है गाना, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा, हम आपके हैं कौन पिक्चर का, सिर्फ और सिर्फ सोनिया तिवारी की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए ना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आई लव दिस म्यूजिक, लव

अपने देवर की बारात लेके हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। हम आपके हैं कौन पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ हमारे सोनिया तिवारी जी की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से है, और जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना आजकल याद कुछ और रहता नहीं। मैंने बहुत बेसुरा गाया है लेकिन मोहम्मद अजीज जी ने बहुत ही खूबसूरती से इस गाने को निभाया है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा नगीना पिक्चर का हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। हाई स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ओह आई लव दिस सॉन्ग, लेकिन मुझसे ज्यादा आरजे मनु को ये गाना बहुत पसंद है। हाय हाय।

मोहम्मद अजीज की आवाज में नगीना पिक्चर का ये गाना हमने एंजॉय किया है दोस्तों जग्गू दादा की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, और अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है इट्स कुमार की एमपी रीवा से, और इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है। ये जवानी है दीवानी का गाना सुभान अल्लाह, सो एंजॉय करते हैं ये गाना इट्स कुमार की फरमाइश पर। Stay tuned.

0: बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर डुपर हिट हाउ रोमांटिक नगमा सिर्फ और सिर्फ इट्स कुमार की फरमाइश पर जो कि है एमपी रीवा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश को एंजॉय करने के लिए आप सभी को दोस्तों अपनी पॉकेट में, अपनी दोनों पॉकेट में, अपनी जीन्स की पॉकेट में, अपनी लोवर के दोनों पॉकेट में हाथ डालना पड़ेगा और फिर दोनों हाथों को पॉकेट में डाल के आपको लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, क्योंकि जी हाँ दोस्तों इस गाने का सिग्नेचर स्टेप ही यही है। और इस गाने को सुनने के बाद में आखिर किसका नहीं मन होगा ताता थैया करने का, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका करने का। ओ माई गॉड, इंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा रेडी पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर जो कि है गोंडा से। और क्या आप सभी रेडी पिक्चर की तरह एकदम से रेडी हैं इस गाने को एंजॉय करने के लिए? अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। आय हाय, ए ए ए ए ए ए ए ए ए रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका, ए ए ए ए ए ए ए ए रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका रिंक चिका। स्टे ट्यून, फरमाइश है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से। स्टे ट्यून। तो माननी नहीं आती दोस्तों, सॉरी।
1: बारह महीने

माय गॉड, हमने एंजॉय किया है धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा रेडी पिक्चर का। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। लेकिन लेकिन लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, धर्मेश त्रिपाठी का गोंडा से कुछ कहना भी है। इनका कहना है कि मेरी फरमाइश को हवाओं में बिखेरने के लिए शुक्रिया। अच्छा, मेरी फरमाइश को हवाओं में बिखेरने के लिए शुक्रिया। मेरी पसंद से हर दिल को सरोबोर करने के लिए शुक्रिया। आपकी आवाज का जादू यूं ही चलता रहे, मेरी छोटी सी चाहत को पूरा करने के लिए शुक्रिया। आरजे सिंपल जी, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच धर्मेश त्रिपाठी जी। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है वंशिका की गोंडा से। एंड यू नो व्हाट, वंशिका को सुनना है गाना तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। वंस अपॉन टाइम इन मुंबई का गाना एंजॉय करते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी वंश।

गई, हमने एंजॉय की ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा वंशिका की फरमाइश पर, और वंशिका है गोंडा से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़, आपका स्वागत है। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो विजय पाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से, आपका स्वागत है। इनका कहना है, पलकें जो झुक जाएं तो कमाल लगती है, पलकें जो झुक जाएं तो कमाल लगती हैं, उठ जाएं एक बार तो 100 सवाल करती है, झुकी हुई पलकों में एक हया होती है, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ बयां करती है। आए हाय, कितनी प्यारी सी लाइंस थी, थैंक यू सो मच विजय पाल यादव जी। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है मोहित की मालवीय नगर गोंडा से। मोहित को मालवीय नगर गोंडा से सुनना है गाना, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। आए हाय, तो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा मोहित की फरमाइश पर, खुददार पिक्चर का कुमार सानू अलका यामी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड।

0: मालूम नहीं है,
1: खुद तुम्हें मालूम नहीं है। कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में खुद्दार पिक्चर का ये गाना हमने एंजॉय किया है मोहित की फरमाइश पर, जो की है मालवीय नगर गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, लेकिन उसके पहले मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आज आप लोगों ने अंताक्षरी के टाइम पे ही डिसाइड कर लिया था कि आज कौन कौन से गाने फरमाइश की जाएंगी, क्योंकि ओ माय गॉड, बैक टू बैक इतने खूबसूरत, इतने मतलब इतने चूजी गाने, इतने एंटिक गाने, इतने प्यारे नगमे आप लोग की फरमाइश आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने जानबूझ के अपनी तरफ से कम एक घंटे टाइम लगा के ये इतनी प्यारी सी प्लेलिस्ट बनाई है। टच वुड नजर ना लगे, सच में बहुत कमाल की प्लेलिस्ट है दोस्तों। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले दोस्तों ये मत, आपको पता है क्या, ये हेडफोन बहुत इरिटेट कर रहा है मुझे सच में बहुत ज्यादा। तो फिलहाल चलते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ओह माय गॉड, अगली आवाज होने वाली है अलका याग्निक जी की राजा हिंदुस्तानी पिक्चर का। हम एंजॉय करने जा रहे हैं गाना आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, और ये फरमाइश आई है आशु मिश्रा जी की तरफ से जो की है लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ओहो आय हाय, व्हाट अ लवली सॉन्ग, थैंक यू सो मच, इट मीन्स रियली अ लॉट।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा, हाउ रोमांटिक, आई मीन दिल को छू जाने वाला, कलेजे को ठंडा कर देने वाला गाना आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, और जानते हैं अगली फरमाइश है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है दलेर मेहंदी का गाना, ओ माय गॉड। सो एंजॉय करते हैं ना ना ना ना नारे नारे नारे सो, ये फरमाइश है हमारे मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से। स्टे ट्यून एवरीवन। आय हाय, थोड़ा तो नाचने कूदने का मन, मतलब मूड तो बनता है। हां

और दलेर मेहंदी की आवाज में हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा हमारे मोहम्मद मुशीफ जी की फरमाइश पे, जो कि है बाराबंकी से पढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, अपनी खट्टी मीठी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ। एंजॉय करते हैं अरविंद की फरमाइश। अरविंद को सुनना है गाना वो बंगला गाड़ी झुमके कंगना, सब दे देना उसको सजना और आग लगे उसकी जोबन को, दिल मत देना मेरी सौतन को। सो एंजॉय करेंगे ये AI से रिक्रिएटेड वर्जन सिर्फ और सिर्फ अरविंद की फरमाइश पर। मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा अभी तक नहीं की है फटाफट से पेट पूजा कर लेना, फिर 9 बजे फरमाइशी की महफिल में फिर से एकत्रित हो जाना एंटरटेनमेंट के लिए, जज्बात के लिए, सुकून के लिए और फरमाइशी के लिए। स्टे ट्यून्ड।

0: कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति, दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तेलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
1: ये 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
4: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
5: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
6: मैं समझता हूं कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजनाइजेशन में। जहां पे हम आर्म्स को इंपोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
4: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
7: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
0: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
8: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चुनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया गंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में 1 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
0: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
9: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Yet another day spent with

शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ओह आई लव दिस सॉन्ग।

मेहर माँ, हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनग माँ, इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइश की महफिल में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। ओ माय गॉड, व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग, आई रियली अप्रिशिएट दिस सॉन्ग। इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले इस गाने को सुनने के बाद में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि आंखों को कुछ ख्वाब दिखाकर मानेंगे, आंखों को कुछ ख्वाब दिखाकर मानेंगे, आप हमारे होश उड़ा कर मानेंगे। लगता है ये पानी बेचने वाले लोग हर बस्ती में आग लगा कर मानेंगे। तुझको छूने की चाहत में दीवाने शायद अपने हाथ जला कर मानेंगे। तय तो ये था पिछली बातें भूलनी है आप मगर सब याद दिला कर मानेंगे। घर का झगड़ा अगर बाहर आ जाएगा, घर का झगड़ा अगर बाहर आ जाएगा, बाहर वाले अंदर आकर मानेंगे। चाहे फिर आवाज चली जाए लेकिन हम उसको आवाज लगा कर मानेंगे। घर पक्का करने की बातें करते हैं, घर पक्का करने की बातें करते हैं, यानी वो दीवार उठा कर मानेंगे। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, उनको सुनना है गाना दिल की आवाज भी सुन। सो इंजॉय करते हैं हम साया का ये गाना, स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ये फरमाइश है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास।

हमें छोड़ के साया भी चला जाता है। हम इंजॉय किया है ये गाना धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पे, जो की है आवाज विकास गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनमोल की। अनमोल को सुनना है गाना तुम्हारी नजरों में हमने देखा। सो एंजॉय करते हैं आशा जी की और कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही रोमांटिक सा, बेहद रोमांटिक नगमा अनमोल की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कुमार सानू और आशा जी की आवाज में सिर्फ और सिर्फ अनमोल की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। निब्बर जी को रानी बाजार सुनार गली गोंडा से सुनना है गाना अल्लाह बहुत बड़ा है। सो एंजॉय करते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा रमजान।

ओहो, हमने एंजॉय किया ये गाना निम्बर जी की फरमाइश पर जो कि हैरानी बाजार सोनार गली गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों विजय पाल यादव जी की ललहुआ लखीमपुर खीरी से और अनिल शास्त्री की गोरखपुर से। अनिल शास्त्री जी को गोरखपुर से और विजय पाल यादव जी को ललहुआ लखीमपुर खीरी से सुनना है गाना अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सनम।

और वो मुस्कुरा दे। हमने एंजॉय किया ये गाना अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर जो की है गोरखपुर से, और विजय पाल यादव जी की फरमाइश पर जो की है ललहुआ लखीमपुर खीरी से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, जो की होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइशी गीत। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो पप्पू हार्डवेयर सर्कुलर रोड गोंडा से आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश तो हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की और पप्पू हार्डवेयर की भी। और नागेश्वर धाकड़ और पप्पू हार्डवेयर को सुनना है गाना दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानो। एंजॉय करते हैं ये गाना, इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो दोस्तों, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है। और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, इट मीन्स रियली अ लॉट। मिलते हैं कल फिर से नई फरमाइशी गीत के साथ में, नए जज्बात के साथ में, नए मूड के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बाय बाय, आई लव दिस सॉन्ग बाय द वे। Bye bye everyone. I love this song. I really love this song. Thank you so much. Bye bye.

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9286-9976-9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गन 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बहारे गज़ल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। और आज का दिन तो आपके नाम होता है, आज बुधवार है, आज कालीन का शो है, और आज तो आप वक्ता बनेंगे और बाकी सभी श्रोता बनेंगे। जी हाँ, हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं। मनु सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, जिंदगी ही गज़ल है, बिल्कुल सही कहा आपने। और अंबुज पांडे जी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। मनु सर नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार, कैसे हैं आप? और अब आइए भाई, चलते हैं, देखते हैं कि जो नींव की ईंट होती है, यानी जो बुनियाद का पत्थर होता है, वो रखना, कई बार किसी ने रखा, कुछ बार किसने रखा, किसी बार किसने रखा, आज देखते हैं कि भाई इस कार्यक्रम की शुरुआत कौन करता है, प्रारंभ कौन करता है। क्योंकि कहा जाता है वेल बिगिन इज़ हाफ डन। अगर आपने किसी चीज़ को अच्छे तरीके से शुरू कर दिया तो समझिए कि उसे आधा समाप्त कर दिया। तो अब देखते हैं हमारे पास कौन है, जिनका फ़ोन हमारे पास पहले आता है। दूरभाष क्रमांक आपका वही है 6393314629, यानी 6393316429। और जब तक आपका फ़ोन नहीं आता तब तक आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल। मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पर, और हमको उम्मीद है तब तक गज़ल के अंदाज़ में आपको बुलाते हैं, और हमारे गज़ल का अंदाज कुछ ये रहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस गज़ल के तत्काल पश्चात हमारे सभी श्रोता बन जाएंगे वक्ता, और देखते हैं धमाल में चंदी आवश्यकता ही नहीं। हमको लगता है कि हमारे पास पहला फ़ोन आ चुका है, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जी, ये आवाज़ नहीं आई, और सुन में नहीं आया कि आवाज़ क्यों नहीं आई। और देखना है भाई कि अब ये आवाज़ हमको फिर से सुनाई पड़े, जिसने भी भाई फ़ोन किया है वो दोबारा मिला ले, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क की कोई समस्या हो। हेलो हेलो हेलो हेलो क्या समस्या है, कुछ सुनना आई है भाई? जी हाँ, देखते हैं कौन हमारे साथ। अगर आप सुन रहे हैं तो हमको दोबारा फ़ोन कीजिए, हमको लगता है कि कुछ नेटवर्क संबंधी समस्या है, और आपसे

0: कनेक्टेड।
1: जी हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी
2: आप नमस्कार
1: जी जी। अरे दादा ये कुछ फोन में समस्या थी और वो दूर हो गई, अब आवाज आ रही है।
2: चलिए हमारी आवाज आ रही है।
1: जी जी अब आई, कुछ समस्या थी लगता है नेटवर्क में तो वो दूर हो गई।
2: चलिए बढ़िया है।
1: क्या बात है, मतलब बोनी आज आपसे होने वाली है।
2: मैं रफी साहब का एक गाना सुनाऊंगा।
1: क्या बात है,
2: बार बार देखो हजार बार,
1: ये देखने की चीज है हमारा जनरबा,
2: बट नेचुरल है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक।
2: तो थोड़ा मैं प्रयास करूंगा, कोशिश भी करूंगा।
1: जी और हम आज उनसे भी सुनेंगे जो आपके बिना, जिनके आप बिना आप अधूरे हैं।
2: अब उनको तो भाई हम बोल सकते हैं, आदेश नहीं कर सकते, आप जानते ही हैं।
1: हाँ हाँ नहीं वो तो है, नारी सशक्तिकरण का दौर चल रहा है।
2: तो मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है सर।
1: जी जी दादा जी।
2: बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाली हो।

अरे देखो कि देखने के चीज है हमारा दिल रुबा टाली हो टाली हो टाली हो। हाँ जी हाँ,

आज यहाँ और भी होंगे दिलदार, यहाँ लाखों दिलों के बहार, यहाँ लेकिन बात कहाँ, ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा टाली हो टाली हो टाली हो। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाली हो टाली हो टाली हो। दिल मिला एक जान महफिल मिला या चराग मंजिल मिला, दिल मिला एक जान महफिल मिला या चराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ, नया नया ये आशिकी है राज है मेरा टाली हो टाली हो।

0: देखो कि देखना के चीज है हमारा दिल रुबा ताली हो ताली हो ताली हो। थैंक यू सर।
1: क्या बात है दादा, एकदम रोमांटिक अंदाज में आपने आज गीत गाया है, क्या बात है।
0: थैंक यू सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपको। और तो भाई उनसे भी सुनना चाहेंगे हम।
0: भाई हम फरमाइश कर देंगे।
1: जी जी जी, तो आप तुरंत कर दीजिए।
0: एकदम मैंने बोल दिया, सुन भी रही है आगे वाले कमरे में।
1: जी जी,
0: ओके सर, थैंक यू
1: जी। चरण स्पर्श,
0: खुश रहिए
1: जी। हाँ भाई, तो ये आवाज हमने सुनी श्री अनिल बनर्जी जी की, जो हमको सुनते हैं गोरखपुर से, और ब्यूटीफुल आवाज के साथ भाई धर्मेंद्र मोहन ने कह दिया है जी। जो नेटवर्क की समस्या थी वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आवाज़ मिल चुकी है। अब तो हमने आवाज़ आपको दी है बड़े

नाज के साथ आप अपनी आवाज़ मिला दें मेरी आवाज़ के साथ। तो जी हाँ, बहुत अच्छा रहेगा कि अब आपकी आवाज़ भी मिले हमको। और शुरुआत कर दी है गोरखपुर से श्री अनिल बनर्जी जी ने, बार बार देखो हज़ार बार देखो, ये देखने की चीज़ है हमारा दिलरुबा। जी हाँ, और अब देखते हैं भाई हमारे साथ फिर कौन जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट रुकिएगा। हेलो हेलो, हेलो हेलो, ये फिर से क्या हुआ भाई, क्यों समस्या ये बन रही है? जी जरा इसको सॉल्व करते हैं, तब तक आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल, और इस गज़ल के बाद आपसे मिलते हैं इस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तत्काल पश्चात। सुनते रहिए और रेडियो वन एस 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और जी हाँ, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो,

0: और इसी के साथ देखते हैं कोई आ चुका है हमारे बीच, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो,
1: नमस्कार।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, हमारे दर्द कुमार जी आ चुके हैं। कैसे हैं आप?
1: हाँ ठीक है भैया।
0: अच्छा, आज नेटवर्क आपका साथ कुछ कम दे रहा है?
1: हाँ हाँ, कम दे रहा है, कई बार मिलाया शुरू स्टार्टिंग में कर ले, लेकिन मिल ही नहीं रहता है।
0: जी,
1: मिला है तो
0: क्या बात है। हमारे साथ श्री राजेश कुमार सिंह भी जुड़ चुके हैं, उन्होंने कहा है सर नमस्ते, और आपको भी अभी वो नमस्ते करने ही वाले हैं।
1: अच्छा हाँ, वाह भाई वाह, सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, सभी लिसनर को मेरा नमस्कार है।
0: जी, और उन्होंने लिख दिया है सुरेश जी नमस्ते, तो उनका नमस्ते आप कबूल कीजिए।
1: ठीक है, नमस्कार
0: जी। तो आज दर्द कुमार जी से हम क्या सुनने वाले हैं?
1: टूटे हुए खाबोले
0: है
1: हमको बेसी खार जाए, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गवाया है, टूटे हुए ख्वाब

सदा मेरी

0: खून गवाया है, टूटे हुए ख्वाबों में।
1: क्या बात है, क्या बात है। और धर्मेंद्र मुंज लिखते हैं, श्रीमान सुरेश जी दर्द में भी आप खुशी का एहसास दिलाते हैं, हम कहाँ आपको भूल पाएंगे जो दर्द में खुशी का एहसास दिलाते हैं। क्या बात है, आपके गीत की प्रतीक्षा रहती है लोगों को।
0: वाह भैया धर्मेंद्र मुंज भाई, खुश है आप, आपको मेरा दर्द एहसास हो रहा है,
1: वास्तव में
0: दोस्त।
1: होता है।
0: हाँ और कोई लिस्नर है या एक गीत और दे दें हम?
1: हाँ हाँ दे दीजिए।
0: जजमांड लेके आज अपने घर से हम निकले, यही अरमान लेके आज अपने घर से हम निकले, जहाँ है जिंदगी अपनी, जहाँ है जिंदगी अपनी, उसी को चेत दम निकले, यही अरमान लेके आज अपने घर से हम निकले। पहाड़ों मुस्कुराओ तुम, सितारों जगमगाओ तुम, मेरी उजली मोहब्बत की हंसी मिल कर उड़ाओ तुम, हंसी मिल कर उड़ाओ तुम, जहाँ छज देखिए हमने, जहाँ छज देखिए हमने, वो पत्थर के निकले, यही अरमान लेके आज अपने घर से हम निकले, तमन्ना है मेरा सर हो, मेरा दर हो, तमन्ना

0: कोई नशिकवा कोई लब पर हो, नशिकवा कोई लब पर हो, अगर यूं मौत आ जाए, अगर यूं मौत आ जाए तो अपने दिल से गम निकले, यही अरमान लेके आज अपने घर से हम निकले। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। और राजेश सिंह जी भी कहते हैं क्या बात है सुदेश जी, वास्तव में क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार। अरे गीत पर जो दूसरा गीत आपने बिठाला है वो बहुत शानदार बिठाला है, चॉइस तो बहुत शानदार होती है आपकी।
0: अरे वाह वाह, क्या बड़े भाई, थैंक यू बड़े भाई। राजेश भाई को मेरा नमस्कार,
1: जी, आपका नमस्कार हमने उन तक पहुंचा दिया। अच्छा प्रणाम जी। हाँ, तो ये हमारे साथ भाई थे दर्द कुमार जी उर्फ सुरेश कुमार जी, बहुत ही प्यारी सी आवाज़, और आवाज़ के साथ ही साथ जो गीतों का चयन रहा वो बहुत शानदार रहा। अब देखते हैं भाई कौन हमारे साथ अगले शो होता, और तब तक आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और लौटते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। क्या
2: हेलो हेलो
3: जी, हेलो, नमस्कार।
2: हाँ सर, मैं आवाज पहचाना आपने?
3: अरे दादा चल स्पर्श,
2: खुश रहिए। क्या मैं दोबारा गाना गा सकता हूँ?
3: जी बिल्कुल गा सकते हैं।
2: नहीं, आपका आदेश होगा तभी तो गाऊंगा।
3: नहीं नहीं, हमारी मतलब हम आपसे प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे।
2: एक गाना और है रफी साहब का।
3: जी दादा,
2: बड़ा मतलब रोमांटिक ही गाना है।
3: जी
2: खैर, हमें तो कोई मिलता नहीं है जिनको मैं बोल सकता हूँ ठहरो जरा।
3: हाँ क्या बात है, क्या बात है।
2: तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस गाने को।
3: जी दादा,
2: शायद पुराना कोई अब तो सुनेगा नहीं।
3: नहीं नहीं, पुराने ही तो लोग सुनते हैं।
2: अरे मतलब ये जब गाना गाता तो मैं उसकी बात कर रहा
3: हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, ये बात है।
2: एक दूसरी समझा कीजिए भाई।
3: हाँ, समझ गए दादा।
2: तो मैं शुरू करूँ?
3: जी निसंदेह।
2: जरा ठहरो, जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की, जरा सुनते जाओ, खुली पलक पे छोटा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। खुली पलक पे छोटा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। खुली पलक पे छोटा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा है तुझको, तुम लगे मुझे अपने से, और आके रहे आँखों में, और आके रहे आँखों में, अन चाहे सपनों से, समझना क्या जीता मैं और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। खुली पलक पे छोटा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल। मरना भी मुश्किल, तुम प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया में, अब तो सारी दुनिया में ये जाहिर है हाल हमारा, पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, खुली पलक पे छोटा गुस्सा, बंद पलक पे प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। थैंक यू सर।
3: क्या बात है दादा। और जानते हैं भारतवर्ष और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है और आपने गीत समाप्त किया है और भारतवर्ष 400 रन पूरे कर चुका है।
2: थैंक यू अगेन।
3: तो आज का दिन बड़ा शुभ है भाई, 405 वेस्ट इंडीज ने बनाए थे और हम लोग पहुंच गए हैं 400 पर, यानी अब जीतने के लिए
2: सर।
3: हाँ, जीतने के लिए सिर्फ हमको 6 रन की आवश्यकता हो रही है। क्या बात
2: है, वो कोई बात नहीं है, वो 2 मिनट लगेगा।
3: हाँ, मतलब आज हमारे बहुत सारे श्रोता भी मैच देख रहे होंगे और अब तो मैच समाप्त होने को है भाई। और अब आइए, अब आर के श्रीवास्तव जी है भाई, जो गोंडा के किशोर कुमार हम इनको कहा करते थे लेकिन अब नहीं कहेंगे क्योंकि ये लता जी के गीत, मन्ना डे के गीत और सभी के गीत बहुत शानदार तरीके से गाते हैं जी। और प्रणाम करते हैं आपको चरण स्पर्श। श्री आर के श्रीवास्तव जी कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और धर्मेंद्र जी लिखते हैं कि भाई अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, सबसे बड़ी संपत्ति उसका सुख और दुख है, क्योंकि अपना है तो बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं, रुक जा भी जाना नहीं। क्या बात है भाई, क्या पंक्तियां हैं और बहुत ही शानदार और बहुत खूब, आपने बहुत खूब बनाया जी। हाँ, और जी अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम जानते हैं कि श्री आर के श्रीवास्तव जी मैच देख रहे होंगे और बस इंतज़ार कर रहे होंगे कि एक रन हम दूर, और ये जी भारत वेस्ट इंडीज से जीत चुका है, 405 रन बन चुके हैं, एक ऐतिहासिक रन चेज हुआ। भारतवर्ष के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई और वर्तमान कप्तान शुभमन गिल जी 223 रन बना चुके हैं, यानी डबल सेंचुरी लग चुकी है। और जी इसी के साथ भारतवर्ष ने 405 रन, जो पहाड़ जैसे रन लग रहे थे, उनको इतनी आसानी के साथ चेस किया सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर, 43 ओवर और 3 गेंद। भारतवर्ष के लिए, हम सभी के लिए, इस स्टूडियो में बैठा हुआ मैं बहुत ही आह्लादित महसूस कर रहा हूँ। और जी अब भाई हम चाहते हैं कि आपका फ़ोन आए और अब हम आपसे कुछ सुने। हमने आपको एक गज़ल सुनाई है, चलिए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और इसके पश्चात मिलते हैं आपसे इस संगीत में अंतराल के उस पास। सुनते रहिए और रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: जी हाँ भाई, और कोई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो।
1: हाँ जी, गुड इवनिंग।
0: चरण स्पर्श।
1: खुश रहिए, खुश रहिए।
0: कैसे हैं आप, पहले ये बताइए।
1: बढ़िया है, अभी जगह गए थे वहीं से लौटे हैं। देखा हमने टाइम वाइम ज्यादा हो गया है।
0: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम ज्यादा हुआ है। और भाई आज तो बहुत इतिहास सच दिया भारत ने, हमको लगा कि आप मैच देख रहे हो।
1: नहीं, मैच कैसा मैच आ रहा, हम तो अभी गए थे, हमारे पड़ोस में वो हो गई थी डेथ।
0: अच्छा,
1: तो उनके यहाँ तेरही वगैरह थी। तो आज आज इंडिया का मैच है, कोई
0: इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच था। वेस्ट इंडीज ने 405 रन बनाए थे और इंडिया ने 406 बना लिए।
1: अच्छा, हो गया, खत्म हो गया
0: अभी अभी, मतलब तत्काल अभी तुरंत।
1: अच्छा चलिए, अभी हम हाईलाइट देख लेते हैं, इसकी कोई बात नहीं।
0: जी हाँ, रोहित
1: हमें पता नहीं,
0: रोहित शर्मा का शतक और शुभमन गिल का दोहरा शतक।
1: अच्छा, अभी देखते हैं हाईलाइट हम।
0: जी जी, और
1: तो हम नहीं, तो वही अभी लौटे थे, वही हमने कहा कि देखा तो आपका प्रोग्राम चल रहा था।
0: जी जी,
1: तो मैंने कहा रहा भाई एक दो लाइन हम भी अपना सुना ही
0: दें। बिल्कुल, एक दो लाइन नहीं, मतलब पूरी कविता सुने।
1: चलिए, तो आवाज आवाज मिल रही है आपको?
0: एकदम क्रिस्टल क्लियर।
1: चलिए, अभी पहली बार ये गाना मैं गाने जा रहा हूँ, किशोर कुमार का है।
0: क्या बात है।
1: और नहीं, मैंने आज उसको बड़ा प्रयास किया था रील वगैरह बनाने में, बन गया है, लेकिन देखते हैं क्योंकि वो म्यूजिक पे ये प्लेन है।
0: जी
1: ठीक है जी, शुरू करते हैं।
0: जी सुन दी।
1: मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिछ

0: काहे मन समझ न पाया, आग से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया, मुझे क्या हुआ था एक बेवफा से, हाय मुझे क्यों प्यार आया, तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका, तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर गए, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका, तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। थैंक यू सर।
1: हाय हाय हाय हाय हाय, महफिल लूट ली आपने, महफिल लूट ली, क्या बात है। मतलब वास्तव में किशोर कुमार एकदम आप हो गए।
0: अरे नहीं, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, इसे शौक किया करते हैं।
1: नहीं शौक, और इस शौक में जो है वो जान लीजिए जान डाल देते हैं आप गीतों में।
0: चलिए तो ठीक है।
1: हाँ, और तो कुछ और भी सुनना चाहेंगे आपसे।
0: चलिए, आज एक मुकेश को मैंने आपको भेजा था इसकी रिकॉर्डिंग, अब पता नहीं देखे कि नहीं देखे। चलिए एक लाइन, एक दो लाइन इसकी भी है, सुना दें?
1: जी जी,
0: कोई और वेटिंग में तो नहीं है? नहीं तो देखिए ऐसा है, मैं
1: आप सुनाए, आप सुनाए।
0: चंदन सा बदन चंचल चितवन धी

पड़ जाए आवाज है दिल का, वीराना चंगन था बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये

0: तरसा हूँ अब और ना मुझको तरसाना चंदन सा बदन कंकल चितवन। थैंक यू सर।
1: क्या बात है, क्या बात है सर, आपने तो मुकेश को भी एकदम डिट्टो कॉपी कर लिया है।
0: चलता रहता इसे मस्तीवादी है।
1: बहुत बहुत प्यार गाते हैं वास्तव में सर। आप कहाँ से साधते हैं? माँ शारदे आपके कंठ में विराजमान है।
0: अरे कितने माता रानी कृपा है।
1: हाँ, बहुत बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है।
0: सही है, चलिए नेक्स्ट को चाल दीजिए। आपने आज टाइम हमको ज्यादा दे दिया।
1: नहीं नहीं नहीं, अरे हमारा सौभाग्य है कि हमने आपको।
0: अरे नहीं नहीं, चलिए ठीक है, ओके सर।
1: सर स्पर्श
0: कुछ नहीं, कुछ नहीं।
1: जी हाँ, तो भाई हमारे साथ ये गोंडा के किशोर कुमार, हम नहीं कहते क्योंकि अब बहुत सारे गीतों को गाने में महारत हासिल है श्री आर के श्रीवास्तव जी को। जी, अब घड़ी की सुइयां भी बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, तो शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल पुनः आपसे मुलाकात करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे आपके ही कार्यक्रम बहारे गज़ल में ठीक 9:30 पर। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, बल्कि अब ये बन चुकी है हमारे और आपके दिलों की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी रियल कंपेनियन। आपके पापा कहीं चले गए हैं। फोन पर जैसे ही पारस ने ये सुना छनाक से उसके हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास नीचे गिर गया। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं? पापा कहाँ चले गए और ये कोई उम्र है क्या कि वो गुम हो जाएंगे? एक ही सांस में वो सारे सवाल पूछ गया। वो बिल्कुल हतप्रभ था। हैरानी के सारे बुलबुले फट फट कर उसके सामने फूटने लगे। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है उसके साथ। हद होती है मजाक करने की भी। आपके पापा का नाम अजीत है ना? आप पारस बोल रहे हैं ना? फोन पर जो व्यक्ति था उसे पारस की प्रतिक्रिया सुन लगा कि कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं मिल गया है। हाँ हाँ, मैं पारस ही बोल रहा हूँ, पर आप कौन बोल रहे हैं और किस तरह से आप बात कर रहे हैं? क्या हुआ पापा को? वो ठीक तो है ना? पारस को अब चिंता होने लगी थी। मैं बैंगलोर के ओल्ड एज होम का मैनेजर वर्मा बोल रहा हूँ। आज सुबह से आपके पापा कहीं चले गए हैं ओल्ड एज होम से। चले गए हैं से आपका क्या आशय है? वो कहाँ जाएंगे? अब हो सकता है यहाँ घर पर आ रहे हों। थोड़े मनमौजी प्रकृति के हैं इसलिए आपको बिना बताए दिल्ली आने के लिए निकल गए होंगे। उनके यहाँ आते ही मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपको। पारस अब थोड़ा सहज हो गया था, बल्कि उसे हंसी आ रही थी। पापा की हरकतें भी ऐसी होती है ना। अपनी मर्जी से वो माँ के मरने के बाद ओल्ड एज होम में रहने चले गए थे। अभी भी अच्छे खासे फिट थे और अपनी जिंदा दिली की वजह से सबके मन में जगह बना लेते थे। पेंशन भी मिलती थी इसलिए उन्हें पैसों की भी कोई तंगी नहीं थी। पारस तो चाहता ही नहीं था कि वो ओल्ड एज होम में जाकर रहें, पर वो किसी की सुनते ही कहाँ थे। वो और उसकी पत्नी रमा को उनके जाने से बहुत दिक्कत भी होने लगी थी। बच्चों को संभालने के लिए मेड थी, पर पापा घर पर होते तो वे बेफिक्र रहते कि कोई तो अपना घर पर है मेड पर नजर रखने के लिए। लेकिन अपनी शर्तों पर जीने वाले पापा ने तय किया कि वो कैसे जीना चाहते हैं। पारस बहुत जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता था क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम थी और वैसे भी पापा जो ठान लेते थे वो करके ही रहते थे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और मेरी आज की कहानी है रियल कंपेनियन। अब तक आपने सुना, पारस के पास ओल्ड एज होम से फोन आया कि उसके पापा अचानक कहीं चले गए हैं। पहले तो पारस बहुत परेशान हुआ, फिर उसे पापा का नेचर याद आया। हमेशा मन मौजी, अपने मन का करने वाले, किसी के भी ना सुनने वाले। तब उसे हंसी आ गई और थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद मन किया होगा घर आने का और चल पड़े होंगे।

शर्मिंदगी की भी थी। ये क्या बोल रहे हैं आप, कुछ तो सोच समझकर बोलें। पापा भला किसी लेडी को अपने साथ लेकर क्यों जाएंगे? पारस की आवाज में कठोरता थी। फोन पर उसे इतने तेज आवाज में बात करते देख उसकी पत्नी रमा भी उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। उसे देख पारस ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। मिसेस जोशी भी सुबह से दिखाई नहीं दे रही हैं। उधर से आवाज आई, और आपने मान लिया कि पापा उन्हें अपने साथ लेकर कहीं चले गए हैं? हद करते हैं वर्मा जी आप। हो सकता है मिसेस जोशी कहीं बाहर गई हो या जो भी हुआ हो उनके साथ, पर आप क्यों ऐसे जोड़ तोड़ कर रहे हैं? पारस झल्ला उठा था। उधर से मैनेजर साहब ने सफाई दी। असल में वो काफी दिनों से उनके चर्चे यहां हो रहे थे। दोनों अक्सर साथ साथ वक्त बिताया करते थे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ इतना अच्छा लगता है कि उनका बस चले तो उन दोनों के बीच शायद इंटिमेसी इसीलिए चले गए हों। वैसे भी आपके पापा ना लीक से हटकर काम करते हैं, उनके जैसा मस्त बुजुर्ग हमारे ओल्ड एज होम में इससे पहले कोई दूसरा नहीं आया। सच तो यह है कि उन्होंने नए नए तौर तरीके लागू करके हमारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी थी। 80 साल के वृद्ध तक उनकी सोहबत में बिगड़ने लगे थे। मिसेस जोशी डिवोर्सी हैं और प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई हैं। उनका बेटा विदेश में रहता है, इसीलिए वो अकेलेपन से बचने के लिए यहां आकर रहने लगी थी। अब मैं उनके बेटे को क्या जवाब दूं? वर्मा थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसे अपनी संस्था का नाम खराब हो जाने की ज्यादा चिंता हो रही थी। उनके बेटे को तो आप बाद में जवाब देना, पहले मुझे बताएं कि अगर ऐसा कुछ पापा और उनके बीच चल रहा था तो आपने इसकी बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता। इतना बोलकर पारस ने गुस्से में फोन का रिसीवर पटक दिया। फोन बंद होते ही रमा बोली, तुम्हारे पापा जो ना करें वो कम है, अब ये क्या सूझी है उन्हें इस उम्र में किसी लेडी को लेकर चले गए? छी, कितनी शर्म की बात है, लोग क्या कहेंगे? मैं अपने मायके वालों को क्या बताऊंगी? ही इज इम्पॉसिबल, बूढ़े हो गए हैं पर जोश में कोई कमी नहीं है। मुझे तो डर है कि पापा कहीं उस मिसेस जोशी से शादी ना कर लें, प्रॉपर्टी में फिर उसका भी हिस्सा हो जाएगा। और क्या पता ये जानने के बाद कि पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी है उसी ने उन्हें फंसा लिया हो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और मेरी आज की कहानी है रियल कंपेनियन। अब तक आपने सुना पारस के पास ओल्ड एज होम से फोन आया कि उसके पापा ओल्ड एज होम की किसी लेडी को लेकर कहीं चले गए हैं। सब परेशान थे कि आखिर उन्होंने क्या किया है, कहां गए हैं। पारस और उसकी पत्नी को चिंता हो रही थी बदनामी की और इस बात की कि कहीं उस लेडी ने प्रॉपर्टी के चक्कर में तो पापा को नहीं फंसाया। अब आगे रमा पारस से बोली, ये मत भूलो पारस कि वो खुद प्रिंसिपल रह चुकी हैं, इसीलिए फाइनेंशियली वो भी स्ट्रांग होंगी। यहां बात पैसों की नहीं है, बात तुम्हारे पापा के फितूर की है। बेचारी मिसेस जोशी, वो बेकार ही सवालों के घेरे में आ जाएंगी। समाज तो औरत को ही दोष देता है। तुम अपने पापा को फोन मिलाते रहो, कभी तो मिलेगा, न जाने कहां चले गए हैं। रमा के अंदर का कसैलापन उसके चेहरे पर भी आने लगा था। बैंगलोर से टैक्सी लेकर निकले पारस के पापा और मिसेस जोशी रास्ते में नाश्ता करने के लिए एक ढाबे पर रुके। आगे कुछ सोचा है या ऐसे ही मुझे लेकर चल दिए हैं, मिसेस जोशी ने थोड़े शरारती अंदाज में कचौड़ी खाते हुए बोला। ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, जिंदगी में जब भी जैसे पल आए उन्हें जीना चाहिए। कुछ सोचा तो खास नहीं है, पर यकीन मानिए आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। आपका साथ मैं नहीं खो सकता। पत्नी के गुजर जाने के बाद आप ही हैं जिनके साथ मैं अपनी हर बात शेयर करते हुए सहज महसूस करता हूँ। आई थिंक आई नॉट ओनली लाइक यू बट आई लव यू ऑल्सो। हंसिएगा नहीं, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। वैसे भी किसी के साथ किसी भी उम्र में अच्छा लग सकता है, मेरी इस बात से तो आप भी सहमत होंगी। कॉफी का सिप लेते हुए पारस के पापा ने मिसेस जोशी की आंखों में झांकते हुए कहा। वंदना जोशी के गाल लाल हो गए, एक सिरहन सी शरीर में फैल गई। अजीत का चेहरा और शरीर भी कसा हुआ था। एकदम टिप टॉप रहने वाले अजीत इस समय लाल टी शर्ट और जीन्स में बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। उनके गोरे हाथों पर नजर गई तो उनके अच्छे से तराशे हुए नाखूनों को देख वंदना को रश्क हो आया। उनसे मुलाकात और अपनेपन की लहर चलने के बाद से उन्होंने फिर से अपने पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, वरना बहुत लापरवाह हो गई थी वो अपने प्रति। नाखूनों पर से नेल पॉलिश उखड़ती रहती थी और चेहरे पर तो थोड़ा रूखापन भी आ गया था। बालों पर कितने कितने दिनों तक कलर नहीं करती थी, बिना प्रेस किए ही कपड़े पहन लेती थी। साड़ी पहनना तो जैसे छोड़ ही दिया था, वरना उनके साड़ियों के कलेक्शन की कॉलेज में हमेशा चर्चा होती थी। अजीत से परिचय होने के बाद उनके ही नहीं ओल्ड एज होम के कितने ही स्त्री पुरुष के जीवन में बदलाव आ गया था। उन दोनों के बीच एक पुल इसलिए भी बना क्योंकि दोनों ही पढ़ने का शौक रखते थे और फिल्मों से लेकर राजनीति और सामाजिक विसंगतियों से जुड़ी बातों पर वाद विवाद ही नहीं विश्लेषण करने में सक्षम थे। जब वे बात करते तो बाकी लोग एकदम मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते ही रहते। बागवानी का शौक भी उनके बीच का कॉमन फैक्टर था और कभी कभी दोनों बैडमिंटन भी खेलते थे। उन्होंने अपने कुर्ते की सिलवटें बेवजह ठीक की, वो सावली जरूर थी पर उनके नए नक्श की तारीफ सभी किया करते थे। शादी के बहुत सालों तक जब तक उनके पति के किसी दूसरी स्त्री से संबंध नहीं बने थे उनकी सुंदरता पर शेर सुना दिया करते थे। तलाक के बाद वो बिखर गई थीं। हर तरह से सक्षम होने के बावजूद उन्हें ये बात खलती थी कि आखिर उनमें कमी क्या है जो पति ने दूसरी स्त्री के लिए उन्हें छोड़ दिया। बेटे ने उन्हें अपने साथ विदेश ले जाने से मना कर दिया क्योंकि उसकी फिरंगी बीवी को इंडियन सास बर्दाश्त नहीं।
इसीलिए अपनी कोठी के एक पोर्शन को किराए पर देकर वो ओल्ड एज होम में रहने ये सोचकर आई थी कि शायद कुछ चेंज हो जाए और अपने हम उम्र लोगों के बीच वक्त काटने से वो अपने दुख से बाहर निकल आए। हालांकि उनका तलाक हुए 7 साल हो गए थे, फिर भी वो अपनी यादों को तकिए पर रखकर जब भी लेटती आंसू निकल ही जाते थे।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और मेरी आज की कहानी है रियल कंपेनियन। अब तक आपने सुना पारस के पापा ओल्ड एज होम से किसी लेडी के साथ सबको बिना बताए कहीं चले गए थे। पारस और उसकी वाइफ परेशान थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां गए, और उन्हें अपनी इज्जत की भी बहुत चिंता सता रही थी। उधर पारस के पापा और वंदना जी रास्ते में एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब आगे आसान नहीं होता रिश्तों के समीकरणों को समझना। हमेशा अंदर एक उथल पुथल मची रहती है और खुद को ही दोष देते हुए बस अपने अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं। खालीपन और निराशा को ही जीवन का एकमात्र पर्याय मान खुद पर ही जुल्म करते रहते हैं, पर जीना छोड़ देना तो जीते जी खुद को मारने जैसा होता है। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो जिंदगी बोझ बन जाएगी और हमारे ही बच्चे जब हमारा बोझ उठाने को तैयार नहीं तो सोचिए क्या होगा तब हमारा। वंदना जी, जीने के लिए खुद ही फूल चुनने होंगे, वरना काटे तो हर पगडंडी पर बिखरे मिलेंगे। मैं तो इसीलिए मस्त रहता हूँ और खुश रहता हूँ। अजीत के बातों से जैसे वंदना अपनी पीड़ा के दलदल से बाहर निकल आई थी। ठीक ही तो है, डिप्रेशन में या अपने प्रति लापरवाह रहने में सिर्फ बीमारियां ही घेरेंगी। तभी से वो खिलखिलाकर हंसने लगी थी और जब अजीत ने कहा कि वो उनके साथ आगे की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो वो उनके साथ निकल पड़ी थी। यहाँ पास ही एक शहर में मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड रहती है, उसी के घर थोड़े दिन रहेंगे फिर अपना बसेरा बना लेंगे। कुछ समय लगेगा सब कुछ व्यवस्थित होने में। वंदना जी ने अजीत का हाथ ये सुन हल्का सा दबा दिया था, मानो आश्वस्त कर रही हो कि सब ठीक है। आपका बेटा न जाने कैसे रिएक्ट करे, वंदना जी बोली। वो तो बस इसी बात से परेशान होगा कि कहीं आप मेरी प्रॉपर्टी ना हड़प लें। अजीत जोर से हंसे। फिर तो उससे कह दो कि मेरी प्रॉपर्टी में भी अब उसे हिस्सा मिल जाएगा, घरोनों की है मेरी कोठी, वो निश्चिंत रहे। मिसेस जोशी भी ठहाका लगाकर हंस पड़ी तो टैक्सी वाला हैरानी से पीछे मुड़कर देखने लगा। लोग क्या कहेंगे अजीत? वंदना जी की आंखों में शरारत थी। यही कि बुढ़े पर आशिक की चढ़ी है और बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। खबरदार, मुझे जो बूढ़ी कहा, और माशाल्लाह आप तो अभी बहुत जवान हैं। सारे रास्ते हैरान परेशान टैक्सी वाले ने जब बताए रास्ते पर पहुंचकर टैक्सी रोकी तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया और बोला, तो साहब जी अब आप दोनों शादी करेंगे? हम दोनों साथ रहेंगे, बस अभी तो यही सोचा है। बंधन और रिश्तों की मोहर लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है एक दूसरे का संग, साथ, प्यार और सम्मान देते हुए जिंदगी गुजारना। क्या काफी नहीं है? क्यों, ठीक है ना वंदना?
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं?
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है?

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और मेरी आज की कहानी है रियल कंपेनियन। अब तक आपने सुना, पारस के पास ओल्ड एज होम से फोन आया कि उसके पापा किसी लेडी को लेके यहां से बिना बताए कहीं चले गए हैं। पारस को चिंता होने लगी कि कहीं किसी ने प्रॉपर्टी के चक्कर में उन्हें फंसा तो नहीं लिया, और उसकी पत्नी को ये कि अब समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा। उधर उसके पापा और वंदना जी इस बात को लेकर बड़े सुकून में थे कि उन्हें जिंदगी जीने का सही तरीका समझ में आ रहा है। जब उनकी किसी को फिक्र नहीं, बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो वो किसी के लिए क्यों खुद को कष्ट दें, खुद को सजा दें। रही प्रॉपर्टी की बात, तो बच्चों को उनसे जो लेना हो ले लें, बस उन्हें चैन से जीने दें। वो दोनों अजीत के एक दोस्त के घर पहुंचे ताकि कुछ दिन वहां रुक के आगे की प्लानिंग कर सके। अब आगे वो लोग गाड़ी से उतरे, घर की तरफ चल दिए। वंदना जी कुछ कहना चाहती थी, पर इससे पहले वो कुछ कहती, अजीत की दोस्त शालिनी घर से बाहर आ गई और उनका स्वागत करते हुए कहा, वेलकम माय ओल्ड बडी। उनके पीछे खड़े व्यक्ति को देख वंदना भौचक्की रह गई। मीट माय हस्बैंड, शालिनी ने जैसे ही कहा, वंदना जी को लगा जैसे उनका पूरा सर्वांग जड़ हो गया हो। अजीत जी ने वंदना जी के चेहरे पर छाई वेदना और पसीने की बूंदों को देख कसकर उनका हाथ थाम लिया। वो समझ गए थे कि वो व्यक्ति वंदना का पूर्व पति ही है। मीट माय फ्रेंड, कंपेनियन एंड वुड बी वाइफ। अजीत मुस्कुराए। उन्हें देख वंदना को लगा कि चारों तरफ केवल फूलों की चादर बिछी हुई है और भीतर उग आई उदासी को उन्होंने झटक दिया। And I feel I am on top of the world when he is with me. वंदना जी ने अपने एक्स हस्बैंड की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे दिया। उनकी इस बात के जवाब में अजीत जी बोले, I am always with you, वंदना। अंदर आए शालिनी कि यहीं खड़े रखोगी? अजीत जी ने हाथ घुमाकर वंदना जी के कंधे पर रखा और उन्हें अपने करीब कर लिया। शालिनी के पति को अनदेखा करके वंदना जी अजीत जी के साथ घर में प्रवेश कर गई। ये प्रवेश उनके नए जीवन की शुरुआत थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और मेरी आज की कहानी थी रियल कंपेनियन। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात, हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ। शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर, भारतीय सिनेमा का आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था, जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

0: हाँ जी
1: कोई
0: दोस्तों,
1: बात।
0: जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल हो बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मानसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिमझिम रिमझिम। संगीत सम्राट आरडी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये

हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिमझिम रिमझिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

0: आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज़ बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।
1: ओ सजना

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया। सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है। पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यही कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट, अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल, पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं। अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा। संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 981 976, 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।